सुप्रभात। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1947 के बैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 50 सेकंड हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संचार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इखलो में वो को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे देवों के देव महादेव, आप तो वैसे भी भोले भंडारी हैं और बस इतनी कृपा कर दो कि मेरे मन में कहीं कोई मलिनता कपट को विकार ना आने पाए और प्रेम इस हृदय में भर दो, क्योंकि यहाँ आकर छल प्रपंच कपट में ये आत्मा जो है इसकी मौलिकता पे भी ऐसी मैली परत जम जाती है कि कुछ भी नहीं देख पाती समझ पाती। आपसे प्रार्थना है प्रभु, ऐसा करो कि निर्मल मन हो जाए और जो छाई धूल है आत्मा पे वो हट जाए। प्रभु आप तो दयालु हैं, करुणामयी हैं, कृपा करो प्रभु और सबका कल्याण करो।

0: अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है चिंतन बिंदु। आइए सुनते हैं इस क्रम में आज उपनिषद का संदेश, इस विषय पर ये विचार। आलेख है J.R. यादव का और स्वर राम गोपाल का है।
1: वर्तमान युग बौद्धिकता, विज्ञान और भौतिकता का युग है। ये तीनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इन सब का अपना अपना स्थान और मूल्य है, किंतु अतिरंजना और एकांगिकता से ये जीवन में विषमताएं, विश्रृंखलताएं और विडंबनाएं उत्पन्न करते हैं। सभ्यता के इस विपर्य से वर्तमान युग के वरदान भी संकट बन गए हैं। इस संकट की घड़ी में उपनिषदों का आध्यात्मिक संदेश मनुष्य का सहायक बन सकता है। उपनिषदों का संदेश जीवन में अध्यात्म का संदेश है, जो सनातन होने के कारण सदा सामयिक है। यह आशामय जीवन का संदेश है। आध्यात्मिकता इस संदेश का मूल मंत्र है। आत्मतत्व ही उपनिषदों का मुख्य संदेश है। आत्मा जीवन और जगत का शाश्वत आधार है। आत्मतत्व अनुभव का अंतस्तम मर्म है, किंतु वह इंद्रियों तथा बुद्धि से अतीत एवं अग्राह्य है। आत्मा सत चित और आनंदमय है। आत्मा की शक्ति से सब जीवित रहते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य अन्न अथवा प्राण से नहीं वरन आत्मा से जीता है। इसी आत्मतत्व से सभी जीव जीते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां इत्यादि जो भी मनुष्य के अस्तित्व के अंग हैं, वे अपने आप में स्वतंत्र और शक्तिमान नहीं हैं। वे सब आत्मा की शक्ति से ही अनुप्राणित हैं। आत्मा के न रहने से वे जड़ प्राय हो जाते हैं। आत्मतत्व के लक्षणों में आनंद मुख्य है। आनंद सत्ता और चेतना की पूर्णता एवं परितृप्ति है। आनंद तृप्तिकारक अनुभव है। वह प्राकृतिक विषय सुखों से भिन्न है, जो अतृप्ति और तृष्णा उत्पन्न करते हैं। आनंद एक प्रिय, तृप्तिकारक, अमृत और अनंत अनुभव है। यह आनंद अनुभव का पूर्ण समाधान है। हृदय की समस्त ग्रंथियां और बुद्धि के समस्त संशय जो जीवन को विक्षुब्ध बनाते हैं तथा जो वर्तमान सभ्यता में बहुत बढ़ रहे हैं, वे इस आनंदमय अनुभव में समाहित हो जाते हैं। ग्रंथियां भंग हो जाती हैं, हृदय की समस्त उलझनें मिट जाती हैं, संशय छिन्न हो जाते हैं। मन, वाणी, बुद्धि और इंद्रियां सब वहां पहुंचकर परम विश्राम पा जाती हैं। यह समस्त चराचर जगत ईश अर्थात परमात्मा के द्वारा आच्छादित एवं आच्छादनीय है। समस्त पदार्थ परमात्मा से व्याप्त हैं और उसी की विभूति हैं। उसके द्वारा प्रसाद रूप से दिए गए अल्प पदार्थों का त्याग भाव से भोग करना चाहिए। यह धन वैभव किसी का अपना नहीं है। इससे किसी को आत्मिकता, आनंद और तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि यह विषय रूप में बाह्य, बिराना तथा अनात्मिक है। उपनिषदों का आध्यात्मिक संदेश अर्थ और काम को मर्यादित करता है। इस मर्यादा में ही अर्थ और काम की कृतार्थता तथा जीवन की परितृप्ति है। अर्थ और काम की अमर्यादित आकांक्षा अतृप्ति की मरीचिका बनी रहती है। वर्तमान जीवन इसका उदाहरण है। अर्थ और काम की मर्यादा धर्म में प्रतिफलित होती है, जो मोक्ष में पर्यावसित होता है। आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष है। यही जीवन का परम आधार और लक्ष्य है। उपनिषदों के इस संदेश से आज का मानव अपने को विनाश से बचा सकता है।
0: आप सुन रहे थे अभी चिंतन बिंदु क्रम में उपनिषद का संदेश, इस विषय से संबंधित विचार, आलेख J.R. यादव का और स्वर राम गोपाल का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से।

आप सुन रहे थे अभी संभव स्वरों में देशभक्ति परक रचना को। इसके अलावा आपने जिन गायक स्वरों में भक्ति परक रचनाएं सुनी वे गायक स्वर थे बेला शिंदे, अनूप जलोटा और जगजीत सिंह साथियों के। आज का वंदना कार्यक्रम

श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से राम कथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी, जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धारा और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है, जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, उनका हंसना बोलना, मेल मिलाप इसके जल की मधुरता और सुगंध हैं।

आप सुन रहे थे अभी श्री रामचरितमानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण, गायक स्वर रंजना जोगलकर के और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज आप सुनेंगे पूर्वाहन 11:10 से सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जनता को संबोधन के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण और आप सुनेंगे 9:25 पर कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत जानकारी हेमंत झा से, विषय होगा सामाजिक वानिकी और पर्यावरण।

दिन में आज 1:15 पर वनिता लोक कार्यक्रम में सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। आज इस कार्यक्रम में विषय होगा हृदय संबंधी रोग, कारण, लक्षण और निवारण। कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर वरुण सिसोदिया। युवाणी कार्यक्रम संध्या 5:30 पर प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी आसिफ अली जयंती और सहदत हसन मंटो जयंती विषय पर। इसी कार्यक्रम में रेखा रानी चौधरी प्रस्तुत करेंगी कहानी यादों का झरोखा शीर्षक से। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का प्रसारण समय रहेगा 2:30 का।

रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे पंडित रामनारायण, सुनिएगा इस कार्यक्रम में सारंगी वादन। शाम सुहानी 7:31 पर शाम आप सुनेंगे और संध्या 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम में सुनिएगा आज डॉक्टर विकास पाठक की भेंट वार्ता, विषय होगा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। भक्ति पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन संध्या 6:45 पर, संध्या 7:05 पर सुनेंगे आप ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में हास्य वार्ता सुखरो नाय मकान ढूंढवो, और कलाकार इस कार्यक्रम को प्रस्तुत

0: करेंगे कोमल प्रसाद शर्मा। दृश्य दर्पण कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह 9:30 का। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा 10 बजे। दोपहर 12:30 पर ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लावनी गायन, प्रस्तुत करेंगे नारायण दास गोला। और ब्रज माधुरी कार्यक्रम में प्रातः कवि मुखोक्रम में आज आप सुनेंगे कवि सत्य प्रकाश शर्मा का काव्य पाठ। यह था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। खेती की बातें, आइए सुनते हैं अब इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर देवेंद्र सारस्व से जानकारी बैगन की खेती के बारे में।
1: किसान भाइयों, बैंगन की जो फसल है वो वर्ष में 3 बार ली जाती है, जिसको कि एक को शरद फसल बोलते हैं, दूसरी बसंत या ग्रीष्मकालीन फसल और तीसरी होती है वर्षा ऋतु की फसल। वर्षा ऋतु वाली जो फसल है उसके बीज फरवरी मार्च के महीने में बोए जाते हैं और पौधों की रुपाई मार्च अप्रैल के महीने में कर दी जाती है। लेकिन इस समय जो नर्सरी में बीज डाला जाएगा मई जून के महीने में और उनके पौधों की रोपाई की जाएगी जून के अंतिम से लेकर के जुलाई के मध्य तक, और ये फसल कहलाएगी शरद ऋतु की फसल, क्योंकि शरद ऋतु में इससे फल मिलना शुरू हो जाता है। आमतौर पर बैंगन से जो फल मिलने में करीब 2.5 से 3 महीने का समय लगता है, तो अभी जो आप मई जून के महीने में जो नर्सरी डालेंगे और उसके बाद उसकी जो रोपाई करेंगे तो उससे जो फसल हमको मिलेगी शरद ऋतु की फसल कहलाएगी। बसंत और ग्रीष्म ऋतु की एक और फसल मिलती है जिसके बीज नवंबर के महीने में बोए जाते हैं और पौधे जो हैं जनवरी के अंत में इनकी रोपाई की जाती है, और ये जाड़ गर्मियों के समय में जो इस समय आ रही है बैंगन मिल रहे हैं वो बसंत या ग्रीष्म ऋतु की फसल कहलाती है। तो अगर हमको शरद ऋतु में बैंगन लेना है तो मई जून के महीने में इसकी नर्सरी डाल करके और जून के अंत से लेकर जुलाई के मध्य तक इनकी रोपाई करनी चाहिए। इससे पहले बीज के बारे में किसान भाइयों को जान लेना चाहिए, क्योंकि आजकल तो पूसा के कई तरह के हाइब्रिड बीज भी आ रहे हैं। हाइब्रिड बीजों की उपयोगिता आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। संकर किस्म के बीज होते हैं, एक रूपता होती है उन बीजों में, उनसे पैदावार बहुत ज़्यादा मिलती है और देखने में वो बहुत ही आकर्षक होते हैं। तो बैंगन की जो किस्में हैं उसमें एक पूसा हाइब्रिड 5 है। पौधों की अच्छी बढ़वार होती है, शाखाएँ ऊपर को उठी हुई होती हैं, फल मध्यम लंबाई के होते हैं, चमकदार होते हैं, गहरे बैंगनी रंग के होते हैं। बुवाई से पहली तुड़ाई में लगभग 85 से 90 दिन लग जाते हैं और अच्छी किस्म है ये, इसको भी बोया जा सकता है। इसके अलावा पूसा हाइब्रिड 6 है। इसके पौधे जो होते हैं मध्यम सीधे खड़े रहने वाले होते हैं, फल गोल होते हैं, चमकदार होते हैं, आकर्षक होते हैं, बैंगनी रंग के होते हैं और प्रत्येक फल का वजन लगभग 200 ग्राम तक होता है। बुवाई से पहली गुड़ाई में करीब तुड़ाई में लगभग 85 से 90 दिन लग जाते हैं और 400 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इससे पैदावार ली जा सकती है। पूसा हाइब्रिड 9 एक किस्म है और ये विशेष करके अपने इस क्षेत्र में तो ज़्यादा उपयोग में नहीं लाई जाती, दूसरे राज्यों में इसको किसान भाई अपनाते हैं, तो इसको अपने क्षेत्र में लगाने की ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसके अलावा और भी कई उन्नतशील किस्में हैं, जैसे पूसा क्रांति है। इसके फल गहरे बैंगनी रंग के होते हैं, मध्यम लंबाई के होते हैं, बसंत ऋतु और सर्दी दोनों के मौसम के लिए ये उपयुक्त मानी गई है। 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पूसा क्रांति किस्म से पैदावार मिल जाती है। पूसा भैरव एक किस्म है और ये जो है फल गलन रोग के प्रतिरोधी किस्म है। पूसा अनुपम के जो पौधे होते हैं मध्यम होते हैं, सीधे होते हैं, फल पतले होते हैं, बैंगनी रंग के होते हैं, फल गुच्छे में लगते हैं, यह किस्म उखटा रोग के प्रतिरोधी किस्म है, तो ये इस दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी है। पूसा बिंदु जो किस्म है इसके बैंगन छोटे होते हैं, गोल होते हैं, चमकदार होते हैं, जिनका रंग गहरा बैंगनी डंठल चित्तीदार होता है और ये किस्म 90 दिन में तैयार हो जाती है। चूँकि ये उन्नतशील किस्में हैं इनसे पैदावार 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत बैंगन की खेती के बारे में जानकारी डॉक्टर देवेंद्र सारस्व से। साथियों, अब समय हो चुका है संस्कृत समाचारों का, तो आपसे कुछ ही देर में।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे अथ वार्ताः प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी ह्यः तेलङ्गाणाराज्ये प्रायः चतुश्शतोत्तरनवसहस्रकोटिरूप्यकाणाम् आधारभूतसंरचनानाम् औद्योगिकपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान् तत्पश्चात् सभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्रसर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: इदानीन्तन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्षश्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रथमस्य ज्योतिर्लिङ्गस्य श्रीसोमनाथ महादेव मन्दिरस्य पुनर्निर्माणस्य पञ्चसप्ततिः वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी ऐषमः श्रीसोमनाथ अमृतपर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्रीमोदी भगवतः श्रीसोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकञ्च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्य सचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पञ्चमन्त्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य सम्भावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमन्त्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतनमन्त्रिमण्डले भाजपादलस्य निर्वाचनप्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मानभारतम्, अन्नपूर्णाभण्डारः, राज्यसर्वकारीयकर्मचारिणां कृते सप्तमवेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्यविषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मण्डलदण्डाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षि अधीक्षकैः, विभिन्नविभागानां सचिवैः सह प्रशासनिकविधिव्यवस्थाविषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमन्त्रीपदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतनसर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपानेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायकदलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्रीहिमन्त शर्मा घटबन्धननेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिकरूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त बिश्वशर्मणे नूतनमन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहणसमारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सामहाविद्यालयस्य क्रीडाङ्गणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी, केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, भाजपाध्यक्षः नितिननवीन इत्यादयः भागं गृहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।

प्रस्तुत है पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की पहली पेशकश साथियों आप सब की नजर इस गीत से है।

आपने सुना अभी सुरेंद्र की आवाज़ में फिल्म अनोखी अदा का ये गीत। गीतकार थे अंजुम और संगीत दिया था नौशाद साहब ने। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के अंतर्गत। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आपने सुना अभी शकील वदानी की इस खूबसूरत सी रचना को, आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ में। संगीत दिया था रवि कुमार शर्मा और फिल्म थी चौधरी का चांद। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: सोमवार का मुहूर्त अति शुभ है, उसके पश्चात ही महीने तक तारा डूबा रहेगा और कोई मंगनी।
1: राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था, सी रामचंद्र ने संगीतबद्ध किया था, आवाजें थी आशा भोसले चितालकर की और फिल्म थी शारदा। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: आप सुन रहे थे मुबारक बेगम और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में हमराई फिल्म के गीत को, और इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। साथियों, अगला प्रसारण बस अब से कुछ ही देर में।
1: प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सोमनाथ अमृत पर्व में हिस्सा लेने आज गुजरात के प्रभास पाटन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, राज्यपाल ने भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे सहित 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ, 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक, चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा, कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रभास पाटन में धर्म, भक्ति, देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आज सुबह 9 बजे सोमनाथ संकल्प महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव नियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कल लखनऊ में कहा कि राज्य को बेहतर बिजली ढांचा देने के लिए लगातार प्रयास जारी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 20 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। श्री शर्मा ने बताया कि सरकार ने 165 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए हैं, 59 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और 26,000 किलोमीटर से ज्यादा पारेषण लाइन का विस्तार किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निजी नलकूपों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में

0: बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृत की सराहना पर केंद्रित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कल अयोध्या में समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण

0: के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध तथा कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। एक रिपोर्ट।
1: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 192,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रिकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पिछले 2 दिन के दौरान मौसम साफ रहने और तेज धूप निकलने के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम के इस बदलाव के कारण लखनऊ सहित कई जिलों में उमस भरी गर्मी शुरू हो गई है। मौसम विज्ञानियों ने राज्य में 14 मई तक एक बार फिर मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुंदेलखंड, तराई और पूर्वांचल के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सोमनाथ अमृत पर्व में हिस्सा लेने आज गुजरात के प्रभास पाटन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल ने भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे सहित 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: श्रोता साथियों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं, अच्छे ही होंगे। देखो, हम तो यही कामना कर रहे हैं राधे रानी थे कि हमारे सब कार्यक्रम सुनने वाले श्रोता साथी राजी खुशी रहें, बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें। तो देखो, जब आप सब स्वस्थ होंगे, हम सब स्वस्थ होंगे, तभी तो है जीवन को आनंद। और फिर जब जीवन बढ़िया होगा, स्वस्थ तन स्वस्थ मन, तो फिर कार्यक्रम हो चाहे खेल हो, संगीत हो, कछु हो, सुन में जो है आनंद दुगना है जाए है। और अपने या ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में देखो साथियों, आज हम सब चलेंगे ऐसी दुनिया में जहाँ की जाए कहे हैं कल्पना लोग, लेकिन इतनी अच्छी दुनिया यानी खूबसूरत दुनिया जो है कल्पना में, कितने हम सब रंग भरे हैं, अपने बिने चित्र उतारे हैं अपने भावन के, अपने सपनन के। और हालांकि यथार्थ से जो है हम सब जुड़े भए हैं, और या कल्पना को रंग, यथार्थ को रंग, यानी कि सबको सम्मिश्रण जब कवि अपने लेखनी की धार से उतारे है, तो फिर वह रंग कैसे बढ़िया लगे है सुनबे में, है ना, रंगवे में, तो सुन के तो आनंद आवे ही ना। तो कवि जो है वो अपनी कल्पनांते कैसी बढ़िया बढ़िया रंग भरे है। लेकिन सही बात तो यह है कि कवि तो सृष्टा और दृष्टा दोनों होवे है। कहे ना कि जो लेखक हो है या रचनाकार हो है, वो जो देखे है तो वो सृजनु करे है। तो लेखनी जो है आज हम देखेंगे सुनेंगे कि जो हमारे कवि महोदय हैं सत्य प्रकाश शर्मा, तो इनकी लेखनी ने कहा रंग, कितने तरिया के रंग, मन भावन रंग और जो है लेके आए हैं अपने भावन को लेके कवि मुख सुक्रम में। तो फिर आओ सुने काव्य पाठ और आनंद लें काव्य रस को।
1: जय श्री राधे। आज को मैं अपनो काव्य पाठ ब्रज के राजा बलदाऊ की वंदना से शुरू करूं। और आज मेरो मातृक्षण हर गीत का है। जग शेष ही

देवादिदेव अनन्तनं दाऊ महाअभिवादनम। श्री बल्लाऊ की वंदना के बाद मैं एक वंदना ब्रज की ओर करवा चाहूंगा, ब्रज वंदना।

पोखरा छह बावड़ी मठ गोपी के सब कुंड उफने नीर सो ऋतु सावनी बरसे घटा घन घोर नी धर धीर सो।

जी हरे। नित राश हो बंशी वटे मुरली बजे राधाष्टमी, लठ गोपिका होरी बजे बछ गो पूजे गोपाष्टमी। जन्माष्टमी घंटा बजे छठ दाऊ जी ब्रज में पूजे, ब्रजराज की करि वंदना गिरिराज सोटा जी भजे। वंदना के बाद अभी संसद में एक नारी को बिल आयो। नारी की महत्ता तो हमारे यहाँ शुरू से ही है। विधि वेद भी कहते यही राधा बड़ी है श्याम सो,

राम सो। प्रकृति चले जग जीव सो, जग जीव जन्मे मात ही, बिन जन्म के सब शून्य है, पाले भले ही तात ही।

में माँ प्राण है, माँ शक्ति है, माँ प्रेर करुणा प्यार की। माँ प्राण है, माँ शक्ति है, माँ प्रेम करुणा प्यार की। गोभूमि की देवी परा आधार माँ संसार की। गुरु वेद पाठक सो बड़ो गुरु सो गुणी सत तात है। पितु सो बड़ी सो सो गुणी संसार जननी मात है। पितु सो बड़ी सो सो गुणी संसार जननी मात है। 21 तारीख को सूर जयंती मनाई तो ससामयिक सूर पकड़। अठ छाप कवि ब्रज भास के कवि छीत सूरहि कुंभनम। ये अठ छाप। अठ छाप

हिमालय के ब्रज धाम की सेवा किए ब्रजभास की। पर ब्रजभास पद सोटा पढ़े कर वंदना अट छाप की। कवि सूर है ब्रजभास के भानु कवि अट छाप के। मतभेद है जन में कहां सुत रामदास बैराग के। ब्रज भूमि

का ब्रजनाथ को। कभी सूर सो सोटा बड़ो अनुपाल का ब्रजनाथ को। हमारे ब्रज में दो लीलाएं, एक महारास और गोपी गीत, और ये दोनों लीलाएं हैं। और ब्रज में गोपेश्वरम भगवान शंकर नारी को जो स्वरूप धर के आई वो महारास में आई, तो ब्रज गोपेश्वरम लीला। बंशी बजी जमुना तटे पूनो दिना घन श्याम की। बंशी बजी जमुना तटे पूनो दिना घन श्याम की। 6 मास तक रजनी भई महरास।

पे खड़ी, गोपियों ने आज्ञा नहीं दी जाने की। तो शिव कहते हैं, आए हिमालय सो यहाँ महारास की मन धार के, लखिरास गोपी पावनम दर्शन करूं हरि राधिके। सुन शंकरा ब्रज रास में इकले खड़े नर मोहना, अधिकार केवल गोप को जाना जा सके नर और ना।

राधिका। ललिता सखी बोली शिवाधारो रूप हर गोपिकम यमुना नहा श्रृंगार कर दर्शन करो श्री योगितम। तो भगवान शिव को गोपी बना रही है गोपिका। श्रृंगार शिव यमुना करी बिंदी सजा सिर चूंदरी चूड़ी चढ़ा शिव हाथ में कटिकर्धनी पगनूपुरी।

श्यामती शिव मोहिनी को रूप लख ललिता सखी सकुचामती। जा रास में शिव शंकरा धर मोहिनी के वेश को, रस पान नैनन सो करें लख राधिका गोपेश को।

तो भगवान कृष्ण रास में कैसे मंडल हो रहे हैं। श्री रास मंडल शोभितम ऋतु राज कुंज निकुंजन, ब्रह्मांड के परिपाल का गोपाल कम विभु भंजना, ब्रज सुंदरी मुख गान हरि गोकुल पते यशु नंदना, नित ढोक दे पूजा करे सोटा शिवा हरि वंदना, नित ढोक दे पूजा करे सोटा शिवा हरि वंदना। तो भगवान की आराधना कर रहे हैं शिव।

ध्याननम। भगवान शिव भूल गए कि मैं गोपी रूप में शिव हूं, तो वो रास को देख के नाचन लगे। भूले सुधी ब्रज रास में गौरापति जट धारणम,

जन जैसे ही गोपी का गोपी बने हुए शिव का घूंघटा कृष्ण उठा रहे हैं तो क्या है, घूंघटा उठा मन मोहना पूजे शिवा कर वंदना जयकार श्री गोपेश्वरा देवादि देवा चंदन देखी सखी नटराज कु मन में कुतूहल गोपिकम साक्षात शंकर जी खड़े मुस्कामते सति भोगनम कर

हरिवंदनम करमेश्वरम जगदीश्वरा गोविंद श्री हरिवंदनम करमेश्वरम गरुड़ ध्वजा।

0: भवनम् शातोदराचल कुंतली लीलाभिरामह पावनम् शातोदराचर कुंतली लीलाभिरामह पावनम् अवनीश सुनासी केलिकम् साक्षात देवा भावनम्। जय श्री राधे।
1: आप जो है सुन रहे थे काव्य पाठ कवि मुखसक्रम में, और आज के जो हैं कवि हते सत्य प्रकाश शर्मा। और अब आओ आनंद ले।

0: सुन रहे थे अभी रवि जोशी की आवाज में इस लोकगीत को, और आज को कार्यक्रम ब्रजमादरी यहीं पर संपन्न हुए। आप सबन को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमादरी, और अब समय हो चुका है अगले प्रसारण का आपसे कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा

0: से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला स्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल

0: x@AIRnews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
3: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
4: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलयश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकांगवा, मेईते ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112331 0112371717 और 0112371 7106। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी

0: वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, एक साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: बजने दे जरा। जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।
2: दूसरा कोई मैच है क्या?
1: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
2: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
3: पर बैंकिंग में नहीं।
4: वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
6: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
7: RBI कहता है
6: जानकार बनिए।

आत्माराम फिल्म के इस गीत को आपने अभी सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। विश्वेश्वर शर्मा के लिखे इन बोलों को धुन से संवारा था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। और साथियों आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में शतरंज फिल्म के गीत को। लिखा था SH बिहारी ने, संगीत शंकर जयकिशन का था। साथियों, अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज दिन में 1:15 पर कार्यक्रम वनिता लोक में हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में विषय रहेगा हृदय संबंधी रोग, कारण और लक्षण और निवारण। जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर वरुण सिसोदिया, हृदय रोग विशेषज्ञ। हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर भी इस कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं और पूछ सकते हैं हृदय संबंधी रोग, कारण, लक्षण और निवारण। संबंधित मथुरा से बाहर के श्रोता है, स्टूडियो कोड अवश्य लगाएं 0565। ध्यान रहे कार्यक्रम में आज विषय है हृदय संबंधी रोग। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आपने सुना मोहम्मद अजीज साधना सरगम की आवाज़ में खुद गर्ज फिल्म के गीत को। लिखा था गीत को इंदिवर ने, संगीत दिया था राजेश रोशन ने। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज दिन में 1:15 पर वैंतालोक कार्यक्रम में हेलो सहेली फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। विषय रहेगा आज हृदय संबंधी रोग, कारण लक्षण और निवारण। विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में होंगे डॉक्टर वरुण सिसोदिया, हृदय रोग विशेषज्ञ। टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर श्रोतागण इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोताएं स्टडी कोड अवश्य लगाएं 0565। समय का ध्यान रखें आज दिन में 1:15 पर और विषय रहेगा हृदय संबंधी रोग, लक्षण, कारण और निवारण। सूचना समाप्त हुई और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: आप सुन रहे थे अभी दिल तेरा आशिक फिल्म के गीत को कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़ में। साथियों आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी भेंटवार्ता के अंतर्गत। आज डॉक्टर दीनबंधु समाधिया से OP सिंह की ली गई भेंटवार्ता, विषय है पर्यावरणीय पहलुओं पर युवा वर्ग की संवेदनशीलता।
1: पर्यावरणीय पहलुओं की जब भी हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे बार बार यही कहा जाता है कि पर्यावरण वो एक परिवेश है जिसमें हम सब रहते हैं, हम उस पर्यावरण को बनाते हैं और हमसे ही वो प्रभावित भी होता है। यानी पर्यावरण हमको प्रभावित भी करता है और हमसे प्रभावित भी होता है। इस रूप में अगर पर्यावरण प्रदूषण की कभी बात चले तो ये समस्या कम एक सामाजिक मुद्दा ज़्यादा बनता है, क्योंकि प्रकृति कभी भी स्वयं को दूषित नहीं करती। और इस बात को हमने कोरोना काल में बहुत अच्छे से देखा और समझा कि जब थोड़ी सी मानवीय गतिविधियां कुछ समय के लिए बंद हुई तो प्रकृति ने अपने आप को बहुत जल्दी संतुलित किया। तो जब इस तरह की चीज़ें हम होते हुए देखते हैं तो ये समझ में आता है कि इस मुद्दे को समझने की और इसके साथ संवेदनशीलता बिठाने की ज़्यादा ज़रूरत है। युवा वर्ग हमारा इस समस्या से कितना दो चार है, कितना जुड़ा हुआ है और कितना

0: संवेदनशील है, इस पर एक संक्षिप्त सी चर्चा आज हम डॉक्टर दीनबंधु समाधिया जी से करेंगे। आप व्याख्याता हैं शिक्षा शास्त्र में और बच्चों के साथ वो रोजाना दो चार होते हैं। तो समाधिया जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार।
1: नमस्कार सर, धन्यवाद।
0: तो ये जो बात मैं अभी अपने श्रोताओं से कर रहा था भूमिका के तौर पर, कि ये जो पर्यावरणीय समस्या है, पहलुओं की जो बात हम कर रहे हैं, युवा वर्ग इससे कितना अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है?
1: देखिए, अगर सही अर्थों में देखा जाए तो युवा वर्ग बहुत कुछ उत्तरदायित्व है उसका, और बहुत कुछ जो है एक संवेदनशीलता अगर उसके अंदर आती है पर्यावरण के प्रति, क्योंकि पर्यावरण का मुद्दा, जैसा कि आपने बताया कि अपने आप को कभी प्रदूषित नहीं करता, अपने आप से कभी कोई समस्या उत्पन्न नहीं करता। अगर युवा इस ओर ध्यान दें, अपनी कुछ जिम्मेदारी समझें और समाज के साथ जहां उसे अवसर मिले, जिस तरीके से जहां वो बैठता है, उठता है, और वर्तमान समय में बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से वो जागरूकता कर सकता है, तो अगर वो थोड़ा संवेदनशील हो जाए तो ये समस्या धीरे धीरे समाप्त हो सकती है।
0: नहीं, मैं ये तो समस्या तो हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी, समाप्त और हो भी जाएगी। मैं जो आपसे जानना चाह रहा था वो इस रूप में जानना चाह रहा था कि इस समय का जो युवा है वो 99 और 2000 से लेके 2025-26 तक का देखें, जिसको आजकल बहुत सारे सामाजिक उसमें जैन जी के नाम से हम देख रहे हैं, तो क्या उसके सामने पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्या के रूप में है, या सिर्फ वो आजकल सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से प्रभावित होने वाले सारे उसमें एक आर्थिक जगत में ही उसका रुझान है, या फिर इस तरह की जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक परेशानियां हैं, उससे भी उसका जुड़ाव उतना ही है जितना वो अपनी टेक्नोलॉजी के साथ जी रहा है?
1: देखिए, कोई भी युवा हो या कोई भी किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, या वो पढ़ रहा है या कॉरपोरेट में है या किसी भी जॉब में है, तो कहीं ना कहीं उसको पर्यावरण के बीच में आना ही पड़ता है, पर्यावरण के संपर्क में वह आता है। और जैसा कि आप देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बड़े शहर हैं, वहां एक ये पर्यावरण विकराल समस्या के रूप में देखने को मिल रही है। जैसे अगर एक उदाहरण के तौर पर लें तो दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में जो AQI का स्तर है वो बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण से हम जब ऑफिस से बाहर निकलते हैं या कॉलेज से बाहर निकलते हैं या शाम को किसी पर्सनल काम से भी बाहर जाते हैं, तो वहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हमारी जो दैनिक गतिविधि है वो प्रभावित होती है, और कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि हम लोगों को मास्क लगा के जाना पड़ता है। तो ये समस्या जब युवाओं के सामने भी आ रही है तो वो अपना उत्तरदायित्व समझता है, और इस पर चर्चाएं होती हैं और होने लगी हैं। तो इसलिए युवा को हम ये नहीं कह सकते कि वो इसके लिए उदासीन बैठा हुआ है,
0: मतलब ये समस्या उसके सामने है। क्योंकि जब हम अपने NCR की बात की कि घर में या कमरे में जब जॉब से आ गए और वहां भी अगर हमें प्यूरिफायर लगा के रहना पड़ रहा है, तो समस्या से तो वो दो चार है, और जब समस्या है तो फिर संवेदनशीलता उसकी बन रही है। लेकिन क्या वो समस्या जो संवेदनशीलता के साथ उसके सामने है, क्या उसकी गतिविधियों में भी हो रही है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी करते हुए भी देख रहे हैं कि पर्यावरणीय पहलुओं के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं टेक्नोक्रेट जिन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन प्राप्त की और फिर अच्छी अच्छी जॉब्स और अच्छे अच्छे उनको अवसर भी मिले, लेकिन कई बार ऐसी सूचनाएं और समाचार हम देखते हैं कि वो लौट के फिर आए, उन्होंने अपने मन का काम किया, पर्यावरण से जुड़े ऐसी जगह पे और ऐसे फील्ड में काम किया जो सामान्यतः देखने में, जिसको हम सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं कह सकते। तो मतलब ये चीजें हैं। मैं आपसे चीजें इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप हर वर्ष नए युवा वर्ग के साथ मिलते हैं, समझते हैं, उनके विचार जानते हैं, उनको भी चीजों से वो कराते हैं, क्योंकि शिक्षा शास्त्र एक ऐसा ही फील्ड है। तो वहां ये चीजें मतलब उनकी एक्टिविटी में निखर के आ रही है, मुखर हो रही है?
1: नहीं, अगर वर्तमान समय में देखें तो इस पहलू पर युवा जो हैं वो काफी हद तक बहुत संवेदनशील है, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि हमारी वर्तमान समय और आने वाले समय अगर इसी गतिविधि चलती रही, ये इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो रहा है। तो जहां उसे अवसर मिलता है, जैसे कि सोशल मीडिया इस समय एक बड़ा माध्यम है अपनी बात को कहने का, तो कई सारी पोस्ट के द्वारा, कई सारे जागरूकता अभियान के द्वारा, और जैसे कई सारे सरकार के द्वारा भी अपील की जाती है, जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम चलाया था, एक पेड़ मां के नाम, तो ये बड़ा बढ़ चढ़ करके सभी

0: विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में और स्कूल्स में बड़े तौर पर इसको जो है बच्चों ने किया, बच्चों से कराया गया और बच्चों की जागरूकता एक्टिविटी दिखाई दी, तो उसी तरीके से सामाजिक संगठनों ने भी इसको लिया, तो उससे एक बड़ा प्रभाव जो है लोगों, कैसे माना जाता है कि युवा अगर थोड़ा संवेदनशील हो जाए, एक स्लोगन है कि अगर वह जान ले, मान ले और ठान ले, तीन शब्द हैं। अगर इन तीनों पे अगर वह विचार करें हम, तो अगर उसने किसी चीज को जान लिया और फिर उसने मान भी लिया कि मुझे करना है और उसने ये ठान भी लिया कि आप करके ही दिखाना है, तो फिर बदलाव से हम बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते कि बदलाव नहीं होगा।
1: नहीं होगा।
0: जैसा कि कई सारे हमारे शिक्षाविद, जैसे स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, उन्होंने युवा पर विशेष फोकस किया था, उन्होंने भी कहा था कि बदलाव अगर समाज में आ सकता है तो युवा पीढ़ी है। तो इस तरीके से युवा को अब ये कहना असंभव है कि उसका ध्यान नहीं है, जागरूक नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में कहीं ना कहीं हम कितने भी काम के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन इन मुद्दों पर हमें संवेदनशील होना पड़ता है और होते हैं।
1: और युवा, हम इस मामले में सौभाग्यशाली हैं, भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है कि इसको आज के संदर्भ में युवाओं का देश कह सकते हैं या कहा जा रहा है। तो एक बड़ा युवा वर्ग, एक बड़ा यूथ हमारे पास है, और जब उसने आपकी ही बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जान ले, मान ले और ठान ले, तो फिर बदलाव सुनिश्चित है। और ये समस्या है, ये देशज नहीं है, स्थानीय नहीं है या एक की नहीं है, इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इतना ही बड़े रूप में देखा जा रहा है। और अभी COP30 हुआ ब्राजील में शायद, तो वहां भी इस तरह के जब मुद्दे होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय, वहां से कुछ निष्कर्ष निकल के आते हैं, तो सोशल मीडिया जैसा आपने, तो वो यूथ के पास पहले वो जानकारी आती है, यूथ के पास पहले वो निष्कर्ष आते हैं, यूथ के पास पहले वो समस्याएं और डाटा आते हैं, जिससे वो दो चार होकर के समाज में उस चीज को नीचे भी लेकर के आ सकता है समाधानों को अपने माध्यम से।
0: एक्चुअल में मेन तो जब तक ये जितने भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी संवेदनशीलता है, हमें ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखाई देगी, यानी हर व्यक्ति का इसमें जुड़ाव नहीं होगा, क्योंकि कॉलेजेस में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, जैसे G20 सम्मेलन भी हुआ था, उसमें भी एक बड़ा मुद्दा था। तो इस तरीके से जब तक ये चीजें ग्राउंड पर एक्टिवेट नहीं होंगी, यानी हर व्यक्ति उसमें अपना अधिकार मान करके, अपने जो है जिम्मेदारी मान करके काम नहीं करेगा, तब तक ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। और ऐसा अब हो रहा है, क्योंकि हम कितने भी आर्थिक हो जाएं, आधुनिक हो जाएं, उसके बावजूद भी हमें पर्यावरण से एक दो होना पड़ता है, पर्यावरण के बिना हमारा काम नहीं चलता।
1: हाँ, क्योंकि वो है ही, उसमें ही हमारा अस्तित्व है, उसी से हमारा अस्तित्व है, और जब तक अस्तित्व को सुरक्षित हम नहीं करेंगे तो हम अपने अस्तित्व के लिए भी असुरक्षित नहीं हो सकते। तो चिंतित भी होना है, और उस चिंता के साथ जो चीजें निकल करके आ रही हैं उन पे हमें एक्शन रिएक्शन भी करना है। और एक, जब तक आपकी बात ये है कि जब तक वो आंदोलन और जन आंदोलन नहीं होगा, हम सबका मुद्दा नहीं होगा, तो शायद तब तक बात बनेगी नहीं। तो फिर से यही होता है कि भाई, अब हमको युवा अगर कहीं ऐसा लगता भी है तो उसको अपने साथ लेना पड़ेगा उसको, क्योंकि बिना उसके हम किसी परिवर्तन की बात नहीं सोच सकते।
0: बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि युवा तो मेन है, और हमेशा आपने देखा होगा किसी भी क्षेत्र में अगर बदलाव की उम्मीद करते हैं तो युवा पीढ़ी से इस जनरेशन में नहीं, अगले आने वाली जनरेशन के लिए भी एक परिकल्पना तैयार होती है कि इससे एक बड़ा चेंज हो। और पर्यावरण जैसा मुद्दा तो हर व्यक्ति, चाहे किसी भी उम्र का है, वह उसके लिए सचेत है, वह चाहता है कि बच्चों में इस तरीके से कुछ डेवलप हो कि वो इस समस्या से निदान के लिए कुछ ना कुछ कार्य करें। अब जैसे इस समस्या को लेकर ही बड़े शहरों में देखिए कि इतनी सारी डिजीज जो है सामने आ गई है, जैसे स्नोफीलिया की बीमारी है, सांस की बीमारी है, ये सब है। और अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो एक तरीके से 10 ईयर्स का हमारा जो एज बैरियर है वो बैक में आ गया है, क्योंकि अगर यही हालत रही और इस तरीके से ही रहा तो बहुत सारे इसके डिफेक्ट ऐसे होंगे जिसकी वजह से लोगों की औसतन आयु में 10 वर्ष की कमी देखने को मिलेगी।
1: तो और वो कॉस्ट हम बियर नहीं कर सकते,
0: जी
1: कम से कम जो आज किन्हीं कारणों से, चाहे विकास हो, तकनीकी विकास हो, सामाजिक विकास हो, या मानव ने अपने आप को इतना सोसाइटी को आगे लेके आए हैं और आज जीवन के जो वर्ष हैं वो जीवन काल के वो बढ़े हैं, तो उसको अगर फिर से घटना पड़े ऐसी छोटी छोटी गतिविधियों से जिनके माध्यम से हम संसार को और पर्यावरण को बचा सकते हैं या उससे दूषित और प्रदूषित भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी, हर समाज की, हर संगठन की, कि भाई इसको तो इस कॉस्ट को तो हम बियर नहीं कर।

0: सकते, इसको तो हमें काम करना ही पड़ेगा, बचाना ही पड़ेगा। हर गतिविधि में हमें ये देखना पड़ेगा करने से पहले कि कहीं से हमारा पर्यावरण प्रदूषित तो नहीं हो रहा।
1: बिल्कुल सीधे साफ तौर पर यह है कि अगर हर व्यक्ति का प्रयास होगा, साझा प्रयास होगा, व्यक्तिगत प्रयास होगा, हम हर घर में, अपने घर में एक छोटा सा पौधा लगाएं, कम से कम तुलसी के पौधे से ही शुरुआत करें, क्योंकि उसमें मेडिसिन मेडिकली भी जो है वो प्रोटेक्ट
0: बिल्कुल
1: करता
0: बिल्कुल।
1: है। तो अगर इस तरीके से सब लोग प्रयास करें, स्कूल कॉलेजेज में पोस्टर्स की प्रतियोगिता कराएं, कुछ इस पर डिबेट कराएं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं कराएं, और कई सारे सेमिनार्स वगैरह जो गवर्नमेंट के द्वारा भी आयोजित होते हैं, बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से या प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो अक्सर करके चर्चा भी की उन्होंने कई बार इस मुद्दे को लेकर के, और विश्व पटल पर भी इसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। तो इस तरीके से अगर इन मुद्दों को हम वास्तविकता में बच्चों को, छोटे बच्चों को भी शुरुआत वहां से कराएं, तो छोटे बच्चों तो एक तरीके से इस तरीके की अवस्था होती है कि वो जब चाहें, हम उन पर जो कराना चाहें वो बड़े
0: जी
1: अच्छे से करते हैं, अच्छे से इंटरेस्ट के साथ करते हैं,
0: जी
1: तो और जो आदतें उनमें बन जाती हैं वो आदतें आगे तक काम करती हैं। तो
0: मतलब आपका कहना यह है कि जीवन शैली में इस चीज को ले जाना पड़ेगा, और बचपन में जैसे हम उसको बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, खाना पीना सिखाते हैं, ऐसे ही उसको पर्यावरणीय पहलुओं से भी सिखाना पड़ेगा कि भाई ये भी हमारे जीवन के अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। और इसमें जापान की हम काफी चर्चा करते हैं कि वहाँ प्राइमरी तक की एजुकेशन में पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ जीना सिखाया जाता है। तो वहां से उन रूट लेवल पर, उन उस मानसिकता में, उस जीने की शैली में इस इन चीजों को हमें लाना पड़ेगा, और जो पहले हमारी भारतीय संस्कृति में था भी।
1: नहीं बिल्कुल था, और सरकार भी अभी इस ओर जागरूक हो रही है, पाठ्यक्रम में भी बहुत सारे जो है हर हर लेवल पे, चाहे प्राइमरी का लो हो या उससे ऊपर का हो या हायर में हो, हर एक में पर्यावरण विषय पर जो संवेदनशीलता दिखाते हो पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, और बच्चे उसको समझते भी हैं और कराया जा रहा है प्रैक्टिकल रूप में। तो निश्चित ही अगर इस चीज़ को एक बड़े अभियान के तौर पर किया जाए, एक हर तरफ से जो है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, समाज के माध्यम से भी, सेमिनार गोष्ठियों के माध्यम से भी, और समय समय पर एक बड़े अभियान के तौर पर इसको चलाएं, तो निश्चित ही ऐसा नहीं है कि समस्या समाधान ना हो, समस्या का समाधान निश्चित संभव है।
0: जी। और समाज किसी बात से जुड़ जाए, और हमारा जो युवा है वो जुड़ जाए, जान ले, मान ले और ठान ले, मैं आपकी इसी बात को करके समाप्त कर रहा हूँ, तो फिर कोई समस्या बड़ी नहीं होती और बड़ी है भी नहीं। लेकिन बस यही है कि उससे हमें समझ पैदा करनी पड़ेगी, और इसे समस्या को समस्या न मान करके हमें एक सामाजिक पहलू मानना पड़ेगा। और समाज के बिना या ऐसी चीज़ों के बिना तो हम अपने जीने की संभावना भी नहीं कर सकते। तो पर्यावरणीय समस्या हम सबकी समस्या, सामाजिक उत्तरदायित्व की समस्या, और उसी रूप में लेंगे तो शायद इसके समाधान भी निकल आएंगे। समाधिया जी, आप आए और अपने विचार वाणी से हमारे श्रोताओं को बांधा, समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे अभी हिंदी भेंटवार्ता क्रम में डॉक्टर दीन बंधु समाधिया से ओपी सिंह की ली गई भेंटवार्ता, विषय था पर्यावरणीय पहलुओं पर युवा वर्ग की संवेदनशीलता। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और अंबेडकर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का।
1: प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने विगत 5 मई को बांदा पहुंचकर स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शिक्षा मित्र सम्मान कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय के डेमो चेक वितरित किए। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि
2: जो शिक्षा मित्र हैं, जो शिक्षक हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये कल के भारत के भविष्य को संवारने का काम करते हैं, सजाने का काम। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और मैं भी अपील करता हूं, डबल इंजन की सरकार में हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि सरकार की जो योजनाओं का लाभ है वो अंतिम गाँव तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे।

0: तो इस प्रदेश में रहने वाले शिक्षा मित्र भाई भी अछूते न रहे।
1: वहीं सरकार द्वारा बढ़ाए गए मानदेय को लेकर जनपद के शिक्षा मित्रों में खुशी है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों की समस्या को समझते हुए 8,000 रुपए मानदेय बढ़ाने के साथ ही 5 लाख की कैशलेस सुविधा भी दी है, जिसको लेकर शिक्षा मित्र के मन में सरकार के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई है। भीषण गर्मी के लिए प्रसिद्ध बुंदेलखंड में इस समय पारे का कहर चरम पर है। आसमान से बरसती आग के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वैसे तो अप्रैल माह के बाद ही यहाँ पारा 45 के ऊपर पहुंचता था, लेकिन इस बार अप्रैल से ही अत्यधिक गर्मी की शुरुआत हो गई थी, जिसके चलते लोग घरों पर दुबक कर बैठ गए हैं और बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी के प्रकोप से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और बहुत मजबूरी होने पर ही लोग घरों से निकल रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों से बांदा और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की वजह से तापमान में कुछ कमी आई है, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी और अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। बीते साल भी प्रदेश में सबसे ज्यादा पारा बांदा जनपद का ही था। वहीं ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से अस्पताल में डायरिया के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, खासकर बच्चे गर्मी की चपेट में अधिक आ रहे हैं। जनपद में गर्मी से निपटने के लिए प्रशासन भी चौकन्ना है। बांदा के जिला अधिकारी अमिता शेरी ने बताया कि
2: हीट वेव में जिला प्रशासन पूरी अपनी कमर कसे हुए है। पिछले कुछ समय से बांदा जिला प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का सबसे गर्म जिला उभर कर आ रहा है। लोगों ने जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल अपनी टीम्स तैयार की हैं जो उनको टेक केयर करेंगी। इसके अलावा स्कूल के टाइमिंग्स हम लोगों ने चेंज किए हैं। शहर के अंदर भी शेड और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया है। बहुत जरूरी हो तो ही निकलें और अपने को कवर करके लाइट क्लोथ्स में तब वहां पर जाएं।
1: जनपद में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचारी रोग और दस्तक अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत संचारी रोग से संबंधित बीमारियों जैसे मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और वायु जनित रोगों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा घर घर जाकर उन्हें बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी व जनपद की जिला मलेरिया अधिकारी पूजा हिरवार ने बताया कि संचारी रोग अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में से एक प्रमुख अभियान है। यह अभियान 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया गया। इस अभियान में संचारी रोग से संबंधित, जिसमें मच्छर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियों के साथ ही वायु जनित रोग भी आते हैं, इन रोगों से बचाव के लिए इस अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया। बांदा में साइबर अपराधियों द्वारा एक बड़ा घोटाला करने की साजिश रची गई, लेकिन बैंक मैनेजर की सतर्कता से मामला पकड़ में आ गया और इन अपराधियों की साजिश नाकाम हो गई। साइबर अपराधियों ने मुख्य विकास अधिकारी के खाते से नेट बैंकिंग के जरिए 1,68,00,000 रुपए निकालने का प्रयास किया। साइबर ठग ने अपने को DRDA का परियोजना निदेशक बताते हुए बैंक मैनेजर को मुख्य विकास अधिकारी के पैसे निकालने के लिए फोन किया। इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति बैंक की शाखा में पहुंचा और खुद को विभागीय कर्मचारी बताते हुए खाते से संबंधित दस्तावेज जमा किए, जिनमें CDO समेत कई अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगी हुई थी। शाखा प्रबंधक को कागजात और प्रक्रिया पर संदेह हुआ तो उन्होंने गहन जांच शुरू की, जिसमें सभी दस्तावेज फर्जी लगे, जिसके बाद तत्काल शाखा प्रबंधक ने उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए पुलिस को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस के बैंक पहुंचने से पहले ही शातिर अपराधी वहां से फरार हो गए। बाद में DRDA के परियोजना अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV की मदद से पहचान कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है।
3: जनपद बांदा ED DRDA से प्राप्त तहरीर के आधार पर साइबर क्राइम थाना बांदा में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें साइबर अपराधियों के द्वारा ED DRDA के द्वारा एक संचालित खाते को इंटरनेट बैंक लेकर के जिस खाते में पैसा निकालने का दुष्प्रयास किया गया है। ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों की जागरूकता और बैंक के अधिकारियों की सतर्कता तथा साइबर पुलिस के सहयोग से जो खाते में लगभग 1,68,00,000 रुपए था उसको बचाया गया है। विवेचना की जा रही, साक्ष्य संकलन कर और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करके विवेचना का विधि प्रसारण।
4: बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अंबेडकर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुराग चौधरी का।
5: अंबेडकर नगर में ईसा प्रिया ने जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ईसा प्रिया 2016 बैच की IAS है। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और अन्य आवश्यक जानकारी ली। नवागत जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन, शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी जवाबदेह एवं जन केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित कराना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं IPS अफसर प्राची सिंह ने अंबेडकर नगर के SP पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना के सफल संचालन के दृष्टिगत जनपद अंबेडकर नगर में स्वगणना अभियान को व्यापक रूप से संचालित किए जाने के लिए जिलाधिकारी प्रमुख जनगणना अधिकारी ईसा प्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला समन्वय समिति तथा विभागवार नामित प्रभारी एवं सह प्रभारी अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकान गणना का कार्य 22 मई से 20 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा। इससे

0: पूर्व आमजन की सुविधा के लिए 7 मई 2021 से मई 2026 तक 15 दिवसीय स्वगणना अवधि निर्धारित की गई है। इस अवधि में नागरिक स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपनी जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विभिन्न वर्गों तक अधिकतम पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विभागवार निर्धारित रणनीति के अनुसार व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग स्वगणना प्रक्रिया में सहभागिता करें। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को डिजिटल स्वगणना से जोड़ते हुए अभियान को सफल बनाया जाए। स्वगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण में नागरिकों को https://sc.census.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश का चयन करते हुए कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगिन करना होगा। इसके पश्चात परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी दर्ज कर परिवार पंजीकरण किया जाएगा। ध्यान रहे कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग केवल एक ही परिवार के लिए किया जा सकेगा तथा पंजीकरण के बाद परिवार के मुखिया का नाम परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। द्वितीय चरण में नागरिक अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन कर मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करेंगे। इसके बाद जिले, गांव, नगर एवं स्थानीय क्षेत्र का विवरण भरना होगा तथा मानचित्र पर अपने निवास स्थान को चिन्हित करना होगा। लाल मार्कर को सही स्थान पर स्थापित कर निवास की पुष्टि की जाएगी, जिससे आवास की सटीक पहचान सुनिश्चित हो सके। तृतीय चरण में नागरिकों को जनगणना प्रश्नावली भरनी होगी। प्रश्नावली में मकान सूचीकरण एवं परिवार संबंधी आवश्यक जानकारियां दर्ज की जाएंगी। पोर्टल पर उपलब्ध आवश्यक सूचना एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQs की सहायता से प्रक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। जानकारी भरने के बाद पूर्वावलोकन स्क्रीन पर दर्ज विवरण की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन किया जा सकेंगे। पूर्ण संतुष्टि के बाद अंतिम प्रस्तुतिकरण फाइनल सबमिशन करना होगा। अंतिम प्रस्तुतिकरण के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त कार्यालयों में स्वगणना हेल्प डेस्क भी बनाए जाने के निर्देश दिए।
1: जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 7 मई से लेकर 21 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त जो इस जनपद के गणमान्य लोग हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है, जो माननीय गण हैं उनसे भी अनुरोध किया गया है और जितने भी यहाँ अधिकारी हैं जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे, उन सबसे अनुरोध किया गया है कि वो ये इंश्योर करें कि समस्त लोग अपने सेल्फ एन्यूमरेशन को सेंसस की जो वेबसाइट है उस पे उसको फीड करके अपना सेल्फ एन्यूमरेशन कराएं। इसको हम लोग एक व्यापक अभियान के रूप में चलाएंगे और उसके बाद 22 तारीख से लेकर आगे फिर उसका एन्यूमरेटर्स के द्वारा जनगणना की कार्रवाई की जाएगी। समस्त कार्यालय इंक्लूडिंग कलेक्ट्रेट एक सेल्फ एन्यूमरेशन हेल्प डेस्क बना लें, जिसमें जो लोग ट्रेन किए गए हैं एन्यूमरेशन कराने के लिए, उनके द्वारा उस कार्यालय के समस्त कर्मचारी अधिकारियों का सेल्फ एन्यूमरेशन कराने में सहयोग किया जाए और व्यापक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसमें प्रतिभाग किया जाए।
0: अम्बेडकर नगर में शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने शिक्षा मित्रों को सम्मानित किया। सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के बाद जिले में 1911 शिक्षा मित्रों को इसका लाभ मिला है। अम्बेडकर नगर में बाढ़ आपदा से प्रभावित ढंग से निपटने, जनहानि एवं धनहानि को न्यूनतम रखने तथा राहत एवं बचाव कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ईशा प्रिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाढ़ पूर्व तैयारियां, राहत प्रबंधन, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों तथा कटान रोधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। अम्बेडकर नगर में बाढ़ से प्रभावित जिन किसानों की खरीफ की फसल नुकसान हुई थी, उन्हें फसल बीमा का लाभ मिला है। जिले में लगभग 4000 ऐसे किसान हैं जिनका नुकसान हुआ था। फसल बीमा की तरफ से इन किसानों को 53,80,000 रुपए वितरित किया गया है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम आबोहवा में आइए सुनते हैं हेमंत झा से जानकारी। विषय है सामाजिक वानिकी और पर्यावरण।

विकास का एक पक्ष यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 13 लाख हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लकड़ी, चरागाह, ऊर्जा की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। वनों की निरंतर कटाई के फलस्वरूप किसानों के लिए मैदानी खेतों में बाढ़ या सूखे की

स्थिति बन गई है। दूसरे शब्दों में यूं कहा जाए कि देश को प्रदूषण, वन विनाश और मरुस्थलीकरण की स्पष्ट जीवन संकटमयी चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ रहा है। यदि समय रहते हम अपने तुरंत के स्वार्थों में लिप्त होकर गांवों में पेड़ पौधों को काटते रहे तो पर्यावरण का पतन हो जाएगा और जिससे

ग्रामीण संस्कृति व पर्यावरण को शुद्ध रखने के प्रति संवेदनशील रहे हैं, लेकिन अब हम परिस्थितिवश और परिवेशगत तनावों को पैदा कर वनों को पतन करने में पीछे नहीं रह रहे हैं। अतः हमारी सामाजिक परिस्थितियों में सामाजिक वानिकी की योजनाओं का निर्माण करते हुए उसकी सफलता के साथ क्रियान्विति प्रभावशाली ढंग से की जाए। सामाजिक वानिकी एक विकासात्मक आयोजन है जिसमें नीति निर्धारण और प्रयोजना क्रियान्विति के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिकार, भूमिका, लाभ और सहभागिता को विस्तृत रूप प्राप्त होगा। हमारे देशवासी वैदिक काल से वृक्षों एवं नदियों को पूजते आ रहे हैं। तुलसी, वट, पीपल, बेल व आंवला आदि वृक्षों की आज भी हम पूजा करते हैं। जब जनसंख्या व संसाधनों में संतुलन था, तब प्रत्येक गांव, कस्बा, शहर अपनी अपनी सीमाओं पर वन क्षेत्रों को समेटे था। बढ़ती जनसंख्या व प्रगति के नाम पर आर्थिक लाभ के लिए वनों को द्रुत गति से काटा गया, जिसके फलस्वरूप वह भूमि खेती के लिए काम में आने लगी या बंजर ही पड़ी है। आज बचे कुचे वन भी विनाश की कगार पर खड़े हैं। अतः सामाजिक वानिकी योजना को प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। उसके लिए ग्रामीण एवं शहरी आबादी क्षेत्रों के भीतर एवं सीमाओं पर वन क्षेत्रों को विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को वन उपज की आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय रूप से संभव हो सके। इस परियोजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार भी प्राप्त होगा, तथा वन क्षेत्र विकसित होने से पर्यावरण में सुधार तो होगा ही, इसके साथ हमारी वन उपज की जरूरतों की भी पूरा किया जा सकेगा। इससे योजना पर किए गए खर्च का लाभ राष्ट्र को प्रचुर मात्रा में मिल सकेगा तथा पर्यावरण भी संतुलन रहेगा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा के अंतर्गत जानकारी हेमंत झा से। विषय था सामाजिक वानिकी और पर्यावरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम प्रस्तुत है ब्रज दर्पण। आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं जितेंद्र सिंह।
1: ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार।
0: संयोजक हैं ओपी सिंह।
1: शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, दिन की शुरुआत अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचार के साथ की जाए तो निश्चित रूप से इससे हमारा पूरा दिन खुशनुमा रहता है और कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी पर भी इसका बड़ा गहरा और सकारात्मक असर होता है। क्योंकि जब बात सकारात्मकता की चल रही है तो दोस्तों, हमारा आज का विचार भी यही है कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन हमेशा हमारी सोच सकारात्मक रहे। क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, कभी सफलता मिलती है तो कभी मुश्किलें हमारा रास्ता रोक लेती हैं, लेकिन एक चीज़ जो हर परिस्थिति में हमें मजबूत बनाए रखती है वो है हमारी सकारात्मक सोच। और कहते भी हैं कि अगर सोच अच्छी हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक ही परिस्थिति दो

लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। किसी को बारिश में कीचड़ दिखाई देती है, तो किसी को वही बारिश का मौसम बड़ा खूबसूरत और सुहाना लगता है। बस यही फर्क होता है हमारी सोच का। जिंदगी में मुश्किलें सबके पास आती हैं, कभी पढ़ाई का तनाव, कभी हमारे काम की चिंता, तो कभी रिश्तों में उलझन, लेकिन हर अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद छिपी होती है और वही उम्मीद हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, हमें प्रेरणा देती है। जब हम अपने विचार अच्छे रखते हैं तो ये जिंदगी हमको खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि हर नई सुबह आशा की एक नई किरण लेकर आती है और शायद यही बात हमें जीना सिखाती है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सकारात्मक सोच के साथ जिंदगी को अपनाइए।

0: श्रोताओं, जैसा कि सरकार द्वारा बच्चों एवं महिलाओं के लिए विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, आज हमारे साथ हैं हमारे जनपद मथुरा के जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री विकास चंद्र जी। आज हम ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम ब्रज दर्पण में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रदेश में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य संचालित

0: की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता या माता पिता दोनों की 1 मार्च 2020 के बाद किन्हीं कारणों से मृत्यु हो गई है, ऐसे बच्चों को उनके शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए प्रतिमाह 2,500 रुपये की दर से भुगतान किया जाता है। इस योजना के लिए आवश्यक है कि बच्चे की आयु 23 वर्ष से कम हो और उसका किसी विद्यालय में प्रवेश होना जरूरी है, यानी कि वो शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। अगर बच्चे की आयु 6 वर्ष से कम है तो उस पर ये शर्त लागू नहीं होती है कि वो शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। ऐसे बच्चों के माता पिता, अगर किसी एक की मृत्यु हुई है तो दूसरे माता या पिता का एक आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जो अधिकतम 3 लाख रुपए वार्षिक हो सकता है। और अगर बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति में किसी भी आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत अच्छी योजना है। इसके माध्यम से 23 वर्ष तक बच्चे की शिक्षा को निरंतर जारी रखने के लिए सरकार के द्वारा 2,500 रुपये की प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है।
1: और इसके अलावा हम चाहेंगे और भी कुछ योजनाओं के बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई सारी योजनाएं जनपद में महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेके चलाई जा रही हैं। इसमें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड भी है। यह उन बच्चों के लिए है जिनके माता या पिता की मृत्यु कोविड के काल के दौरान हुई थी। ऐसे बच्चों को 4,000 रुपये प्रतिमाह की दर से 18 वर्ष तक की आयु के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रदेश की ऐसी बच्चियां जिनके परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए है और परिवार में 2 बच्चे हैं, ऐसी बच्चियों को 6 चरणों में 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें बालिका के जन्म पर 5,000, 1 वर्ष का टीकाकरण पूरा होने पर 2,000, कक्षा 1 में प्रवेश करने पर 3,000, कक्षा 6 में प्रवेश करने पर 3,000, कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपए और 10वीं या 12वीं पास करने के बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा या स्नातक में प्रवेश लेने पर 7,000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
1: जैसा कि आपने जो कन्या सुमंगला योजना में बताया कि विभिन्न चरणों में इसमें राशि दी जाती है, तो क्या ये योजना शुरू से ही इसके लिए अप्लाई करना होगा या किसी भी चरण से इसका लाभ लिया जा सकता है?
0: आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह योजना इतनी सरल है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी बालिका को पहले चरण का लाभ मिला है तभी दूसरे चरण का मिलेगा। किसी भी चरण में बच्चा प्रवेश कर सकता है। मान लीजिए उसे 2 चरण का लाभ नहीं मिला था, लेकिन कक्षा 1 में प्रवेश करने पर उसे लाभ मिलेगा और उसके बाद फिर कक्षा 6, 9 और 12 की जो चरण पर जो लाभ मिलते हैं वो भी मिलेंगे।
1: तो क्या परिवार में एक पुत्री दो पुत्री पर ये योजना लागू है, कुछ ऐसी भी सीमा है?
0: जी हाँ, परिवार में 2 बच्चे होने चाहिए और बच्चियों को ही चूंकि लाभ मिलता है तो अगर परिवार में 1 बच्ची है तो उसे लाभ मिलेगा। अगर दोनों बच्चे लड़कियां हैं और योजना के अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो लाभ मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर तीसरा बच्चा हो जाता है, भले ही वो लड़की ही क्यों ना हो, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
1: अगर दूसरी लड़की जो है अगर जुड़वा पैदा होती है तो क्या लाभ मिलेगा दूसरी बार में?
0: हाँ जी, ऐसी कंडीशन में अगर दूसरे प्रसव के समय जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तब तीनों को लाभ मिलेगा।
1: इसी के साथ मिशन वात्सल्य के बारे में और बताएं कि इसका क्या उद्देश्य है?
0: भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत 2 प्रकार के बच्चे, एक तो देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे और दूसरा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे आते हैं। इन दोनों प्रकार के बच्चों को विभिन्न प्रकार की विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है। अगर कोई निराश्रित बच्चा है तो उसके लिए हमारे जनपद में बाल गृह बालक है, बाल गृह बालिका है, बाल गृह शिशु है। अगर कोई अपचारी बच्चे हैं, अगर उन्होंने अपराध किया है तो उनके लिए राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर है, उसमें बच्चों को रखा जाता है। साथ ही हमारे यहाँ बच्चों के देख रेख और संरक्षण के लिए बाल कल्याण समिति, अपचारी बच्चों के लिए किशोर न्याय बोर्ड आदि की व्यवस्था हमारे यहाँ है।
1: इसी के साथ आपके विभाग द्वारा एक स्पॉन्सरशिप योजना और संचालित की जाती है, इसके बारे में और बताएं कि ये योजना क्या है?
0: मिशन वात्सल्य स्कीम के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना संचालित है। इसमें जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों की उचित देखभाल के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। जैसे कि कोई बाल श्रम से मुक्त कराया गया बच्चा है, भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया बच्चा है, या किसी संस्थागत देखभाल में बच्चा रहा है और वहाँ से मुक्त होकर निकलता है, ऐसे बच्चों का, या कोई दिव्यांग बच्चा है, या ऐसा कोई बच्चा है जिसके माता पिता किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, तो ऐसे बच्चों को उनकी शिक्षा पूर्ण करने के लिए, उनके पोषण के लिए

0: एक वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु का अगर बच्चा है तो उसे 4,000 रुपये प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता मिलती है।
1: और इसी के साथ कुछ जो योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जाती हैं उनके बारे में और बताएं।
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जनपद में और हमारे प्रदेश में महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, जिसके माध्यम से हम प्रचार प्रसार के माध्यम से आम जनमानस को प्रेरित करते हैं कि वो बालिकाओं को जन्म दें, बालिकाओं के शिक्षा को प्रोत्साहित करें, उन्हें आगे बढ़ने का पूरा अवसर दें। इसके लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम जनपद स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। साथ ही बहुत ही एक लोकप्रिय योजना है पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना, जिसे सामान्य भाषा में वो विधवा पेंशन के नाम से जाना जाता है। हम जनपद में लगभग 51,000 लोगों को इस पेंशन योजना का लाभ दे रहे हैं। इस योजना में ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है और उनकी आय अधिकतम 2 लाख रुपये वार्षिक है, ऐसी महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की दर से विधवा पेंशन दी जाती है और यह DBT के माध्यम से उनके खाते में जमा होती है। और यह योजना पूरी तरीके से ऑनलाइन है कि इसके लिए कि महिला को या किसी भी आवेदनकर्ता को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन ही स्वीकृति की प्रक्रिया है और सीधे DBT के माध्यम से उनको धनराशि की प्राप्ति होती है।
1: और इसी के साथ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत भी कुछ लाभ दिया जाता है, तो उसके बारे में और बताएं।
0: जी हाँ, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष ऐसी योजना है जिसमें जघन्य हिंसा से शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल आर्थिक और चिकित्सकीय राहत सुनिश्चित की जाती है। पीड़िताओं को भरण पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ परिस्थितिवश यदि ऐसा कोई अपेक्षित है तो पीड़िताओं के अवयस्क बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा हेतु क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्राविधान है। इस योजना में IPC और अन्य पॉक्सो आदि अधिनियमों के अंतर्गत 9 धाराएं हैं जिनमें आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाती है। जैसे 326A IPC के तहत अगर किसी महिला पर एसिड अटैक होता है तो उसके जलने के प्रतिशत के आधार पर 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाती है। 304B अगर किसी महिला की दहेज हत्या हो जाती है और उसके कोई अवयस्क बच्चे हैं तो उनको 3 लाख रुपए दिए जाते हैं और उनको FD किया जाता है ताकि बालिग होने पर उन वो धनराशि को प्राप्त कर सके, अपनी शिक्षा और ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसी तरीके से 376A, 376G और 376D के अंतर्गत भी 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार से अगर बच्चों के विरुद्ध कोई अपराध होता है 4 पॉक्सो या 6 पॉक्सो में तो उनको 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और 14 पॉक्सो एक्ट के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति। और यदि किसी बच्चे के साथ कोई दुराचार होता है और पॉक्सो की धारा 4 या 6 में मुकदमा दर्ज होता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजनों को 10 लाख रुपए तक दिए जाने का प्राविधान है।
1: और इसी के साथ सरकार द्वारा विभिन्न जनपदों में और हमारे जनपद में भी वुमेन वन स्टॉप सेंटर भी खोले गए हैं, तो इनके बारे में बताएं, इसका क्या उद्देश्य है और क्या इसका लाभ लिया जा सकता है।
0: देखिए, भारत सरकार के द्वारा मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं। मथुरा जनपद में हमारे 2 वन स्टॉप सेंटर हैं, एक वृंदावन में है और एक मथुरा सदर में है। इन सेंटर के माध्यम से एक छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, जैसे चिकित्सा, काउंसलिंग, उनका अगर रिपोर्ट लिखाना है या उनके लिए क्रैच है, मेस है, 5 दिन के रहने की व्यवस्था आदि, और अगर आवश्यकता पड़े तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू वैन आदि की सुविधाएं हैं। हिंसा से पीड़ित इन महिलाओं को एक छत के नीचे 5 दिवस तक हम रखते हैं और उनकी जो भी तात्कालिक आवश्यकताएं हैं उन्हें पूर्ण करते हैं और उनकी काउंसलिंग आदि के माध्यम से उन्हें ट्रॉमा काउंसलिंग आदि करके उन्हें हम सहायता पहुंचाते हैं।
1: और निराश्रित महिलाओं के लिए भी आश्रम की व्यवस्था भी हमारे जनपद में संचालित है।
0: जी हाँ, महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रदेश का इकलौता कृष्ण कुटीर महिला आश्रय सदन वृंदावन में स्थित है। इसमें 1,000 वृद्ध महिलाओं को और विधवा महिलाओं को रखे जाने की व्यवस्था है और ये समस्त आधुनिक सुविधाओं से युक्त आश्रय सदन है। और मैं आपके माध्यम से सामान्य जनमानस से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपके आस पड़ोस में ऐसी कोई वृद्ध और विधवा महिला है जिसके जीवन यापन का संकट हो, निराश्रित है, नैतिक संकट से ग्रस्त है, तो ऐसी महिलाओं को आप कृष्ण कुटीर महिला आश्रय सदन में लाएं ताकि हम उनकी देखभाल कर सकें और उनके जीवन में कुछ गुणात्मक सुधार कर सकें।
1: और इसके अलावा चाइल्ड हेल्पलाइन और महिला हेल्पलाइन के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दें हमारे श्रोताओं को।
0: जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जैसे कि बच्चों और महिलाओं के लिए

0: बहुत सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं, लेकिन उन सुविधाओं तक या योजनाओं तक आम व्यक्ति या बच्चे या महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा दो विशेष हेल्पलाइन चलाए गए हैं। एक है 1098 यानी कि 1098, जिसे चाइल्ड हेल्पलाइन कहते हैं। अगर कोई भी बच्चा संकट में है, परेशानी में है, निराशित है, कहीं गुम हो गया है, तो वो यदि इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करता है 1098 पर, तो हमारी जो एक समर्पित डेडिकेटेड टीम है वो संपर्क करती है और उस बच्चे को अपने संरक्षण में लेके और जो भी उसे तात्कालिक आवश्यकताएं होती हैं उन्हें पूर्ण कराती है। यदि बच्चा अपना नाम पता या अपना पहचान या निवास का विवरण देने में सक्षम नहीं होता है, तो हम मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत संचालित अपने बाल गृह या शिशु गृह में या बालिका गृह में रखते हैं और काउंसलिंग के माध्यम से उस बच्चे के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चा अपने माता पिता या परिवार तक पहुँच सके। इसी तरह महिलाओं के लिए 181 महिला हेल्पलाइन है। अगर कोई महिला संकटग्रस्त है, किसी समस्या में है, घरेलू हिंसा से पीड़ित है या किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है, तो 181 टोल फ्री नंबर पर कॉल करती है। हमारी डेडिकेटेड हेल्पलाइन के माध्यम से हमारी टीम पहुंचती है, उसे रेस्क्यू करके वन स्टॉप सेंटर लाती है और उसे भोजन, वस्त्र, आवास के साथ ही काउंसलिंग के माध्यम से पता करने का प्रयास करती है कि इस महिला का आवास कहाँ है, क्या समस्याएं हैं और उनका निराकरण करने का हम भरपूर प्रयास करते हैं।
1: जी, आपने इतनी सारी योजनाओं के बारे में बताया। अगर इन योजनाओं के लिए जो भी योग्य व्यक्ति है जो कि इस अर्हता श्रेणी में आता है, तो वो कैसे आवेदन कर सकता है?
0: ये सारी योजनाएं ऑनलाइन हैं और ऑनलाइन के माध्यम से इसमें आवेदन किया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति कार्यालय में आके इसकी जानकारी करना चाहता है, तो प्रत्येक जनपद में जिला उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी का कार्यालय है, सामान्यतः या कलेक्ट्रेट या विकास भवन परिसर में होता है। आप वहां पर पहुंच के इस योजना का फॉर्म ले सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट की भी जानकारी ले सकते हैं या किसी प्रकार की आपकी सुविधा या जानकारी चाहिए तो आपको मिल सकता है। मथुरा में कलेक्ट्रेट परिसर में रूम नंबर 43 में जिला प्रोबेशन अधिकारी का कार्यालय है। आप इस संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहें तो आप निसंकोच ऑफिस आवर में यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, हमारे साथ रहे जिला प्रोबेशन अधिकारी मथुरा श्री विकास चंद्र जी। और जैसा कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए विभिन्न तरह की जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी, जागरूक भी किया, और आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। आज आपने हमारे श्रोताओं तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और लगभग सभी योजनाओं के बारे में जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनके बारे में बताया, इसके लिए धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

मित्रों, अब हम अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट क्या करें क्या ना करें में आपसे ये अनुरोध करना चाहेंगे कि जल का संरक्षण करें, क्योंकि जल प्रकृति का अनमोल उपहार है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है और आज लिया गया छोटा सा संकल्प आने वाले कल को सुरक्षित बना सकता है। मित्रों, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता जल है, क्योंकि जल ही हमारे जीवन का आधार है। बिना जल के हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए पानी यानी जल अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य के दैनिक कार्यों से लेकर खेतीबाड़ी, उद्योग और पर्यावरण तक हर क्षेत्र में जल की काफ़ी आवश्यकता रहती है। जल की हर जगह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है और बिना पानी के अपने जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए ये कहा जाता है कि जल है तो कल है, क्योंकि उन क्षेत्रों को देखिए जहाँ लोग कितनी दूर दूर से पानी भर कर लाते हैं, उसे स्टोर करते हैं, क्योंकि वहाँ जल की काफ़ी कमी रहती है। और जहाँ उन क्षेत्रों में जहाँ पानी आसानी से उपलब्ध रहता है, वहाँ लोग व्यर्थ में ही पानी को बहाते हैं, यानी वो पानी पानी की कद्र नहीं करते। आज के समय में जल संकट एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या, पेड़ों की कटाई, नदियों का प्रदूषण और पानी का अत्यधिक दुरुपयोग इस समस्या को और दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है। लोग आवश्यकता से अधिक पानी खर्च करते हैं, जिससे कि हमारा भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। अगर हम पिछले एक दशक की बात करें तो ये पाएंगे कि एक दशक यानी पिछले 10 सालों में भूजल स्तर में काफ़ी कमी आई है, और ये गिरावट अगर इसी तरह से जारी रही तो निश्चित रूप से हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य काफ़ी गंभीर जल संकट से जूझेगा।

0: क्योंकि जिस स्तर से भूजल स्तर नीचे जा रहा है, अगर उसको देखते हुए हमने जल संरक्षण के उपायों को नहीं अपनाया तो हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए समय रहते हमें जागरूक होने की आवश्यकता है और इस पर ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है। जल संरक्षण का सीधा मतलब है कि हम पानी का सही और सीमित उपयोग करें और उसे व्यर्थ होने से बचाएं, क्योंकि हमारा आज का जो उपाय है वही हमारे कल को सुरक्षित रहेगा। और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा अपनी दैनिक आदतों में बदलाव लेकर आएं। जैसे आप ब्रश या शेविंग करते हैं तो उस समय जल को बंद कर, पानी की टोटी को बंद कर दें। नहाएं तो हम मग या बाल्टी से नहा सकते हैं। शावर से नहाने की अपेक्षा अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे भी काफ़ी जल की बचत होगी। और हमेशा सफाई के लिए पाइप या पानी से घंटों तक जल बहाने की बजाय अगर हम झाड़ू से या वाइपर से सफाई करें तो इससे भी काफ़ी जल की बचत होगी। और वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी अगर संभव हो तो उसे भी अपनाएं। और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम पानी की एक एक बूंद के महत्व को समझें। और इसी के साथ एक नज़र आज की खास खबरों पर डाल लेते हैं। आज की खास खबरों में है कि प्रदेश में बंदरों को पकड़ने के लिए किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं है, वहीं आबादी वाले इलाकों में इस समस्या से निजात दिलाने के लिए गांव, कस्बों व शहरों के बाहर फलदार वृक्ष भी बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए शासन ने सभी जिलाधिकारियों को ज़रूरी निर्देश दे दिए हैं। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मांग की है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की जाँच केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान से कराई जाए। और प्रदेश में जल जीवन मिशन को रफ्तार देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने बड़ा बजट तय किया है। करीब 28,000 करोड़ रुपए की मदद से ग्रामीण इलाकों में अधूरे पेयजल कार्य पूरे किए जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं आज के दिन विशेष की। तो आज की तिथि 11 मई इतिहास के झरोकों से ये कहती है कि आज ही के दिन सन 1998 में इसी दिन भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण कर विश्व को अपनी तकनीकी क्षमता दिखाई थी। और आज ही के दिन सन 1998 में इसी दिन भारत के पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का सफल परीक्षण किया गया था। और आज ही के दिन सन 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। तो मित्रों, कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति जितेंद्र सिंह की थी, संयोजक ओपी सिंह थे। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT एवं CIT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओं, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा,

0: और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
1: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
1: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
1: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
1: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा, खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
1: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
1: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
1: माई बाईसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes sir, we have seen.
4: I have seen sir.
5: I like bicycle sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink.
9: And mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Trin, trin, trin!
2: do it again, please.
3: Trin, trin, trin!
2: I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin, trin, trin goes the bell.

0: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का यह सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पुणे हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब, आप क्यों परेशान होते हो? हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: पर अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पुणे हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डरकर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा।

0: इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
1: माँ।
2: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
2: हाँ।
1: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
2: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
2: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूं मां।
2: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
2: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंक

0: का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
1: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
2: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
3: यस सर।
2: नाथ सिंह निशाना साधो।
1: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
2: फायर।
1: सर
2: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
3: जी।
2: फायर।
1: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
2: हाँ लगता है आक्रमण करेगा। निशाना साधो।
1: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, पर वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था। अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा।

ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है।

0: मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर दो टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, और दूसरे में और कोई नहीं मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया, जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी तक आप सुन रहे थे NCERT एवं CIT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये पहला गीत आप सबकी नज़र इस गीत से है।

ये आवाज थी फिल्म दौड़ के इस गीत में रेमो फर्नांडिस की। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

आप सुन रहे थे अभी विनोद राठौर की आवाज़ में अखियों से गोली मारी फिल्म के इस गीत को, सलीम बिजनौरी के लिखे इस गीत को धुन से संवारा था डब्बू मलिक ने। साथियों, अगला गीत सुनने से पहले कार्यक्रम संबंधी सूचना सुन लीजिए। आज दिन में 1:15 पर हेलो सहेली यानी फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। आज कार्यक्रम में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर वरुण सिसोदिया, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप टेलीफोन नंबर 25 135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम में विषय है हृदय संबंधी रोग, कारण, लक्षण और निवारण। इस विषय से संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता हैं वो स्टडी कोड अवश्य लगाएं 0565। समय ध्यान रखें दिन में आज 1:15 से। विषय है हृदय संबंधी रोग, कारण, लक्षण और निवारण। सूचना समाप्ति। कार्यक्रम का ये अगला गीत।

नो एंट्री। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म के गीत को सोनू निगम अलीशा चुनॉई की आवाज़ में। और अब ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे किशोर कुमार, नाजिया हसन, साथियों की आवाज़ में फिल्म बलवान के इस गीत को। अनजान ने लिखा था गीत को, बप्पे लहरी ने संगीतबद्ध किया था। साथियों, अगला गीत सुनने से पहले सूचना सुन लीजिए। आज दिन में 1:15 पर हेलो सहेली फ़ोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर वरुण सिसोदिया, हृदय रोग विशेषज्ञ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप टेलीफोन नंबर 25-30-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर शामिल कार्यक्रम में हो सकते हैं। मथुरा से बाहर की जो श्रोता हैं, एसटीडी कोड अवश्य लगाएं 0565। कार्यक्रम का विषय कृपया ध्यान रखें, हृदय संबंधी रोग, कारण, लक्षण और निवारण। समय याद रखिए, आज दिन में 1:15 से। सूचना समाप्त हुई और अब ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे अभिजीत सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज़ में मिट्टी फिल्म के गीत को, और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे नेहरा की आवाज़ में फिल्म सलामी इश्क का गीत। समीर ने लिखा था, शंकर एहसान लॉय का संगीत था। साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले सूचना सुन लीजिए। कार्यक्रम से संबंधित हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण समय आज दिन में 1:15 का रहेगा और आज का विषय रहेगा हृदय संबंधी रोग कारण लक्षण निवारण। विशेषज्ञ होंगे हमारे साथ डॉक्टर वरुण सिसोदिया, हृदय रोग विशेषज्ञ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप टेलीफोन नंबर 25 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर की श्रोता है, स्टूडियो कोड अवश्य लगाएं 0565। विषय कृपया फिर ध्यान रखें, हृदय संबंधी रोग कारण लक्षण और निवारण। समय 1:15 का। सूचना समाप्ति और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे आतिफ असलम श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म रमैया अवस्था मैया का गीत। आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। साथियों, आपसे कुछ देर में आप सुनेंगे सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ पाटन में आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जनता के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण। तो बस आपसे कुछ ही देर में।

0: ਪ੍ਰਿਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੋਮਨਾਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮੇਂ ਸਮਿਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਕਾ ਸਜੀਵ ਵਿਵਰਣ ਆਪਕੋ ਸੁਨਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਵਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਨੀਲਮ ਮਲਕਾਨੀਆ ਔਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਰਾਏ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ।
1: नमस्कार, आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं, और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है, विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है, पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है, स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं, और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशम्।

0: నాగేశం దారుకావలే. వారణస్యతు విశ్వేశం త్ర్యంబకం గౌతమీ తటే హిమాలయతు కేదారం ఘుష్మేశం చ శివాలే. ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయ ప్రాత పఠేన్నర సప్త జన్మకృతం పాపం సునం వినశ్యతి. Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbh Abhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbh Abhishek?
1: नमस्कार. आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है. वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ. कुंभ कहते हैं घड़े को. इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रघट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है. वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं, सभी वो पिंड रूप हैं. लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है, वह स्वयं शिव है. जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है, उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से. और उसको मन के साथ संयोग किया गया है, क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है. इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है. इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है. और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए.
2: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे.
1: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगि गतो में अच प्रत्यय लग के बना है. इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण.
2: जी
1: अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया. यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम. तो निराकार का अर्थ क्या है? दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पत्त हुए हैं, या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है. अब वो लिंग कई प्रकार के हैं. स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है. ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ. जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है. तो यह प्रथम क्यों है? क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी. यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया. लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से, उसका नाम है प्रभास तीर्थ.

0: यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
1: जी।
0: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है, इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tell us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the सोमनाथ मंदिर।
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से। और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन, जो अलग अलग ये बनाएंगे। वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी, और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था, उस समय 101 तोपों की सलामी दी

विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्त

विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु।

0: विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूपमंडनम, प्रसादमंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप

में है और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है। उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन

0: चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम। इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं। इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए। और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम ये कारण यदि समझ सकें, तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है। इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे। इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है। मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर। सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है। अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में और वायु सेना के जो यान हैं वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy, Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha, built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna Dev and Siddharaja Jayasimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate, and on his clarion call, it was not only the people of Gujarat, but also the people of entire India that responded.

0: responded enthusiastically.
1: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है, सोमनाथ मंदिर हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आइए आपको सुनवा रहे हैं एक भजन।

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण्स द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed! And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे, तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है, वहीं ऊ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है, इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए, मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में, हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी

0: आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
1: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देख कर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्यूरेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल ऑन द 11th ऑफ मे 1951। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड ऑन दैट ओकेजन सेड दैट द सोमनाथ टेम्पल प्रोक्लेम्स टू द वर्ल्ड दैट एनीथिंग विथ अनपैरेलल्ड फेथ एंड लव कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ही एक्सप्रेस्ड द होप दैट the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat Shreshth Bharat.
1: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहे, पेयजल की सुविधाएं रहे और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाए, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये

0: खाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी विशेष रूप की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज़्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग हैं उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सके। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है, और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है, और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर के में। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार।
1: जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।
3: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की है।
4: हेलो हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 STD कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
5: हेलो आकाशवाणी
6: सर जी, नमस्कार।
5: नमस्कार,
6: मैं जबलपुर MP से आपका श्रोता सुख सिंह बात कर रहा।
5: सिंह साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
6: धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? आप परिवार सहित कैसे हैं?
5: सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मौसम कैसा है जबलपुर में?
6: मौसम गर्म है मगर बारिश तो नहीं होती, मगर थोड़ी सा बदला है, कम है,
5: बादल छा जाते हैं।
6: जी जी, हवा चलती है।
5: जी जी, बहुत अच्छी बात है, फिर तो राहत है गर्मी से।
6: जी जी जी।
5: सिंह साहब बताइए, आज के कार्यक्रम में फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
6: ये गोटेदार लहंगा धर्म काटा।
5: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
6: और दीदी भी बहुत सब प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम,
5: राधे राधे।
6: राधे राधे।

0: जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है, और वायु सेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान है अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
1: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है, वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले।
0: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग

0: के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं। तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
1: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
0: जी,
1: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है तो ये हाथ किसका अंग है? जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
0: जी।
1: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन? वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम तीन लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे स्वलोक कहा। तो इन तीन चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये तीन प्रकार, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है दृष्टि रूप से, भगवान किस रूप से लेते हैं? दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन 4 प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं
0: जी। तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
1: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है
0: जी।
1: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है
0: जी।
1: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं
0: जी। एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं,
1: तो बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत ही मत मतांतर वाला विषय है लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग, यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है
0: जी।
1: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपके सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं
0: जी। यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर

0: होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है, दोनों में अंतर क्या है?
1: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से स्थापना तत्व को लेकर चलता है, जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है
0: जी।
1: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले
0: जी।
1: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार की शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैन मेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा, इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है
0: जी। कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं, और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
1: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए
0: जी,
1: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है, और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि, कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से, महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है, इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयोवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल, अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है
0: जी।
1: इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers

0: The Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honorable Chief Minister of Gujarat Sri Bhupendra Bhai Patel and the Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat Sri Harsha Sanghvi are also present, and the Honorable Prime Minister has performed a puja at the Sri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कुछ धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए, और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर कि मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय
0: प्रधानमंत्री Minister in Gujarat government, Sri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister, and yet another memento, a kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the Sri Somnath Trust, and the Honorable Prime Minister himself is the president of the Sri Somnath Trust, and we have now seen a garland being presented to the Honorable Prime Minister by the organizers, and people have been waiting since a long time to hear the Prime Minister, and the Honorable Prime Minister will be addressing the gathering very soon.
1: और कौशिक जी, मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूंगी कि जब हम बहुत दूर से यात्रा करके जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बहुत अधिक भक्ति भाव से भरे होते हैं, तो जो लोग उसी स्थान पर रहते हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते होंगे, और इस समय जो ये विशाल जनसमूह हम देख रहे हैं इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर की सेवा में भी लगे होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से मंदिर के विशेष कार्य जो हैं वो करते हैं, और यहाँ पर हम इस समय देख पा रहे हैं उत्साहित जनसमूह है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से आयोजन

0: जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूह की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी, और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय
1: उभरी। And now Neelam, the Honorable Prime Minister will release the commemorative coin. It is a 75 rupee denomination coin and it's very beautiful indeed. The two sides can be seen on this very special memento that the Honorable Prime Minister is displaying, and this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat, India, rupees 75 with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath Temple.
0: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the gathering.
2: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवाधिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम।

आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, यह कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके, और मैं यहां देख रहा हूं

भारत का अमृत महोत्सव ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर

जहां भारत का रोवर लैंड हुआ उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांता आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक

अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं, उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है।

साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्मा, अर्थात सृष्टि का हरेक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है। हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली।

0: शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करे। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ

0: और एस वाई खान के साथ अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: ആകാശവാണി @90.
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब बहने सुने की कार्यक्रम वनिता लोक।

0: कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ फरमाइशें हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ फरमाइशें हैं, दो पल की ज़िंदगी में अनगिनत आजमाइशें हैं। आए, ठहरे और रवाना हो गए, ज़िंदगी क्या है और सफ़र की ख्वाहिशें हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आज आपके साथ आशु रावत और मेरी साथ है मेरी दोस्त उषा पांडे। आप सभी को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: और आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम हेलो सहेली आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें न जाने कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो व्यक्ति को घेर लेती हैं और व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि ये परेशानी कब से उसको परेशान कर रही है। वो कुछ और ही समझता रहता है, रोज़मर्रा के अपने काम करता रहता है और जब बात दिल पर आती है तो दिल की बीमारी जो होती हैं वो उसको कहीं ना कहीं परेशान तो कर देती है, क्योंकि व्यक्ति दिल की बीमारियों में थोड़ा हिलसा जाता है, क्योंकि जब दिल ही साथ न दे तो फिर व्यक्ति क्या करे। अपने परिवार को लेकर, अपने आगे आने वाली ज़िंदगी को लेकर थोड़ा सा फिक्रमंद हो जाता है कि कैसे चीज़ें होंगी, मैनेज कैसे होगा, आगे का काम कैसे होगा। इसके अलावा साथियों, चाहे फिर वो छाती की बीमारी हो या फेफड़ों से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, तब भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत तो होती ही है। और इसके अलावा कुछ व्यक्तियों को नसों से जुड़ी हुई समस्याएं भी हो जाती हैं। तो घबराइए मत, आज इन्हीं सब समस्याओं का समाधान लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं। और आज हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं हमारे साथ वरुण, डॉक्टर वरुण सिसोदिया, जो कि एक CTVS विशेषज्ञ यानी कि कार्डियो थोरेसिस एंड वैस्कुलर सर्जन हैं।
1: जी हाँ साथियों, अपनी समस्या के समाधान के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 2530135 पर और मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड लगाकर हमें फ़ोन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर

0: नंबर 94-12-22-55-75 पर संदेश द्वारा पूछ सकते हैं अपने सवाल और पा सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान। श्रोताओं, हमारा यह कार्यक्रम आपको बता दें कि प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे सोमवार को प्रसारित होता है दोपहर 1:15 से 1:45 तक। तो उठाइए फोन और पूछिए सवाल और पाइए अपनी समस्या का समाधान। आज हमारे साथ हैं, जैसा कि हमारी साथी ने बताया, डॉक्टर वरुण सिसोदिया, CTVS यानी हृदय, छाती और नसों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे हेलो सहेली कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का आज का विषय है हृदय, छाती एवं नसों के रोग, कारण, लक्षण एवं निवारण, तो हमारे श्रोता साथी हमसे जुड़े, इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये CTVS है क्या?
1: बेसिकली क्या है कि CTVS का मतलब है, इसमें तीन चीज़ें हैं जिनका हम ऑपरेशन करते हैं
0: जी,
1: जिसमें सी से हो जाता है आपका कार्डियक, जैसे CABG हो गया, जो दिल की नसें हैं उनकी रुकावट का ऑपरेशन, दिल के वॉल्व होते हैं दिल में उनका ख़राब हो गया, या जन्मजात बच्चों को दिल में छेद होता है जो आपने सुना होगा
0: जी,
1: उसके ऑपरेशन करना, ये तो सी हो गया। फिर उसके बाद आता है टी में होता है थोरेक्स में होता है छाती में फेफड़ा हो गया, खाने की नली हो गई, या आपका कोई आर्टरीज हो गई, जैसे जो मेजर आर्टरीज जो निकलती हैं दिल से वो सब हो गई। और चौथा होता है वेस्कुलर में होती हैं खून की नसें, इसमें दो प्रकार की नसें होती हैं, एक गंदी खून की नसें होती हैं, एक साफ खून की नसें होती हैं। जो गंदे खून की नसें होती हैं उनको वेन कहते हैं हम लोग, और जो साफ खून की नसें होती हैं उनको आर्टरीज कहते हैं। दिल से निकल के सारी जो दिल में से साफ खून निकलता है वो सब जगह अपना जाता है, उसके बाद वो वहाँ से जितने भी सेल्स हैं उनसे गंदगी लेके वापस आता है, तो जो गंदगी लेके वापस आता है वो वेन्स हो गई, जो साफ खून जाता है वो आर्टरीज हो गई।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता साथी हमसे अब जुड़ने लगे हैं, आइए ले लेते हैं उनका पहला कॉल। शायद कोई तकनीकी खराबी हो। डॉक्टर साहब, CTVS के बारे में आपने बताया, तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे दिल के बारे में यानी हृदय के बारे में। तो आमतौर पे आजकल देखा जाता है कि हृदय की समस्या लगभग व्यक्तियों को किसी न किसी कारण से हो ही जाती है, तो इसका डॉक्टर साहब पहले कॉल ले लेते हैं फिर आगे बात जारी रहेगी। हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: हाँ मैम
0: जी, अपना परिचय दीजिए।
2: हेलो
0: जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना परिचय दीजिए।
2: मेरे मतलब ऐसा ये पाँव में लग गई जाके टुकड़ा में
0: जी, पहले अपना आप परिचय दीजिए।
2: बिरजू बोल रहा हूँ सर, मैं यहाँ से फरे से
0: बात कर रहे हैं, बिरजू जी। डॉक्टर साहब से अपनी समस्या बताएं।
2: हेलो डॉक्टर साहब।
1: हाँ बताइए।
2: ऐसा हमारा ये पाँव है, इस पाँव में मतलब टुकना पे मतलब इसमें चोट लग गई, तो मतलब संडे में दुखता है।
1: वो चोट भर गई है आपके?
2: हाँ जी।
1: उसके बाद भी दुखता है?
2: हाँ मतलब दवाई लगाई 2-3 दिन उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है, चलने में दुखता है।
1: उसमें जब चोट लगी थी तो खून का रिसाव हुआ था क्या?
2: खून पूर का चुना ले करो तुम्हारा में रफ्ती करो वैसे छिला छिली का चुने गई।
1: तो अंदर से हड्डी में तो चोट नहीं लगी है आपके?
2: हाँ हड्डी में चोट आई है बाकी वैसे मतलब
1: तो आपको उसके लिए देखो आपको दो चीजें हो सकती हैं, तो हड्डी में चोट लगी है या नस में चोट लगने की वजह से थक्का ना जम गया हो।
2: अच्छा।
1: तो इसके लिए आपको एक बार आके दिखाना पड़ेगा, अगर खून के थक्के होंगे तो उसका अलग इलाज है और हड्डी में चोट है तो उसका अलग इलाज है।
2: मतलब कौन सी जगह आना पड़ेगा?
1: आप मथुरा में KD मेडिकल कॉलेज में मैं बैठता हूँ, 9 से 4 आप वहाँ आ सकते हैं।
0: जी बिरजू जी, आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक और फ़ोन कॉल ले लेते हैं। हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: हेलो
0: जी, रेडियो सेट से अलग हटके आप बात कीजिए।
3: हाँ MS वर्मा रामनगर से बोल रहा हूँ
0: जी। डॉक्टर साहब से अपनी समस्या बताएं।
3: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्ते भैया।
3: मैं ऐसा था जी 2-3-4 साल पहले

0: मुझे कुछ परेशानी हुई थी हार्ट में, सांस लेने में दिक्कत हुई। पहले तो मैंने ईसीजी कराया, उसके बाद में उन्होंने मुझे जो है एंजियोग्राफी के लिए किया था
1: जी।
0: मैंने एंजियोग्राफी करा ली। एंजियोग्राफी कराने के बाद में मुझे मेडिसिन दी गई है।
1: हाँ जी।
0: तो कभी कभी जो है मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो।
1: जब आपको एंजियोग्राफी में उन्होंने बताया था कि कोई बीमारी निकली है?
0: उन्होंने ये कहा था, वहाँ आर के मिशन में कराया था मैंने
1: जी,
0: तो उन्होंने ये कहा था कि आपका ब्लॉकेज था वो 20-25% था, वो हमने सही कर दिया है। और उन्होंने एक तो कार्लोवास 3Y125mg दे रहे हैं मुझे, आधी गोली, मतलब आधी गोली सुबह आधी गोली शाम। एक टैबलेट इसको स्पोरिन है वो AV75Y10, एक गोली ये दे रहे हैं ये। एक सुबह देते टैबलेट पेंटॉप BSR, साथ में एक जो अभी कार्लोवास थी उसके साथ में एक जो है टैबलेट निकोरन 5mg, मतलब डेढ़ गोली सुबह डेढ़ गोली शाम ये दे रहे हैं।
1: आपको बीपी की भी शिकायत है?
0: बीपी की शिकायत अब नहीं है, लेकिन साल भर पहले कुछ हो गई थी,
1: मतलब दवाई खाने से पहले थी।
0: हाँ जी हाँ जी, नहीं दवाई भी खा रहा था तब भी हो गई थी। तो अब मैं थोड़ी सी जानकारी ये चाह रहा हूँ कि सारी दवाइयाँ मुझे कब तक खानी पड़ेंगी?
1: उन्होंने रुकावट जो है 20-25% है उसके लिए दवाइयाँ ही चलेंगी। अगर आप दवाइयाँ बंद कर देंगे तो आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी लंबे समय तक।
0: तो वो तो उन्होंने जो कही थी वो हमने सही कर दिया है।
1: नहीं नहीं, वो बेसिकली क्या है कि एक बार अगर हो गया आप दवाइयाँ बंद करेंगे तो दोबारा धीरे धीरे रुकावट शुरू हो जाएगी।
0: अच्छा अच्छा सर,
1: उसको रुकावट को रोकने के लिए दवाइयाँ दी जा रही हैं आपको, क्योंकि आपके शरीर में इस तरह से है कि अगर नसें एक बार रुकना शुरू हो जाए उनको खोल देते हैं तो उसके बाद अगर दवाइयाँ बंद कर दोगे तो वो नसें फिर से वापस बंद होना शुरू हो जाती हैं।
0: जी जी,
1: क्योंकि ये शरीर की बनावट होती है, हर किसी आदमी की बनावट अपनी शरीर की अलग अलग होती है।
0: जी जी,
1: तो अब एक बार अगर वो प्रक्रिया शुरू हो गई है बंद होने की, तो अगर दवाई नहीं लेंगे तो दवाई बंद करने के कुछ महीनों में आपको ये दिक्कतें दोबारा शुरू होना शुरू हो जाएंगी।
0: जी जी जी,
1: तो ये आपको दवाई लेनी पड़ेगी।
0: एक बार डॉक्टर साहब से मैंने कॉन्टेक्ट किया था उसी समय 2 महीने बाद ही, तो उन्होंने मैंने उनसे पूछा था मैं डॉक्टर साहब ये दवाई कब तक खानी है, तो बोले भाई ये तो आपको जीवन भर खानी है
1: वो दवाई, नहीं तो आप जब भी बंद करेंगे उसके 1-2 माह के अंदर आपको दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी।
0: तो वैसे 4 साल हो गए मैं लगातार खा रहा हूँ सर।
1: हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे दवाइयों से ठीक बने रहेंगे।
0: ठीक, आप जो जैसे सांस की मुझे थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत होती है, इससे कोई दिक्कत
1: नहीं,
0: तो नहीं है?
1: कोई परेशानी नहीं है।
0: ठीक ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। डॉक्टर साहब एक और श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं।
3: हेलो सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जी बताएं।
4: सबसे तो दोनों बहनों को यानी उषा जी और आंशु जी को नमस्कार।
3: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप?
4: दीदी मैं आपका नियमित श्रोता चौधरी महेंद्र सिंह नगला राणा सिहोरा।
3: जी महेंद्र जी, अपनी समस्या बताइए डॉक्टर साहब से।
4: देखिए समस्या तो मैं बताऊंगा, आदरणीय डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्ते भैया।
4: सर क्या है कि जो दिल है ना, जब मैं किसी काम के बारे में गंभीरता से सोचता हूँ तो उस दिल की धड़कन की गति बढ़ जाती है।
1: अक्सर बढ़ जाती है या सिर्फ कभी सोचते हैं तभी बढ़ती है?
4: नहीं जब सोचता हूँ जब ही बढ़ती है, अक्सर नहीं। और बहुत ही अच्छा विषय चुना है आज स्टूडियो में आपका स्वागत है, जरा गंभीरता से मुझे बताएं कि ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
1: देखो ऐसा है, जो आपको दिक्कत नजर आ रही है मुझे आपको दिल से संबंधित दिक्कत नहीं नजर आ रही है। ये हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं, जब हम कुछ सोचते हैं या डरते हैं तो वो उस पर रिएक्शन देते हैं और हार्ट को कमांड करते हैं कि धड़कन बढ़ा दी जाए। हाँ मुझे मतलब अगर अक्सर बढ़ती है धड़कन, कभी आपको फील होता है रात को सो रहे हैं धड़कन बढ़ रही है, तो आपको दिल से संबंधित बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कोई चीज़ या डरते हैं तब दिल की धड़कन बढ़ती है, तो ये नॉर्मल स्वभाव है इंसान की शरीर का।
4: वो सर एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि आए दिन हर रोज ये समस्या नहीं आती, जब कभी मैं गंभीरता से किसी विषय में सोचता हूँ तभी बनता है ये।
1: हाँ तो ये एक नॉर्मल जो शारीरिक संरचना बनाई हुई है भगवान ने, उसमें ये है कि आपका ब्रेन उस कंडीशन से निकलने के लिए वो सब करता है
4: जी।
1: अगर आपको रेगुलर

0: हो रहा है या बीच बिना सोचे भी आपको बढ़ रही है, तो ये दिल से संबंधित बीमारी आपको हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर सोचने पे या डर से धड़कन बढ़ रही है तो ये नॉर्मल हमारा शारीरिक प्रक्रिया है।
1: धन्यवाद सर, मैं यही सोच रहा था कहीं कोई दिल से संबंधित बीमारी तो नहीं कोई रूप ले रही है।
0: नहीं,
2: जी महेंद्र जी, आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारा ये कार्यक्रम व्हाट्सएप के जरिए पूरा, मतलब
0: जी
2: हमारे
0: जी
2: ऐप के जरिए ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा ये कार्यक्रम प्रसारित होता है। श्रोता साथी वहाँ से हमें मैसेज भेजते हैं। तो महाविद्या कॉलोनी से रश्मि शर्मा हमें लिख के भेज रही हैं कि बाएं पैर में पंजे से नीचे नसों में दर्द होता रहता है, क्या किया जाए?
0: बेसिकली क्या है

0: दर्द होता रहता है, क्या किया जाए?
1: बेसिकली क्या है कि जैसे जो महिलाएं होती हैं घर में काम वगैरह करती हैं तो खड़े रहने का ज़्यादा टाइम होता है, फिर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी प्रेशर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो उससे जो पैरों की गंदे खून की नसें होती हैं उनके अंदर वॉल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं।
0: जी
1: तो इसमें अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 है तो स्टॉकिंग्स आती हैं, पंजे से लेके आपके जांग तक की एक मोजे आते हैं, वो पहनेंगे तो आराम मिलेगा उनको। और अगर ग्रेड 2 से ऊपर चली गई है तो फिर उसके लिए इसमें लेज़र से, वेरिकोज वेन कहते हैं इनको, लेज़र से इसका ऑपरेशन अभी हमारे यहाँ मथुरा में संभव है।
0: जी डॉक्टर साहब, सदर बाजार मथुरा से विजय कृष्ण सारस्वत लिख के भेज रहे हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी उम्र लगभग 40 वर्ष है, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त तेज़ सांस चलने लगती है और साथ ही छाती में भी तेज़ दर्द होने लगता है, मगर थोड़ी देर बाद सामान्य स्थिति हो जाती है।
1: हाँ
0: क्या कोई विशेष दिक्कत है?
1: हाँ बिल्कुल, ये ब्रेथलेसनेस और एक्जर्शन करके इनको जो आ रहे हैं सिम्टम्स,
0: जी
1: तो इसमें दिल का रोग होने के चांसेस हैं, इसमें फेफड़े और दिल दोनों के रोग होने के चांसेस हैं। लेकिन जैसे जब आपने मेहनत करी तो आपको सांस फूली, तो ये मोस्ट प्रोबली दिल से संबंधित होता है।
0: जी
1: तो छाती में दर्द भी हो रहा है, तो मेरे हिसाब से इनको एक बार कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, एक और फोन कॉल ले
1: हाँ
0: लेते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल।
2: हेलो, सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार
3: नमस्कार
2: जी, कौन बोल रहे हैं? आप अपना नाम बताइए।
3: जी, मैं गढ़गांव में धाम गढ़ा लखीमपुर से पप्पू सिंह बोल रहा
2: अच्छा जी, पप्पू सिंह जी, अपनी समस्या बताइए डॉक्टर साहब को।
3: हूँ। सर मेरे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे चाचा जी को परेशानी है, इनसे बात करनी है।
2: जी
3: परेशानी है 12 बजे से 4 बजे मेरे पैर में जलन होते बहुत जोर से।
2: 12 से 4 तक इनके पैरों में जलन रहती है,
1: ये
2: तलवों में।
3: 4 बजे से परेशान था यहाँ पे, तलवन
2: अच्छा जी, तलवों में रहती है, कहाँ रहती है
3: तलवन
2: जी डॉक्टर साहब?
1: ये जो है ये दिल या नसों से संबंधित बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर में कुछ माइक्रो मिनरल्स होते हैं जिनकी कमी हो जाती है, जो खाने के पौष्टिक आहार होते हैं उनमें जैसे मैग्नीशियम हो गया या पोटेशियम हो गया, तो वो छोटे छोटे जो हम नहीं खा पाते हैं डेली खाने से, उसकी वजह से होती है। तो थोड़ा खाना आपको अपना बैलेंस डाइट करनी पड़ेगी, जिसमें आपको हर शरीर के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व है वो प्राप्त हो।
3: क्या करें साहब?
1: आपको हरी सब्जियां खानी है, पानी ज़्यादा पीना है, और कढ़ाई में खाना बना के खाएंगे तो फायदा मिलेगा। आपके खाने पीने को आपको सुधारना पड़ेगा, और इसमें तेल, चिकनाई, मिर्च, मसाले आपको बिल्कुल कम करने पड़ेंगे।
0: जी, और सुबह की ताजी हवा में आपको टहलना भी पड़ेगा। आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, एक संदेश और आया है हमारे पास व्हाट्सएप से। ये हैं कीर्ति शर्मा, और इनकी उम्र है 40 इयर्स, 40 साल के हैं। ये कह रही हैं कि पैरों में कभी कभी नसें इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह,
1: हाँ
2: तो बहुत दर्द
1: ये
2: रहता है।
1: वेरिकोज वेन है, और
2: जी
1: अगर इकट्ठी हो रही है और सूजन भी आ रही है
2: जी
1: पैरों में,
2: सूजन भी है। हाँ
1: हाँ सूजन भी आ रही है, तो ये ग्रेड 3 या 4 की नसें हैं।
2: जी
1: इनका कंप्रेशन स्टॉकिंग जो मैंने मुझे बताए थे उससे बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन हाँ आपको ये आगे बढ़ेगी नहीं, और इसके लिए ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है, इसकी कोई दवाई नहीं आती है। तो आप अभी जहाँ भी आप हैं वहाँ से, नियर बाय से मेडिकल स्टोर से कहीं से भी दोनों पैरों के मोजे लेने, जो पंजे से लेके जांग तक के रहेंगे, और उनको पहनना है, सुबह नहा धो के पहनना है, रात को सोते समय उतारना है, और 2 तकिए पैर के नीचे लगा के रखने हैं। साथ में आपको ये एक बार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी इससे ठीक नहीं होगी।
0: डॉक्टर साहब,
2: जी
0: पैर के नीचे तकिए लगाने पे सिर के नीचे नहीं लगाना है ना?
1: नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
0: अच्छा, लगा
1: पैर
0: सकते
1: ऊपर
0: हैं,
1: रखने हैं थोड़े से
0: सिर
1: लेटर।
0: से ऊंचा होना चाहिए पैर थोड़ा।
1: हाँ
0: जी डॉक्टर साहब, ये वेरिकोज वेन्स की समस्या आजकल महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिल रही
1: नहीं
0: है।
1: ऐसा नहीं है, ये बेसिकली क्या है, महिलाओं में आपको इसलिए ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि जो महिलाएं घर में काम करती हैं वो खड़े होके करती
0: खड़े
1: हैं।
0: होके
1: ये
0: करती हैं।
1: बेसिकली हमारा शरीर का पूरा खून ऊपर जाना है, तो जो पैर ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट काम कर रहा है,
0: जी
1: तो उसमें क्या होता है कि जो वॉल्व होते हैं जो खून को रोक के रखते हैं वो खराब हो जाते हैं।
0: जी
1: उसका कोई दवाइयों से इलाज संभव नहीं है, क्योंकि एक दरवाजा अगर खत्म हो गया, खराब हो गया है, तो उसमें कील या कुछ लगाना पड़ेगा तभी ठीक होगा,
0: जी
1: वो पेंट वगैरह से ठीक नहीं होगा।
0: जी
1: तो इसके लिए जो मोजे सजेस्ट किए गए वो मोजे इसलिए किए गए कि वो टाइट रहे।

0: पैर टाइट रहेगा तो वो बाहर नहीं आएंगे और प्रेशर ऊपर क्रिएट करेगा। दूसरा उनका फिर ऑपरेशन होता है, जो बाहर की नसें हैं उनको लेजर से जलाया जाता है और अंदर की नसों से कनेक्ट किया जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, मालिश वगैरह का कोई भी
0: कोई भी रोल नहीं है मालिश वगैरह का इसमें।
1: इसमें ऐसा क्या करें कि ये हो ही ना?
0: ऐसा क्या करें, ज्यादा देर खड़े नहीं होना, ज्यादा देर
1: जी
0: बैठना नहीं है
1: जी इसमें
0: उस।
1: डॉक्टर साहब वेट भी मायने रखता है कि
0: हाँ
1: वजन ज्यादा
0: वेट
1: हो
0: भी
1: जाए?
0: अगर ज्यादा है तो होगा। और फीमेल्स को दूसरा कारण है, प्रेगनेंसी के समय में पेट में दबाव बनता है, तो
1: जी
0: जब वो खून ऊपर धक्का मारता है तो वो पेट का दबाव और उन सब की वजह से ये वॉल्व खराब हो जाते हैं, इसलिए महिलाओं में देखने को ज्यादा मिलती है ये बीमारी।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे खान पान है, योगा अभ्यास है, इसका कोई रोल?
0: नहीं, योगा और खाम मतलब बेसिकली आपका जो चीज ये खराब
1: ये
0: हो गई
1: ब्लड
0: है,
1: के सर्कुलेशन से, मतलब जो
0: मतलब
1: ऊपर?
0: ब्लड का सर्कुलेशन वेन्स में क्या होता है, अब ऊपर जा रहा है,
1: जी
0: अगर दरवाजे नहीं होंगे जो वॉल्स कहते हैं जिनको, वो नहीं होंगे तो वापस नीचे आएगा, तो थोड़ा ऊपर गया वॉल्व बंद हो गया, फिर उसके ऊपर गया वो वॉल्व खराब हो गए,
1: जी
0: तो वो पूरा एक संग पुश नहीं कर पाता है ब्लड को और वो
1: जी
0: नीचे पैरों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, एक और फोन कॉल ले
0: बिल्कुल
1: लेते हैं। हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: हेलो।
1: हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना परिचय दीजिए।
2: हाँ मैं वीर सिंह बोल रहा हूँ,
1: वीर सिंह जी,
2: यहाँ मेरी नसें ब्लॉक हो गई है मैम।
1: आप डॉक्टर साहब से अपनी समस्या बताएं।
0: आपकी पैरों की नसें ब्लॉक हो गई हैं?
2: नहीं सर, आधे हिस्से की पूरी हो गई है।
0: आप बीड़ी सिगरेट वगैरह का सेवन करते हैं?
2: नहीं, सिगरेट दारू इसका नहीं करता मैं, एक तम्बाकू खाता हूँ।
0: हाँ, तो आपकी तम्बाकू की वजह से क्या होता है, नसों में अंदर कड़ो जम जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि नसें सिकुड़ना शुरू हो
2: नहीं
0: जाती हैं।
2: डॉक्टर साहब, मुझे पैरालाइज कर दा।
0: वो आपकी जो है वो न्यूरो से रिलेटेड दिक्कतें हैं, वो जो कमर में बिजली की नसें जाती हैं उनकी दिक्कत है वो।
2: जी तो
0: हाँ, वो उसकी दिक्कत होती है।
2: इसके लिए कुछ हो सकता है डॉक्टर साहब?
0: इसके लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बिजली की नसों के लिए।
1: आप
0: जी
1: किसी न्यूरो सर्जन से या न्यूरोलॉजिस्ट से मुलाकात करें, उनसे बात करें अपनी समस्या के बारे में, तो ज़्यादा ठीक रहेगा।
2: जी मैम।
1: जी, आपने हमें फ़ोन किया, आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, वृंदावन से पंडित हरिहर शर्मा जी हमें मैसेज किया उन्होंने व्हाट्सएप पे कि हृदय रोग की क्या पहचान है, क्या सांस फूलना या सीने में दर्द होने को भी हृदय रोग माना जाए, क्या जांच करवानी चाहिए?
0: हृदय रोग के जो तीन मेन सिम्टम्स होते हैं, एक तो आपको पहला घबराहट होगी, छाती में दर्द होगा और सांस फूलेगी, ये तीन मेन सिम्टम्स हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको आ रहा है, कोई भी इनमें से लक्षण आ रहा है, तो आपको एक बार बेसिक ईसीजी होता है वो कराना है। अगर ईसीजी में कोई भी चेंजेस होगा तो फिर वो आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा पेशेंट।
1: जी, यानी आपको जांच करवानी
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: इन तीनों में से कोई भी एक सिम्टम्स आ रहा है तो आपको जांच करानी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, एक सवाल और पूछा है हमारे एक व्हाट्सएप श्रोता ने कि कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक में कुछ अंतर होता है कि दोनों सेम चीज़ें हैं?
0: नहीं, दोनों अलग अलग हैं।
1: जी
0: कार्डियक अरेस्ट मतलब है कि दिल ने काम करना बंद कर दिया है,
1: जी
0: और हार्ट अटैक का मतलब है जो दिल की नसें हैं उनमें ब्लॉकेज आई है।
1: जी तो कार्डिक अरेस्ट के जैसे क्या लक्षण मतलब होते हैं कि पता
0: कार्डियक
1: चले?
0: अरेस्ट मतलब पेशेंट पल्सलेस हो जाएगा।
1: इसमें पसीना और जैसे आप कह रहे
0: नहीं
1: हैं ना
0: नहीं
1: घबराहट
0: कार्डियक अरेस्ट
1: वगैरह।
0: में पल्स नहीं आएगी पेशेंट की, जो धमनी है वो नहीं चलेंगी, हृदय रुक चुका है।
1: जी,
0: लेकिन जो हार्ट अटैक है इसमें क्या होता है कि जो नसें हैं दिल की, तीन मेन मेजर नसें होती हैं, उनमें ब्लॉकेज आई है, तो दिल का जो कार्यशीलता है वो कम हो गई है, उसमें दर्द भी होगा, पसीना भी आएगा, सांस भी फूलेगी, क्योंकि जिसको अपने 100% एफिकेसी से काम करना है वो नहीं कर पा रहा है। तो हार्ट अटैक और हार्ट, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं।
1: जी, एक और श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो सहेली, हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी खराबी की वजह से बात नहीं हो पाई, जब दोबारा वो जुड़ेंगे तो हम बात करेंगे। तो आशु, आप पूछ रही थी।
3: हाँ डॉक्टर साहब, एक बात और पूछना चाह रही थी मैं, जैसे कि फेफड़ों में दिक्कत होती है बहुत से लोगों को, सांस कहते हैं ना कि फेफड़ों में पानी चला गया, तो ये पानी चले जाने की क्या समस्या है और कैसे होती है ये?
0: इसमें दो चीज़ें हैं, फेफड़ों के अंदर पानी चला गया है, जो फेफड़े जिस कैविटी में उसमें पानी चला गया,
3: जी
0: जो फेफड़ों में पानी चला गया उसमें जैसे लेट के पानी पी रहे हैं, धक्का लगा अंदर चला गया, लेकिन नॉर्मल जो लोग होते हैं उनमें वो पानी गले में जाएगा, नर्वस सिस्टम को पता चलेगा और वो उसको खांसी करके छींक

0: उसको निकाल देगा बाहर।
1: जी
0: लेकिन अगर ज़्यादा कोई बीमार पेशेंट है और उसने लेटे लेटे पानी पिया और फेफड़ों में चला गया, तो वो पानी एस्पिरेट कहते हैं उसको,
1: जी जी
0: उसको एस्पिरेट कर गया है वो पेशेंट, तो उससे क्या है कि तुरंत उसको ट्यूब डालना है, इंट्यूबेट करना है, उसका सक्शन करके पानी निकालना है, बाकी मेडिकेशन देनी है। बाकी नॉर्मल पेशेंटों में तो ह्यूमन फिजियोलॉजी ऐसी है कि ब्रेन तुरंत सिग्नल करेगा और उसको बाहर कफ आउट कर देगा।
1: इसमें निमोनिया का भी कोई रोल रहता है कि हो गया उस
0: बेसिकली
1: वजह
0: वो
1: से?
0: पानी गया है तो उसके संग थोड़ा गैस्ट्रिक भी
1: जी
0: जाएगा, तो वो निमोनिया क्रिएट करते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, एक और श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: हेलो, नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
2: हम विपिन कुमार बोल रहे हैं, गांव छौली से।
1: जी विपिन जी, अपनी समस्या पूछिए।
2: हम ये पूछना चाह रहे हैं, दिल की बीमारी किसी को हो जाए तो किस चीज से परहेज करना चाहिए?
1: जी डॉक्टर साहब बताएंगे।
0: दिल की अगर बीमारी हो जाती है तो तेल चिकनाई बिल्कुल एकदम नहीं लेना चाहिए। साथ में जो बाहर का खाना है, जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं, जो बर्गर हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, ये बिल्कुल नहीं खाना है। ये हाई कोलेस्ट्रॉल होता है इनमें, तो वो कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी डेंजरस फॉर हार्ट। मतलब नॉर्मल लोगों को भी कम खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। दिल की बीमारी हो जाए तो बिल्कुल छोड़ना ही है।
1: जी हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका
0: हाँ,
1: स्वागत है, परिचय दीजिए।
3: दीदी नमस्ते, मेरा नाम सविता है, मैं गांव भील से हूँ।
1: एक बार फिर से बताओ।
3: मेरा नाम सविता है, मैं गांव भील
1: ललिता,
0: सविता,
1: सविता,
3: सविता,
4: सविता।
1: हाँ सविता, डॉक्टर साहब से अपनी समस्या बताओ। नसें फूल जाती हैं, फेफड़ों में दर्द होता है।
4: पैरों में नहीं,
3: आप द्वारा मेरा क्वेश्चन मैं बोलती हूँ। मेरे पापा मम्मी नहाने से मना करते हैं। हाँ,
1: अच्छा, नहाने से मना करते हैं।
3: कि दर्द हो जाएगा, नहाओ मत।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब से तुम्हारी समस्या डॉक्टर साहब ने सुन ली है, अब डॉक्टर साहब बताएंगे।
0: नहाने से बेटा कोई समस्या नहीं होती है, नहा सकते हो आप।
3: पर मेरे दर्द होता है पैरों में कभी
0: बेटा पैरों
4: कभी।
0: में नहाने से कोई भी संबंध नहीं, और नहाना अच्छी चीज है, अगर नहाओगे तो सफाई रहेगी तो इन्फेक्शन नहीं होंगे।
3: पैरों
0: नसें कौन से पैर की नस फूलती है बेटा?
3: की नसें
0: और नीली नीली नसें दिखती हैं आपको?
3: नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे फूल जाती है, ऐसे रोक देते हैं ना नसों को, ऐसे
4: फूल जाती हैं वो नसें जोड़ों,
1: तो बेटा
4: मतलब
1: डॉक्टर
4: गांठों
1: को
4: पे।
1: दिखाया आपने?
3: नहीं, डॉक्टर गोली
1: तो बेटा डॉक्टर गोली दे देते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है बेटा। आप पहले डॉक्टर को दिखाओ, मम्मी पापा से कहो कि मुझे डॉक्टर को दिखाइए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नहाने से कोई भी समस्या नहीं होती, नहाने से व्यक्ति स्वस्थ होता है। ठीक है, बिल्कुल
0: बिल्कुल, रोज नहाना है।
1: हाँ
4: नमस्ते
1: नमस्ते बेटा।
4: एक डॉक्टर साहब, एक संदेश आया है हमारे पास व्हाट्सएप से। ये हैं राजकुमार और इनकी उम्र है 55 वर्ष, और ये कह रहे हैं कि इनके सीने में एक बार चोट लग गई थी, मतलब एक्सीडेंट हो गया था, तो सीने में जब इन्होंने ECG वगैरह कराई तब कोई दिक्कत तो नहीं निकली, लेकिन दर्द रहता है अक्सर, खासकर सर्दियों में
0: हाँ,
4: ज़्यादा बढ़
0: वो
4: जाता
0: दर्द
4: है
0: इसलिए
4: वो।
0: रहता है कि जो हमारी पसलियां होती हैं
4: जी
0: वो हड्डी से बनी होती हैं, और जब वो जुड़ी होती हैं बीच वाली हड्डी से,
4: जी
0: तो वो काटलेस से जुड़ी होती है। जब उनमें चोट लगती है तो उनमें सूजन रहती है, और जाड़ों में ये सूजन थोड़ा ज़्यादा परेशान करती है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। कोई ये
4: मतलब वो कह रहे हैं कि मैं कभी कभी गरम तेल की मालिश कर लेता हूँ छाती
0: नहीं,
4: पे,
0: उससे
4: तो
0: कोई
4: उससे।
0: ज़्यादा
4: अच्छा
0: फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी पेन किलर ही इसमें चलते हैं, और थोड़ा सूजन कम करने की दवाइयाँ चलती हैं, और बाकी ये ठीक हो जाता है।
4: जी
0: ये टाइम काफ़ी टाइम लगता है इसको सही होने में।
1: डॉक्टर साहब, एक और श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो, रमा भारद्वाज पंजाब से हमें मैसेज भेज रही हैं। 34 वर्ष इनकी उम्र है डॉक्टर साहब। ये बता रही हैं कि 3-4 महीने से इनको खांसी, सर्दी, जुकाम हुआ, बुखार भी आया, तो बुखार ठीक हो गया, लेकिन इनकी जो खांसी है वो ठीक नहीं हुई। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने नेबुलाइज़र दिया और दवाएं दी।

0: उससे फ़ायदा हुआ, लेकिन खांसी जो है वो सूखी खांसी उनको अभी भी आ रही है, क्या किया?
1: दिल के लिए कोई जांच अगर उनकी नहीं हुई है तो एक बार करानी चाहिए, क्योंकि जब दिल में भी कोई दिक्कत होती है तो दिल से जो खराब खून है वो फेफड़ों में ही जाता है, वहाँ से वो गंदगी अपना दिल फेफड़ों को देता है और साफ ऑक्सीजन वहाँ से लेके वापस दिल में आता है।
0: जी
1: तो अगर दिल में भी कोई परेशानी है तो ये परसिस्टेंट कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये रहती है,
0: यानी दिल की जांच इन्हें करानी
1: करानी
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: ठीक है। हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: हेलो मैम,
0: हाँ, परिचय दीजिए अपना। हाँ बताइए।
2: हाँ मैम, गुड आफ्टरनून।
0: हाँ, गुड आफ्टरनून। नाम क्या है बेटा, नाम बताओ।
2: माय नेम इज मनीषा।
3: दोबारा बोलिए, नाम बताइए दोबारा से।
2: मेरे को नहीं, मैं घाम में निकलती हूँ तो मेरे को चक्कर आते हैं बहुत ज्यादा। सही
3: अच्छा, ये कह रहे हैं कि धूप में अब निकलते हैं तो इनको चक्कर आते हैं।
2: बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ।
3: ठीक समझ गए हम, आप सही बोल रही हैं।
2: हाँ
1: आपको चक्कर आते हैं, आप बेहोश हो जाते हो या सिर्फ चक्कर आते हैं?
2: आते हैं, बेहोश हो जाती हूँ।
1: हाँ, तो आपको किसी दिमाग के डॉक्टर को एक बार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूरोलॉजी से संबंधित बीमारी है।
2: हाँ
0: आपने हमें फोन किया, आपका धन्यवाद बेटा। डॉक्टर साहब, हार्ट की बात हम लोग कर रहे थे शुरुआत में कि हृदय रोग से प्रायः लोग परेशान होते हैं। आपने बताया कि ये कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी होती है और खान पान
1: हाँ
0: से रिलेटेड
1: बिल्कुल,
0: है।
1: क्या है जैसे इसमें जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें होती हैं हृदय में, वो आपकी तबैको कंजप्शन एंड कोलेस्ट्रॉल, जो नसें बंद होती हैं दिल की, वो सब इन्हीं चीज़ों से बंद होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों का अगर परहेज रखेंगे, खान पान शुद्ध होगा, तो आपको दिल की प्रॉब्लम्स कम होंगी।
0: जी
1: दूसरा, स्ट्रेस इज़ अ मेजर रोल, अगर स्ट्रेस भी है तो ब्रेन उसको सिग्नल करेगा, वो ज़्यादा हार्ड काम करेगा, जो ज्यादा करेगा तो फटीग हो जाएगा।
0: जी
1: तो ये तीन चार चीजों से आपको परहेज करना है।
3: और डॉक्टर साहब, एक समस्या होती है बाल्ब का लीक हो जाना, ये किस तरह से होता है,
1: हाँ,
3: क्यों होता है ये?
1: इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक तो जन्मजात होता है जो कंजेनाइटल कहते हैं,
3: जी
1: वो बनावटी डिफेक्ट हो गया उसमें, तो एक तो वो कंजेनाइटल हो गई। दूसरा क्या होता है कि दूसरा अडल्ट्स में होता है, उसमें भी दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक तो होता है कि एक इन्फेक्शन होता है स्टेफलोकोकस का, रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं जिसको, तो वो जो कीटाणु हैं, जो
3: जी
1: वो वायरस, वो बैक्टीरिया है, वो वॉल्व के जो टिश्यू होते हैं उसको खराब कर देता है। तो उसकी वजह से क्या है, या तो वो वॉल्व चिपक जाएगा या लीक करने शुरू कर देगा, ढीला पड़ जाएगा। दूसरा होता है ओल्ड एज में, उम्र ज़्यादा है, तो उस उम्र ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि फाइब्रोसिस हो गई या ढीला पड़ गया वो टिश्यू,
3: जी
1: तो वो वॉल्व लीक और सुकड़ना कहते हैं उसको।
3: इसमें जो गैस बनती है किसी किसी के, तो उसका कोई रोल
1: नहीं, गैस
3: रहता
1: का
3: है
1: कोई
3: या?
1: रोल नहीं है इसमें।
3: अच्छा जी।
0: डॉक्टर साहब, एक और श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो सहेली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: हाँ जी,
0: हाँ, अपना
4: मैं
0: परिचय
4: बोर
0: दीजिए।
4: बहादुर सिंह बोल रहा हूँ, गांव बोरपा से। डॉक्टर
0: जी, डॉक्टर साहब से अपनी समस्या बताएं।
4: साहब, मेरी उम्र करीब 57-58 साल की है
1: जी,
4: और सांस फूलती है,
1: सांस कैसे, बैठे बैठे फूलती है कि चलने से भी फूलती है?
4: कभी कभी बैठे बैठे, कभी चलने से, 2 दिन में, 10 दिन में, 4 दिन में। सर्दियों में ज्यादा परेशान रहता हूँ। पहले तो एलर्जी होती है, नाक आंख से आंसू, नाक से पानी जाता है और उसके बाद फिर सांस फूलती है।
1: तो आपने कोई
4: फिर
1: जांच कराई है क्या?
4: नहीं, जांच तो कोई नहीं कराई।
1: तो आपको एक बार अपनी हृदय की जांच करानी पड़ेगी। इसके लिए कोई बेसिक ECG होता है, एक बार वो करा के देखिए, अगर उसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो फिर आगे प्रोसीड किया जाएगा।
4: ये कहाँ पे होगी सर?
1: ये आप कहीं भी करा सकते हैं, आप जहाँ हैं वहीं आसपास कोई अस्पताल होगा, वहाँ हो जाएगी।
4: ये वो है जो 5 लाख वाला वो कार्ड है हमारे पास, उससे हो जाएगी क्या?
0: आयुष्मान
1: हाँ,
0: कार्ड।
1: आयुष्मान कार्ड से ECG तो मेरे हिसाब से नहीं होगा आपका, वो तो इलाज, जब अगर इलाज करवाना है किसी बीमारी का तब यूज होता है, वो जांच के लिए नहीं यूज होता है।
4: KM मेडिकल कॉलेज है हमारे नजदीक तो।
1: हाँ, तो KM में जाके आप एक बार ECG करा के दिखाइए, वो बता देंगे आपको।
4: अच्छा, ठीक
0: जी, आपने
4: है
0: हमें
4: डॉक्टर।
0: फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता साथी हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो सहेली,
4: हेलो
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है, परिचय दीजिए।
5: जी, नमस्ते, मैं कृष्णानगर मथुरा से बोल रहा हूँ।
3: कृष्णा,
5: कृष्णानगर मथुरा से
1: कृष्णनगर
5: बोल रहा
1: मथुरा
5: हूँ।
1: से
3: अच्छा जी,
0: जी
3: बोलिए।
5: तो मैं ये पूछना था कि मेरे घर में कुछ दिन पहले

0: देखिए, आपकी आवाज में ना इको आ रही है। आप रेडियो सेट को अलग रख करके हमसे बात कीजिए, मतलब फोन पे आप बात कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। रेडियो को बंद कर दीजिए।
1: मैं सर मथुरा से बोल रहा हूँ, किशनगर से, पूरन सिंह
0: जी। पूरन जी, समस्या बताइए डॉक्टर साहब से।
1: मैं समस्या ये है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ
2: जी।
1: तो मेरे मेरे डॉक्टर दरागर गोल जी है बंदाल से, उनका इलाज चल रहा है। तो मेरे पैर में सूजन आती नहीं, जो चला नहीं जाता है।
3: नहीं, आपको किसने बताया कि हार्ट की बीमारी है?
1: डॉक्टर दरागर गोल जी से मेरा इलाज चल रहा है। अब मैं मेरे नीवे एक वो भी हो चुका है, नीवे बोलते नीवे बोलते वही मेरा हो चुका है।
3: नहीं तो दवाइयाँ आपके कोई उन्होंने जांच की थी? आपको बताया क्या बीमारी है दिल से संबंधित?
1: हाँ डॉक्टर, मेरे 20% 30% चौक है।
3: हाँ तो उसके लिए दवाइयाँ अगर चल रही हैं फिर भी सांस फूल रही है तो आपको एक किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा।
1: नहीं सर, वो सांस नहीं फूले, मेरे पैरों में सूजन हो जाती है। मेरे पैरों में, दोनों पैरों में,
3: पैरों में सूजन भी हो रही है। इसका मतलब जो दवाइयों से वो दिल की बीमारी बढ़ी हुई है, वो दवाइयों से काबू नहीं आ पा रही है।
1: जी।
3: तो उसकी आगे जांच करानी पड़ेगी, एंजियोग्राफी वगैरह करा के आपको देखना पड़ेगा, कहीं और ज्यादा रुकावट तो नहीं हो गई आपके?
1: सर मेरे एंजियोग्राफी अभी तीन महीने पहले हुई है सिम्स हॉस्पिटल में।
3: हाँ,
1: मेरी एंजियोग्राफी डॉक्टर ने करा ली थी, उसके बाद ही मेरे को दवा दी है।
3: तो दवाई शायद आपको ठीक से असर नहीं कर पा रही है, आपको एक बार आके दिखाना पड़ेगा।
1: जी।
3: और सारी दवाई वगैरह क्या है वो लेके जानी पड़ेंगी, जब भी दिखाने आए तो लेके आनी पड़ेंगी।
1: मेरे पहले मेरे सबसे मेन बीमारी थी, मेरे सीने में जलन होती थी, मेरे हाथ में चीटियां रहती थी। तो उससे उससे उन्होंने मेरे डॉक्टर ने कोई दवा नहीं ली थी, पहले एंजियोग्राफी कराई थी, इसको देख के मेरे को दवाई दी थी, फिर कहा था कि आपकी 20% 30% नस चौक है।
3: 20% 30% अगर नस चौक है तो वो पैरों में सूजन का कारण नहीं बनेगी।
1: हाँ सर, ये समय में नहीं आया, मैं इसलिए आपको फोन किया सर। मैं जयपुर भी आया, जयपुर से दिखाया है।
3: उसको एक बार देखना पड़ेगा, ऐसे फोन पे नहीं बता पाऊंगा मैं बिना देखे।
1: सर आपसे मिलना होता फिर काम कैसे, कहाँ मिलना फिर?
3: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: मैं सर कृष्णनगर में मथुरा में रहता हूँ।
3: तो अगर आप आना चाहें तो मैं KD मेडिकल कॉलेज मथुरा में बैठता हूँ 9 से 4, आप कभी भी आ सकते हैं।
1: KD मेडिकल में सर मेरा इलाज चल चुका है 1.5 महीने, लेकिन मेरे को समस्या माँ मेरी समाधान नहीं हुआ था। डॉक्टर आप पिता वो ऐसे कुछ नाम था, अब उनसे मेरा उनसे दवाई खाई थी मैंने।
3: आप एक बार मुझे आके दिखा,
0: एक बार आप डॉक्टर साहब से मिलिए, आपकी समस्या का अवश्य समाधान होगा। आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कार्यक्रम का समय अब इजाजत नहीं दे रहा कि कार्यक्रम में आगे चला जाए, श्रोता साथियों से बातचीत की जाए, लेकिन चलते चलते आप हमारे साथियों से क्या कहना चाहेंगे?
3: अगर दिल या नसों की या फेफड़ों की या किसी भी बीमारी से अगर बचना है तो शुद्ध खान पान होना चाहिए। जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग सरसों का तेल यूज़ करना कहते थे, एक देसी घी यूज़ करने के लिए कहते थे, वो यूज़ करना ही रिफाइंड डालडा दीज आर, ये सब बहुत हार्मफुल चीज़ें हैं। दूसरा जो घी होता है उसको उबालना नहीं है, गर्म नहीं करना, नहीं तो वो भी रिफाइंड बन जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बस साफ खान पान होना चाहिए, अच्छा शुद्ध होना चाहिए, और ये अगर सब रहेगा तो 80% आपको बीमारियाँ नहीं होंगी
0: जी।
3: पानी बहुत पीना है, अब गर्मी है तो पानी का तो आपको दिन में जब भी कहीं बाहर निकले पानी पीना है, शिकंजी वगैरह का यूज़ करें, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग करते थे वही करना है, हम वो सब छोड़ चुके हैं इसलिए हमें दिक्कतें हो रही हैं।
0: बिल्कुल, समय पे व्यायाम, दिनचर्या सही, खान पान सही, अपने आप सेहत सही, यानी यूँ कहा जा सकता है कि सेहत भी रखिए, सुकून भी रखिए, रिश्तों में थोड़ा जुनून भी रखिए, ज़िंदगी सिर्फ कमाने का नाम नहीं खुद के लिए जीने का हुनर भी रखिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब कार्यक्रम को यहीं हम करते
2: हैं,
0: विराम देते हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
2: साथ ही आप सभी को आशु रावत
0: और उषा पांडे का नमस्कार।

0: also launches Ayushman Bharat Health Scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat Ji Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
2: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और

0: रघुनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा। बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का

0: ने भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
1: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए

बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज दिन में 11:10 से आपने सुना सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ पाटन में आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनता के नाम संबोधन। और इसी कारणवश आज आप कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का आनंद नहीं ले सके, लेकिन अब समय है आपके प्रिय कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की है।

0: हेलो आकाश हेलो आकाश हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हाँ श्रोताओं हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 एसटीडी कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी।
2: सर जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता सुख सिंह बात कर रहा।
1: सिंह साहब स्वागत है आपका, कैसे हैं?
2: धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? आप परिवार सहित कैसे हैं?
1: सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मौसम कैसा है जबलपुर में?
2: मौसम गर्म है मगर बारिश तो नहीं होती, मगर थोड़ी सा बदला है, कम है,
1: बादल छा जाते हैं।
2: जी जी हवा चलती है।
1: जी जी बहुत अच्छी बात है, फिर तो राहत है गर्मी से।
2: जी जी जी
1: सिंह साहब बताइए आज के कार्यक्रम में फरमाइश क्या रहेगी आपकी?
2: ये गोटेदार लहंगा धर्म का टप।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और दीदी भी बहुत सब प्रणाम नमस्कार प्रणाम
1: राधे राधे
2: राधे राधे।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार,
1: संग्रामपुर से बात कर रहा हूँ। भागवत
0: शुभ नाम बताएं अपना।
1: देठे पाटिल।
0: भागवत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं
1: बहुत अच्छा हूँ मैं सर।
0: और क्या कर रहे हैं आप?
1: कुछ नहीं, खेती का काम चालू है सर।
0: अच्छा, चालू है अभी?
1: हाँ
0: और परिवार में कैसे हैं सब?
1: बहुत अच्छा है। आप कैसे
0: एकदम अच्छे हैं। आपके तो संदेश हमें लगातार मिलते रहते हैं।
1: हैं? हाँ सर,
0: जी, बताइए आज आपकी क्या फरमाइश है?
1: आज चांदनी का गाना सुनना है सर।
0: बताइए कौन सा गीत सुनवाए।
1: रंग भरे बादल से तेरे नैनों से साजन से।
0: लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश। बहुत बहुत
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: सर।

Gracias.

दिखाऊं तुम्हें अपनी महबूब।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। ड्यूटी परेड में हूँ सर, मौसम बेहाल है, यहाँ
0: जी
1: पे
0: जी
1: जबरदस्त धूप है, 15 डिग्री के बीच में हूँ, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है सर। आपसे बातचीत हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, फोन लगा बहुत अच्छा लगा सर। और देखिए बहुत अच्छा हवा अभी चल रहा है सर, जम के चल
0: जी
1: रहा
0: जी
1: है।
0: फरमाइश बता दीजिए जल्दी
1: जी
0: से।
1: सर जी, फिल्म का नाम है सर फकीरा,
0: जी
1: गाना है दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी, ऐसे करके गायिका लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत गीत है सर।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद सर।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: राधे राधे।
0: राधे राधे।
1: मैं शिवाजी उगले बरबगा तालुका नांदुरा से बोल रहा है।
0: शिवाजी उगले साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं?
1: एकदम बढ़िया है हम।
0: फरमाइश पूरी हो रही है आपकी?
1: हाँ,
0: और मौसम
1: यहाँ
0: कैसा है आपके यहाँ?
1: अभी अच्छा मौसम है, गर्मी ज्यादा चालू है।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: और क्या काम चल रहा है आपके यहाँ?
1: खेती काम करता भाई मैं।
0: जी,
1: हाँ,
0: बताइए शिवाजी उगले साहब, आज कार्यक्रम में फरमाइश क्या है आपकी?
1: फिल्म का नाम है आराधना।
0: आराधना फिल्म से बताइए, कौन सा गीत आपको सुनवाएं?
1: पूरा कागज था ये मना मेरा, ये गीत सुनने का है। हाँ, मेरे दोस्तानी वाले सुनने वाले हैं। धामन गाँव गोतमारे के भागवत डेठे नारायण हागे बरोड बकाल के मेरे लड़के का नाम है दरबार सिंह उगले ने राहुल उगले सर।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार
1: डी आर नारवानी हूँ चेकअप हड़ा कैंप से।
0: नारवानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी सर, 2 महीने बाद लगभग आपसे बात हो रही है।
0: जी, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया हूँ सर। बदलते मौसम में
0: जी
1: आज भी सुबह यहाँ 6 बजे से पानी पड़ना चालू हुआ, तो अभी 9 बजे तक चालू था।
0: अच्छा,
1: जी, बूंदाबांदी बिल्कुल 3 घंटे लगातार चली।
0: चलिए, गर्मी से आपको तसल्ली मिली है।
1: अरे बहुत तो खरी मिली ऐसे, बल्कि दसवां का मैंने आ गया ऐसा लगा था।
0: जी, बताइए आज फरमाइश क्या रहेगी आपकी।
1: ये गाना सुना मुझे आज, आप चंबल की कसम फिल्म का,
0: जी
1: सिमटती हुई ये घड़ियां फिर से न सिमट जाए।
0: लीजिए, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद सर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की थी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय दिन के 3 बजे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब संपन्न होते हैं। अपनी दूसरी सभा में संध्या 5:30 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

युगवाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को और विशेषकर हमारे युवा श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कार्यक्रम युगवाणी जब होता है तो हमारे श्रोता हमसे रूबरू होते हैं और जब चिंता आनंद की बात जब की जाती है तो हर पहलू पर हम बात करते हैं। आज की बात आसफ अली जयंती। मित्रों, आज भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और कहें तो प्रमुख वकील और कहें तो राजनयिक आसफ अली के सम्मान में आज का दिन विशेष है। हम श्रद्धा से फूल चढ़ाएंगे, हम इनको शीश झुकाएंगे। आज ऐसा दिन। आसफ अली के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 11 मई 1888 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के सोहरा कस्बे में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन 1920 में सक्रिय रूप से भाग लिया। व्यवसाय वे एक वकील थे और प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह का मुकदमा लड़ने के लिए जाने जाते हैं। वह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में भारत के पहले राजदूत थे। उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। 1946 में वह अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री थे और इनकी सरसरी निगाह से देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में हम चर्चा करें तो उन्होंने 1928 में अरुणा आसफ अली से विवाह किया जो खुद एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी। ये तो बात रही आसफ अली जयंती के बारे में। और हम मित्रों, क्योंकि जब याद की बात होती है तो हम बहुत कुछ चर्चा पर चर्चा करते हैं। आज शहादत हसन मंटो जयंती भी है और 11 मई को मनाई जाती है, जिनका जन्म 11 मई 1912 को हुआ था। मंटो उर्दू साहित्य

साहित्य के सबसे निडर और प्रख्यात लघु कथाकार थे, जो समाज की कड़वी सच्चाई को अपने कहानियों में पिबाकी से पेश करने के लिए जाने जाते हैं। बहुत कुछ बातें हैं, कहीं ना कहीं युवाओं से, श्रोताओं से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप अपनी बेबाक और यथार्थवादी कहानियां जैसे टोबा टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त और वो के लिए प्रसिद्ध है, विरासत मंटो ने मानव स्वभाव के काले पक्ष और विभाजन के दर्द को अपनी लेखनी से उजागर किया। उन्हें उर्दू कहानी का बादशाह कहा जाता है। जब बात शहादत की होती है, जयंती विशेष पर होती है, तो मन में एक ही बात ही है, ये लोग फरिश्ते होते हैं जो समाज को एक दिशा दिशा प्रदान करते हैं। सुनते हैं कार्यक्रम में ये एक छोटा सा फिल्म संगीत का ये गीत।

0: तो मित्रों, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म में, और कार्यक्रम में आपको कहानी सुनवाते हैं यादों का झरोखा से। कहानीकार हैं रेखा रानी चौधरी। सुनते हैं एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के पश्चात।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: धूल के गुब्बारे में कैद करके बस ने मुझे सड़क पर फेंक दिया और चली गई। जब मैं धूल के आवरण से बाहर निकला तो कोंकण की बेदाग हरियाली में मैं डूब गया। तन बदन पर भले ही धूल की परतें रही हों, पर आंखों में हरियाली की ताजगी भर गई। पहाड़ों की ऊंची और लंबी पंक्तियों में मेरा गांव जैसे प्रकृति की हथेली पर बसा हुआ था। झोपड़ी नुमा मकानों के बीच सिर्फ गणपति मंदिर का सफेद शिखर उन्नत मस्तक खड़ा दिखाई दे रहा था, मानो स्मृतियों के रेशमी पाश मेरी ओर फेंक कर मुझे बुला रहा हो। मैं तेजी से उतरने लगा। गांव में घुसते घुसते कौन नहीं मिला और जो भी मिला उसने क्या नहीं पूछा। प्रत्येक को मैं एक ही उत्तर देता रहा, हाँ अब मेरी शिक्षा लगभग पूरी हो चुकी है, देखूंगा आगे क्या करना है, परीक्षा फल आ जाने पर ही पता चलेगा। मुझे देखते ही माँ का चेहरा प्रसन्नता से झूम उठा। बस लेट आई क्या? हाँ माँ, लगभग एक घंटा लेट थी, मैंने माँ के चरण छूते हुए कहा। इन दिनों अपना आदमी जब तक घर न पहुंचे तब तक बड़ी चिंता बनी रहती है। बेटा, रोज रोज होने वाली दुर्घटनाओं के समाचार पढ़कर दिल जैसे इन दिनों कमजोर हो गया है। नहाकर जब मैं बाहर निकला तो माँ थाल परोसकर प्रतीक्षा कर रही थी। कोकम का सारम बनाया था माँ ने। वो जानती है कि शहर के होटलों में खाना खाकर मैं इस सारम के लिए कितना तरसता रहता हूँ। माँ के हाथों से पकाए गए गर्मा गर्म रुचिकर भोजन का पहला ही ग्रास जैसे मेरी युगों युगों की भूख मिटा देता है। भोजन करते करते मैं देखता जा रहा था, माँ अब

थकने लगी है। उसकी बढ़ती हुई आशक्ता मेरे मन में चिंता की आग सुलगा देती है। माँ, मैंने कहा, दिनों दिन तुम अशक्त होती जा रही हो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा करो। अब तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दूं। माँ की ममतामयी हंसी खिल उठी। तू तो पागल है, डॉक्टर को क्या खाक दिखाएगा, मैं बीमार थोड़े ही हूँ, ये तो बुढ़ापा है, अब तो यही सब भुगतना पड़ेगा। माँ बोलती चली गई, तू पास हो जाएगा तो समझ गंगा नहा लूंगी। बस फिर क्या, तू चाहे नौकरी कर लेना या। माँ, मैं नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी में क्या धरा है, मैं तो खेती बाड़ी संभालूंगा, मैंने एकदम कह दिया। ये तो सबसे अच्छा है बेटा, माँ ने सारम परोसते हुए प्रसन्नता पूर्वक कहा। तेरे पिताजी के पश्चात मैंने इस धरती को अपने आंसुओं से सींचा है और पसीने से उसका अभिषेक किया है। ये सारा इस आशा से तो करती रही हूँ कि एक दिन तू बड़ा होकर ये सब संभाल लेगा। पर आजकल पढ़े लिखे लड़के देहात में रहना पसंद नहीं करते, यही सोचकर मैं कभी कभी बड़ी दुखी हो जाती हूँ। चांदनी रात थी, पर आसमान पर बादल घिरते चले आ रहे थे। मैं दिन ढलते घर से गणपति मंदिर की ओर चल पड़ा। दर्शन के पश्चात मैं नदी के घाट की सीढ़ियों पर बैठे रहा। नदी के मंद प्रवाह पर अंकित गणपति मंदिर की छवि जैसी कितनी ही स्मृतियां मेरे मानस पर अंकित थीं। आज वे एक के बाद एक जागृत होती चली गईं और मैं उनमें खोता चला गया। कालिंदी, इन दिनों तुमने मुझमें कालिंदी, इन दिनों तुमने मुझसे बोलना बंद क्यों कर दिया है? शांत जलाशय के पुष्प पर तैरती चांदनी की तरल आभा आपने कभी देखी है? बस कुछ वैसी ही रहस्यमयी आभा से कालिंदी का मुख आलोकित हो उठा था, पर उसकी मीठी मुस्कान पर लज्जा की एक अद्भुत पारदर्शी परत भी छाई हुई थी। कालिंदी तो मधुर हास की पुतली थी, मैं उससे रोज ही कहा करता था, जब हंसी को स्त्री रूप धारण करने की इच्छा हुई तो वो कालिंदी के रूप में जन्मी। पर आज कालिंदी हंसी नहीं थी, वो तो केवल मुस्कुराई थी, और मैंने देखा कि वो मुस्कुराहट रंगीन थी, उसमें लज्जा का अनूठा रंग घुला हुआ था। वो अनुभूति नई थी, मैं तो ठगा सा देखता ही रह गया। मैं अब तुम्हारे संग कैसे खेल सकती हूँ? क्यों नहीं खेल सकती, बड़ी जो हो गई हूँ, बड़ी, और मैंने जैसे पहली बार देखा ही, और मैंने जैसे पहली बार देखा कि अब कालिंदी साड़ी पहनने लगी है, हरी साड़ी और हरी चोली में दंग रह गया। दिवाली के बाद जब मैं शहर गया था, तब तक कालिंदी मेरे लिए एक किशोरी थी। मैं चकित सा देखता रहा कालिंदी को। गत कुछ महीनों में ही सचमुच काफी बदल चुकी थी। केले के पौधे के गूदे का सा उसका रंग उजला एवं ताजगी भरा था। कालिंदी गर्दन झुकाए चावल बीनती रही। न चाहने पर भी मैं वहां से उठकर चला आया। दोपहर का समय था, माँ खेत पर गई थी, कुएं पर काम चल रहा था। मैं और माँ बारी बारी से देख रेख किया करते थे। कालिंदी का झोपड़ा पिछवाड़े हमारे अहाते में ही था। कालिंदी का बीमार बाप भीतर पड़ा खांस रहा था। उसकी माँ मेरी माँ के संग जाती थी खेतों में काम करने। अब तक मैंने कालिंदी की ओर जिस दृष्टि से देखा था, वो यकायक अब बदलने लगी थी। मन का एक पक्ष इस नई दृष्टि को अस्वीकार कर रहा था। अब कालिंदी को सामने देखकर मैं स्वाभाविकता खो बैठता था। मैं दुविधा में पड़ा हुआ था, आखिर कालिंदी के मन में क्या है। और यही सोचने सोचने में ही छुट्टियां समाप्त हो गईं और मैं शहर चला गया। जब भी अकेला होता, मैं केवल कालिंदी के

0: यही बारे में सोचता रहता। रातें भी कालिंदी की याद में जाग कर बिता दी। कई बार मन होता भागकर गांव चला जाऊं, पर मां की करुण आकृति आंखों के सामने आ जाती और मैं अपने आप को बरबस ही रोक लेता। मां ने मेरे लिए कितनी यातनाएं सही हैं, उनको मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं। और दूसरी बार जब घर आया तो मैंने पाया कि कालिंदी का घर खाली था। आसपास पूछने पर पता चला कि वो लोग घर छोड़कर चले गए। मां ने बताया कि कालिंदी के पिता की मौत के कुछ समय बाद ही कालिंदी की मां ने उसकी शादी कर दी और बेटी की शादी के बाद वो भी ये गांव छोड़कर यहां से चली गई। ये सब सुनकर एक बार को तो मैं सन्न सा देखता रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वक्त तो जरूर लगा, किंतु आज भी मैं कालिंदी को भुला तो नहीं पाया हूं और न ही किसी और ने मेरे दिल में जगह बनाई है, पर अब भी उसकी यादें मेरे दिल दिमाग में तरोताजा बनी हुई हैं। काश मैंने कालिंदी को वक्त पर अपने दिल का हाल बताया होता तो दिल में एक टीस सी न रह गई होती।
1: अभी आप सुन रहे थे कहानी यादों का झरोखा, और कहानीकार थी युवा कथाकार रेखा रानी चौधरी। और अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे फिल्म संगीत एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के पश्चात।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए।
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म पहाड़ों के सपने के इस गीत के साथ ही युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी अब संपन्न होता है। सभी साथियों को हमारा नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि यह आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी

0: लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य 1 वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ शेर चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
3: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी, आकाशवाणी।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कुछ देर बाद यानी 6:10 पर हमारे श्रोता सुनेंगे संबेश्वर में देशकान। 15 मिनट का समय रहेगा आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज चर्चा का विषय रहेगा किसानों की आय बढ़ाने में पशुपालन की भूमिका। साथ ही इस कार्यक्रम में आज सुनेंगे भेंट वार्ता स्वच्छ दुग्ध उत्पादन विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विकास पाठक। कार्यक्रम प्रस्तुति करेंगी मृणाली दीक्षित। 6:45 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। आप 5 मिनट पर आप आनंद लेंगे प्रसाद्य कार्यक्रम का। प्रसाद्य कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे हर्ष वार्ता सुकारो नाय मकान ढूंढ वो।

कलाकार कोमल प्रसाद शर्मा। 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी, और 8 बजे आनंद लेंगे आप पुनः फिल्म संगीत का। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, फिल्म का नाम होगा दिल तो पागल है। हमारे श्रोता 9:15 पर सुनेंगे चित्रपट कार्यक्रम में, चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में सुहाने तराने, और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे ढोला चरण सिंह और साथियों से, प्रसंग होगा तेमंती का ब्याह। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित रामनारायण का सारंगी वादन, राग सरस्वती और यमन कल्याण में। 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार, 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, और 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस सभा का। तो ये था विवरण हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं संवेश्वर में ये देश गान।

वंदना के इन स्वरों में एक स्वर भी राह मिला लो। अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में, यह देशगान आकाशवाणी का। यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही है मृणालिनी दीक्षित।

ब्रजगामी कार्यक्रम सुनने बारे सभी भैया बहनान को मनालनी बहन की राम राम। भैया प्रतिदिन अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसान भैया बहनान को हम खेती से संबंधित जानकारी, पशुपालन से संबंधित जानकारी दिब्बा में हैं और हमारे किसान भैया बहन संजा को खेत ते आए कर इंतजार भी करें कि आज उनके कार्यक्रम में हमें कहाँ कहाँ जानकारी मिलेगी। भैया जानकारी भी दिब्बाएंगे, थोड़ी बातचीत भी कर लें। हमारे किसान भैया के जो खेती बाड़ी कर रहे हैं तो खेती बाड़ी और पशुपालन को कार्य दोनों एक दूसरे के पूरक हुए। कहो जाए कि जो किसान खेती करे वो पशुपालन को कार्य भी जरूर करे, क्योंकि खेत में तो अनाज आ ही जामे तो पशु उनको थोड़ा सहारा है जामे। किसान भैया की आय बढ़ाने में पशुपालन की भूमिका बहुत अधिक होवे है, क्योंकि पशुपालन करने वाले किसान भैया बहने एक तो सबसे अच्छी बात कि उनके परिवार के सदस्यों को शुद्ध दूध ताज़ा मिल जावे है और वो गाय या भैंस जो भी पालन करें, पशुपालन को कार्य करें हैं, बकरी पाले हैं, उन्हें खेती बाड़ी से जो चारा मिल जावे वाको सहयोग हो जाए। लेकिन लाभ भी जैसे बहुत हुए पशु पालन करने वाले भैया कहो जाए ना एक तरह का व्यापार जैसा है जहाँ पे भाई दुग्ध उत्पादन है, दूध मिल रहा है, दूध जितनी महंगाई से बिके दूध आराम से बिक के पशुपालन करने वाले भैया अपनी आर्थिक

स्थिति को भी सुधार सके हैं, चाहे वो बकरी को दूध हो, गाय को दूध हो, भैंस को दूध हो। जय के साथ अगर कहो जाए कि भैया दूध ना बिको तब का करो जाए बहन जी, अगर दूध ना बिको तो भैया दही जमा लियो, दही जमा कर भी दही बिक्री करके और जाके बाद भी घी निकाल कर पनीर बनाकर दूध की बिक्री हर तरह से है जावे। और जिस तरह से समय की मांग को देखते हुए जो दूध से निर्मित चीज़ें हैं वो बहुत ही महंगी बिके हैं और आसानी से उन्हें कहो जाए ना दुगनो तिगनो लाभ दूध उत्पादन में है जावे, लेकिन पशुपालन करने वाले भैया बहनान को ध्यान भी अपने पशुओं के ऊपर पूरी तरह से रखना पड़े हैं। आय बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पशुपालन की हुए है, लेकिन अगर पशुओं को ध्यान ना रखा जाए तो कह जाए ना आय तो भई ना नुकसान हो रहेगा। तो भैया जेले पशुपालन को कार्य करें और अपनी आय बढ़ाएं और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य को भी पूरा पूरा ध्यान रखें। अब जब पशुपालन को कार्य करें तो दूध जब एक महत्वपूर्ण भूमिका रखे है तो आज हम आपको जानकारी भी दिवाएंगे स्वच्छ दूध उत्पादन के ऊपर, लेकिन बातें पहले आनंद लें बाकी बिहारी शर्मा के समय जालू गीत को।

0: भैया अभी आप आनंद ले रहे हैं बांके बिहारी शर्मा के स्वर में जा लोकगीत को नाना भांति नचायो भक्तन ने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानकारी दे पा रहे हैं डॉक्टर विकास पाठक से स्वच्छ दूध उत्पादन।
1: के लिए अमृत के समान होता है, इसका उल्लेख हमारे वेदों में भी हो रखा है। दूध और दूध से बनने वाले पदार्थों के महत्व और उनके गुणों का उल्लेख हम भली भांति जानते हैं, लेकिन इसका लाभ तभी मिल सकता है जब यह स्वच्छ और सुरक्षित हो। दूध में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होने के कारण यह विभिन्न जीवाणुओं तथा रोग कारकों की वृद्धि के लिए भी बहुत ही आदर्श माध्यम का कार्य करता है, जिससे जहां एक ओर दूध की गुणवत्ता प्रभावित होती है, वहीं दूसरी ओर यह अनेक रोगों का कारण बन सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि दूध का उत्पादन इस प्रकार से किया जाए कि इसकी गुणवत्ता बनी रहे तथा पशु पालकों को भी समुचित लाभ मिलता रहे। वर्षा ऋतु में तापमान तथा नमी की अनुकूलता के कारण विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है या अधिक हो जाती है, जो कि पीने के पानी व पशुओं के भोजन व इनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों को आसानी से प्रदूषित कर सकते हैं। इस कारण से इन उत्पादों की गुणवत्ता तो प्रभावित होती ही है, लेकिन इसके इसके अतिरिक्त ये भोजन भोजन में कई रोगों का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए उन विभिन्न बातों के कारणों को जानना बहुत ही आवश्यक है जिनसे स्वच्छ दूध का उत्पादन किया जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है स्वच्छ एवं निरोगी पशु। हम सबको पता है कि जब तक पशु या मनुष्य स्वच्छ नहीं होगा, तब तक वह जो है अच्छे तरीके से

से कार्य नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से स्वच्छ दूध उत्पादन की पहली आवश्यकता है कि पशु स्वस्थ और स्वच्छ हो। दूध देने वाले का पशु स्वस्थ होना चाहिए तथा उसके उसके अयन आदि में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की बीमारी की स्थिति में पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। पशु के जमीन में बैठने पर मल मूत्र आदि शरीर पर लग जाता है, जिससे कई प्रकार के रोग कारण सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। इसलिए पशु की नियमित साफ सफाई करनी चाहिए, पशुओं को नियमित रूप से साफ करना चाहिए और उनके शरीर पे गंदगी नहीं रहनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है थनों की सफाई। दूध दोने से पहले थनों को साफ करना अति आवश्यक होता है, जिसके लिए और थनों को साफ करना है हमें और थनों को सुखा भी लेना चाहिए। दूध धोने के बाद भी थनों के जीवाणु रक्षण आइडोफोर या जो लाल दवा होती है, लाल दवा को घोल के पानी में मिला के, ऐसे नहीं, वो थनों में धो लेना चाहिए और थनों पे बालों को नियमित रूप से हटाते रहना चाहिए ताकि वह दूध ना करते। और उसके बाद है स्वच्छ परिसर एवं साफ गौशाला। गौशाला का वातावरण बहुत साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए। मलमूत्र और छूटे हुए चारे दाने को नियमित रूप से हटाते रहना चाहिए। बरसात के मौसम में कच्चे फर्श आसानी से नहीं सूखते हैं, जिस वजह से फर्श में कई बार गड्ढे बन जाते हैं जिनमें कीचड़ तथा गोबर मिट्टी भर जाती है। इन गड्ढों को समय समय पर भरता रहना चाहिए ताकि उसमें गंदगी इकट्ठी ना हो। गौशाला की दीवारों को चूने की पुताई करनी चाहिए। मूत्र की निकासी के लिए नाली की व्यवस्था होनी चाहिए। गोबर को गौशाला से दूर गड्ढे या गोबर गैस संयंत्र में ही डालना चाहिए। गोबर फेंकने के गड्ढे को ढक के रखना चाहिए हमें एक जाली से, ताकि मक्खी मच्छर और अन्य कीड़ों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। मक्खी एवं अन्य कीड़े मकौड़ों से बचने के लिए खिड़की तथा दरवाजों पर मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए, या जाली के दरवाजे लगे होने चाहिए, जाली की खिड़कियां होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक फ्लाई कैचर का उपयोग भी कीड़े और मक्खियों को नियंत्रित रखने में किया जा सकता है। गौशाला में समय समय पर जीवाणुनाशक घोल का छिड़काव करते रहना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग दूध धोने के कम से कम 2 या 3 घंटे पहले या धोने के बाद ही करना चाहिए, वरना इसकी महक दूध में भी आ सकती है। तीसरा, ग्वाला। ग्वाला जो है हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। दूध दहने वाले व्यक्ति को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी जैसे कि दस्त, सर्दी, खांसी, चमड़ी के रोग व छूत के रोग नहीं होने चाहिए, अन्यथा दूध भी दूषित हो सकता है। दूध धोने के पहले साबुन से हाथ अवश्य धोना चाहिए। दूध धोते समय छींकना, खांसना, थूकना व बीड़ी गुटके का आदि का सेवन नहीं है, ये वर्जित है। दूध धोते समय हाथ को दूध में नहीं डुबोना चाहिए, अन्यथा दूध दूषित हो सकता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं साफ सुथरे बर्तन। दूध को धोने तथा रखने के बर्तन साफ तथा स्वच्छ होना चाहिए। जो बाल्टी में दूध आ रहा है या जिसमें भी दूध आप रख रहे हैं, या दूध किसी भी बर्तन के संपर्क में आ रहा है, वह साफ सुथरा होना चाहिए। बर्तन ऐसे ही धातु का होना चाहिए जो दूध के साथ कोई भी क्रिया ना करती हो या कोई रिएक्शन ना करता हो। अतः इसके लिए हम स्टेनलेस स्टील से बने बर्तन सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं। बर्तनों की साफ सफाई तथा साबुन से धोकर साफ स्थान पर ही सुखाना चाहिए। बर्तनों को डिटर्जेंट से धोना चाहिए और गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई दूध को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। दूध को ढक्कन युक्त, दूध का बर्तन ढक्कन युक्त होना चाहिए ताकि दूध मक्खी धूल आदि से सुरक्षित रह सके। और फिर दूध धोने का तरीका भी बहुत जरूरी है। दूध को पहली 2 से 3 धारों में जीवाणुओं की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, अतः इसे अलग से बर्तन में निकाल लेना चाहिए और बाकी दूध में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि ये बाकी के दूध को भी खराब कर सकता है। दूध धोने के लिए थनों पर पानी, दूध आदि नहीं लगाना चाहिए। धोने के बाद थनों में दूध नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यह भी थनों, अगर हम पूरी मिल्क

ब्रेकिंग नहीं करते हैं तो 2 क्षणों में दूध छूट जाता है, वह भी एक बीमारी का कारण बन सकता है। फिर पानी स्वच्छ होना चाहिए। जो भी पानी हम पशुओं के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पीने का पानी हो, नहलाने का पानी हो, या बर्तन की साफ सफाई के लिए पानी हो, वह साफ पानी होना चाहिए। बरसात के मौसम में उथले कुएं व अन्य स्थायी पानी के स्रोतों का पानी दूषित होता है। इस वजह से या तो

0: इस वजह से या तो ट्यूबवेल के पानी का उपयोग करना चाहिए या कुएं आदि के पानी को समय समय पर लाल दवा या ब्लीचिंग पाउडर या अन्य रसायनों से उपचारित करते रहना चाहिए। पैर बांधने की रस्सी, कई बार दूध धोने के लिए पशुओं के पैरों को रस्सी या नोई से बांधना पड़ता है, वह भी साफ रखनी चाहिए। अगला महत्वपूर्ण चीज है स्वच्छ चारा और दाना। अगर आहार स्वच्छ नहीं होगा तो पशु जो है फिर रोगी हो सकता है। बरसात के मौसम में कई बार खेतों में नाले आदि का पानी गंदा हो जाता है और इनमें गंदा पानी चला जाता है। इस पानी से कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में चारे को साफ पानी में धो लेना चाहिए। पशुओं का चारा व गर्मियों में दूध जो है अगर उबालेंगे नहीं तो 1.5 या 2 घंटे में या मैक्सिमम 3 घंटे में खराब हो सकता है। अतः इसे ठंडा करना बहुत आवश्यक है और हमारा ये प्रयास रहना चाहिए दूध दोते ही उसका जो तापमान है वह 5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में दूध जो है खराब हो सकता है। या तो इसे ठंडा रखें या इसे का भंडारण एकदम करने की निस्तारण करें। इस प्रकार से हम हर मौसम में स्वच्छ दूध का उत्पादन कर सकते हैं तथा मानव व पशुओं की स्वास्थ्य की रक्षा, अतिरिक्त आमदनी के साथ साथ व्यापार को भी आसानी से स्थापित कर सकते हैं।
1: भैया अभी आपने जानकारी दी डॉक्टर विकास पाठक थे स्वच्छ दूध उत्पादन और कादन यहाँ से हम स्वच्छ दूध ले सकें और लाभ अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। बाकी जानकारी उन्होंने दी, हमें उम्मीद है कि इनकी दी हुई जानकारी को लाभ हमारे पशुपालन करने वाले भैया बहन जरूर उठाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आनंद दबाएंगे बनवारी लाल शर्मा के समय जालो गीत को।

0: भैया अभी आप आनंद ले रहे बनवारी लाल शर्मा के सुर में जालो गीत का न जाओ कन्हैया नजरिया से हटके कार्यक्रम में। अब आ गए हम आपको जानकारी दे पा रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत से हरी खाद की उपयोगिता।
1: भाइयों, सीमित संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु किसान एक फसली द्विफसली कार्यक्रम और विभिन्न फसल चक्र अपना रहे हैं, जिससे मिट्टी का लगातार दोहन हो रहा है, जिससे उसमें उपस्थित पौधों के बढ़वार के लिए आवश्यक पोषक तत्व नष्ट होते जा रहे हैं। इस क्षतिपूर्ति के लिए विभिन्न तरह के उर्वरक और खाद का उपयोग किया जाता है। उर्वरक द्वारा मिट्टी में सिर्फ आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि एनपीके और जिंक इत्यादि की पूर्ति होती है, मगर मिट्टी की संरचना, उसकी जलधारण क्षमता और उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीवों को क्रियाशीलता बढ़ाने में इनका कोई भी योगदान नहीं होता। इन सब की पूर्ति के लिए हमें अपने खेत में हरी खाद का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति जीवाणुओं की मात्रा और क्रियाशीलता पर काफी निर्भर करती है, क्योंकि बहुत सी रासायनिक क्रियाओं के लिए सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता रहती है। जीवित और सक्रिय मृदा वही कहलाती है जिसमें अधिक से अधिक जीवांश हों। जीवाणुओं का भोजन प्राय कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं, इनकी अधिकता से मृदा की उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। केवल कार्बनिक खादों जैसे कि गोबर की खाद, हरी खाद, जीवाणु खाद द्वारा ही स्थायी रूप से मिट्टी की क्रियाओं को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें हरी खाद प्रमुख है। इस क्रिया में अधिकांशतः हरे दलहनी पौधों के वानस्पतिक सामग्री को उसी खेत में उगा करके मिट्टी में मिला दिया जाता है। हरी खाद फसल के गुण कुछ इस प्रकार होने चाहिए। फसल में वानस्पतिक जो भाग है अधिक हो और तेजी से बढ़ने वाली होनी चाहिए। फसलों की वानस्पतिक भाग मुलायम और बिना रेशे वाले हो, ताकि जल्दी से मिट्टी में वो मिल सके। फसलों की जो है जड़ें गहरी हों, ताकि

0: ये नीचे की मिट्टी को भुरभुरी बना सकें और नीचे की मिट्टी के पोषक तत्व ऊपरी सतह पर इकट्ठा हो सकें। फसलों की जड़ों में अधिक ग्रंथियां हों ताकि वायु के नाइट्रोजन को अधिक मात्रा में स्थिरीकरण कर सकें। फसलों का उत्पादन खर्च कम हो तथा प्रतिकूल अवस्था जैसे कि अधिक तापमान है, वर्षा अधिक हो रही है, इसके प्रति उनमें सहनशीलता हो। तो कुछ ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जो कि हरी फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी हों, और इनमें विशेष करके सनई है, ढैंचा है, लोबिया है, उड़द मूंग है, इनका प्रयोग अपने इस क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में किया जाता है। हरी खाद की फसल से अधिकतम कार्बनिक पदार्थ और नत्रजन प्राप्त करने के लिए एक विशेष अवस्था पर ही उनकी पलटाई की जाती है। इन फसलों को लगभग 30 से 45 दिन की अवधि में ही पलटना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पलटने के समय पौधे नरम हों और फूल आने से पहले ही फसल को पलट दिया जाए।
1: भैया अभी आप जानकारी ले रहे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत से हरी खाद की उपयोगिता। जय जानकारी के साथ हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम संपन्न हुए। सभी भैया बहनों को राम राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मृणालिनी दीक्षित। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: आप
3: डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। पेश है ये पहला नगमा।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म भावी की चिड़ियों में, और आइए सुनते हैं शर्मा बंधुओं को। फिल्म का नाम है परिणय।

भी आपने सुना मोहम्मद रफी को फिल्म गोपी में। एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। किसान भाइयों, मंगलवार दिनांक 12/5/26 को शाम 6:15 से

30 मिनट अवधि के हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में इस बार विषय है नई बाग लगाते समय सावधानी एवं तैयारी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदय भान सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। किसान भाइयों, घर परिवार की आय बढ़ाने के लिए यदि हम बागवानी वाली फसलों का उत्पादन करते हैं तो कम जमीन में अधिक उत्पादन एवं मुनाफा कमा सकते हैं। ज्येष्ठ मास मई माह नए बागों की स्थापना के लिए उचित समय है। बाग लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां एवं खेतों की तैयारी कैसे करें, जैसे कौन कौन से पौधे एवं कौन सी किस्में लगाई और बागों का लेआउट कैसे हो, इन विषयों पर जानकारी हेतु स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर उदयवान सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। टेलीफोन नंबर हमारे 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 12 22 55 75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डॉक्टर उदयवान सिंह, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक से। ध्यान रहे, कल मंगलवार शाम 6:15 से 6:45 के मध्य सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का यह मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रसाहित्य कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं हास्य वार्ता। सुकारो नाय मकान ढूंढबो, वार्ताकार हैं कोमल प्रसाद शर्मा।
9: बात दिनारी है गई है, इतकू मेरा ब्याह भयो और बितकू मेरी नौकरी एक शहर में लग गई। अब बात आई मेरे रहवे सहवे की, सो मैंने कॉलेज बारे ते बूझा लयो के कॉलेज प्रांगण में कोई ऐसो लोहरो सो कमरा होए जामे मैं अपनो बोरिया बिस्तर डार दऊं। कछु दिन पाछे मकान ढूंढ लूंगो, पर बिन्ने दुआ टूक ना ही कर दई और मोकू पाठ पढ़ायो के अवई तो गांव ते आमत जात रहो और अखबार देखत रहो, बाते मकान खाली को पतो लग जाएगो। छुट्टी के दिना साइकिल उठाओ और मकान को इतवित्ते सूंगो और 10 मिनट में पसंद करके किरायो तय करके संजा को अपनी ताम झाम पटक देव। जा शहर में तो मुक तेरे मकान खाली पड़े, जितकू ढेल मारोगे बितकू खाली मकान में ही लगेगो। भैयाओ, कॉलेज बारिन की जिन बातन सुन के मोह तो स्याप सूं गयो, चौंके बाद शहर के ताई मैं नया हो। घर आए के मैंने अहवाल सुनायो, घरवारे बोले के कछु दिना बसते आ

गांव जाओ और कहो छुट्टी के दिना गुंतारो भर लीजो, पर मकान ऐसो देखियो कि शांति देवे वार हो, बाजार हो दूर न होए और बस्ती के बीच में होए, जाते चोर उचक्कनते सुरक्षित बने रहो। भैया अब अगारी के अहवाल सुनो, हम घर ते नौकरी करवे के ताई रोजीना बस्ते आयो जायो करते और मकान के ताई मुगेरी लाल के सपने देखो करते। एक दिना हमारी श्रीमती जी बोली कि देखो जी, तुम मकान चौनाव देख रहे हारे नीरे सो जा तो न बोलो न बकरो, और जी कह के वो मुस्कराई गई। भैयाओ हमने वाके हिया की बात जान ली और मुस्कराए वो जा बात को कह गयो कि तेरी दो टकी न की नौकरी मेरे लाखों का सावन जाए, हाय हाय रे मजबूरी। सो भैयाओ अब हमने मकान ढूंढवे की ठान ली, चूंकि जी आंधी उसरा में है कि ना जाएगी, जी तो मुड़ पे है कहीं जाएगी, पर मकान ढूंढवो कोई हाँसी ठट्टा ना है, कहो करे हैं कि जा जुग में छोरी के ताई छोरा, मकान और नौकरी ढूंढे ते ना मिले। वही बात मानो कि सुखारो नाए रठोली दाऊ जी को मेला, पर हमने वो नेपोलियन की तरिया असंभव शब्द को अपने शब्द को समेत निकास दियो और कॉलेज में अपने साथियों ते मकान के ताई बहुत जोर शोर से चर्चा शुरू कर दी और इतकु मुकतेरे अखबारन में ते खाली मकान के पत्ते लिखवो शुरू कर दियो। भैया दो दिना निकसे होंगे कि बरसाने वारी की ऐसी कृपा भई कि शहर ते लगे भयो ये गांव हो, यो कहो वो गांव शहर में ही हो। सो माँ मकान के ताई बात पक्की है गई, वह मकान में बहुत कछु सुविधा तो नहीं, पर गुजारो करवे में कोई मुसीबत नहीं। भैया घर आए के जो संदेशो दियो तो घरवारे बहुत खुश है गए और हमारी श्रीमती जी को तो जिहाल हो के मकान मिलवे की सुन के पाम छटंकी उठेवे लगियो, फर्र इतकू फर्र बितकू जैसे पाती में राज। तो घरवारे हमारे और हमारी श्रीमती जी के मन की जान गए होंगे, सो बिन ने हमको आदेश दे दियो के जब मकान मिली गए तो जा भोटिया को अपने ढिंगा ले जाओ, जाते रोटी पानी की व्यवस्था बनी रहेगी। सो हम श्रीमती जी को लेके शहर में आए। भैया अब अगारी को अहवाल सुनो, एक दिना हमारी श्रीमती जी बहुत प्यार थे होटन ही होटन में मुस्कराए के बोली कि देखो जी, जे तो ठेठ देहात हुए, भले ही जे गांव शहर थे चुपट रहे हो, पर शहर की सी रौनक ना है, जा गांव की बैयरवानी जा जमाने में कमीज पहरे, ऐसी ठाड़ी बोली बोले जे दिशे के काउते रार कर रही है, मोटो झोटो खाते और ऐसो ही जिनको मोटो पहराव ओढ़ावे। सो मेरा मनुआ ना ही लगे, साल छः महीना तो कट गए पर अब यहाँ गुजारो ना होएगो, सो अब तुम शहर में मकान ढूंढो। भैया जी सुन के तो मेरी बुरी हालत है गई कि इतकू कुआ बितकू खाई और बीच में आफते आई, चूंकि मकान ना देखूं तो श्रीमती जी मोड़ो फुलाई जाएंगी और मकान ढूंढवा शुरू करूं तो मुकु नानी याद आ जाएगी। बहुत सोच विचार कियो और मैंने अंतिम निर्णय जी ही लियो कि श्रीमती जी की प्रसन्नता के ताई मुकु मकान ढूंढना चाहिए। भैया हम कॉलेज टेम के बाद संजा को और छुट्टी के दिना धोता रहते साइकिल उठावते और शहर में मकान ढूंढवे के ताई निकस जाते। आप विश्वास न करोगे, जब हम सड़क पर निकसते तो हमारी हुलिया हमारी चाल हमारे मोहरे की रंगत और हमारे क्रियाकलाप देख के देखे बारे जाई बात को कहते होंगे कि जो तो मकान ढूंढवे निकसे होए के काऊ अपनी ले लाए ढूंढ रहे होए, जो तो बूही जाने का सोचत होंगे। भैया अब अगारी को अहवाल सुनो,

0: ते पहले हमने कॉलेज के औरे धोरे जो बस्ती हतिकाई बिन में मकान ढूंढवो शुरू कियो। अब जाते बात करें वो पहले जी बूझे के त्यारो ब्याह भयो है के ना भयो। हम बड़ी नम्रता थे बाकी उत्तर देते कि ब्याह तो है गए वे। जी सुन के जा बात को कहें के लाओ अपनी घरवारी को जा पाछे मकान की बात नेठम होगी। भैया जिस सुन के हमारा सीना थर्रा यहाँ तो के जाए हमारी श्रीमती जी ते कहा लेनो देनो कहा वाको इंटरव्यू लेगो के वाके रंग रूप सुंदरता चाल ढाल वो कैसे मुस्करावे है जाको परीक्षण करेगो और जाको मतलब तो किराए ते होनो चाहिए टेम पे किराया ले जा। जब बात नेठम है जाएगी तो घरवारी आ जाएगी पर भैया गर्ज तो हमारी ही मकान मालिक जो कहते बाकी सुनते और मोहड़ो लटकाए के अगारी को बढ़िया ते। भैया हार के हमने अखबारन ते बनाई भई सूची को कैव पोत उल्टो पलटो और एक विज्ञापन के आधार पे शहर के व नुक्कड़ पे जाए पहुँचे जहाँ डेयरी फार्म हो माँ एक मकान खाली हो दरवाजे पे एक सिलपट खोपड़ी वारो बैठे हो और ओंग के मारे झोंका ले रहे हो। हमने वाकू झकझोरियो और मकान के संबंध में बूझी तो बाने हमारी सुनी के न सुनी जाए तो भगवान जाने पर बाने डेरी ते कितेक लाभ होए बताए वो शुरू कर दियो और ऐसे बोल रहे हो जैसे सुपर फास्ट गाड़ी रुकवे को नाम ही ले जा डेरी को दूध मक्खन और मलाई शुद्ध और ताज़ा है। शहर में नकली चीज़ें मिले हैं जाते मुख तेरी बीमारी फैले हैं जितो तुम भाग में अच्छो लिखाई के लाए हो कहीं आए गए हो देखवे की चीज है एक बार देखो हजार बार देखो और देखते ही रह जाओगे। हमने कही कि तुम ढूंढते ही रह जाओगे क्योंकि सुनत सुनत हमारी नाक में दम है गई है पहले हमें मकान दिखाओ ता पाछे त्यारी डेरी को गुणगान सुनेंगे। भैया जिस सुन के वो हमें भीतर ले गए और देखियो कि बहुत बड़ो कमरा है वहाँ में अगर फुटबॉल ना आए तो टेनिस तो जरूर ही खेली जा सके है। बाई के ढिंगा लोहरे लोहरे से दो कमराए मानो खिलाड़ी ने के ताई बनवाए गए हुए जाते नेक आराम कर लें और अपने कपालता बदल लें। वो बोलियो ऊपर चलें हमने विचार कियो कि है सके है हमारे ताई कछु मतलब के कमरा होंगे सो कहा देखते हैं कि वो ही लंबो चौड़ो कमरा और डिबिया जैसे दो कमरा जिनमें दिन में हूँ हाथ ते हाथ न दी से। अब तो हमारे हिया में ऐसी बात बैठी जैसे कुत्ता मीट के जितो कसरत करवे बारे न के ताई बनवाए गए ये हमारे काउ काम के नाए सो माते हम नौ दुआ ग्यारह है गए। भैयाओ अब अगारी की सुनो माते कोई मील भर के फासला पे दूसरा मकान हो माँ पहुँचे तो कहा देखते हैं कि एक गलमूछन दार सत फुटा जवान बैठो भयो दरवाजे पे और हुक्का पी रहे हो। बाकू देखत खेम हमारी तो फूंक निकस गई नीचे को दम नीचे रह गयो ऊपर ले गो राम उड़ाए पर हिम्मत करके अगारी को बढ़े। भैया बाने हमको ऐसी कटकनी नजर ते देखियो कि हमें दिन में चंदा तारे दिसवे लगे। खैर जी रही कि हमारो सुफारी सूट अगारी ते गीलो नाव भयो और न पिछारी ते पीरो। हमने थूक ली लियो और घिघियाए के जय राम जी की करी और बूझी कि त्यारो मकान किराए के ताई खाली है सो हम जाई काम ते त्यारे ढेंगा आए। भैया जी सुन के बाने अपनी गलमूछन पे हाथ फेरियो और हेला दयो ओरे वकील जे मकान की ताही आए इनते बात करके मोकू बता भीतर ते वकील साहब निकसे।
1: अभी आप आनंद ले रहे हैं ब्रज साहित्य कार्यक्रम में हास्य वार्ता सुकारो नाय मकान ढूंढबो। वार्ताकार है कोमल प्रसाद शर्मा। यही के संग आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब संपन्न।

0: हुए है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
2: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना
3: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना और ये
3: मेरी बड़ी
2: आपके नाम और दादी आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा, देश भर के तीर्थस्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में हुए शामिल, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना, मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों के भी नैक रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष महापूजा का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत अनेक पवित्र तीर्थस्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा तय कर रहे हैं।
7: सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है और हम सब आभारी हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को प्राप्त हो रहा है उसी का परिणाम है सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसकी पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जोड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं।
6: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज सोमनाथ में व्यापक विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी आध्यात्मिक चेतना में निहित होती है और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का महायज्ञ है।
8: यह पर्व हमें अपने गौरवशाली अतीत से ऊर्जा लेकर भविष्य

0: के भारत के निर्माण का संकल्प लेता है। ऐसा भारत जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो, अपनी संस्कृति पर गर्व करता हो और विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता हो। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी आर्थिक समृद्धि, भौतिक संसाधन या तकनीकी प्रगति में नहीं होती, बल्कि उसकी सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और आत्मिक आधार में निहित होती है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बना है, नीति निर्माण में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने आज प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं। आज उत्तर प्रदेश ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बनाई है।
2: मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वह देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। मैं मानता था कि तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारें और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वह थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना।
1: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली के शुभारंभ के साथ भारत ने प्रौद्योगिकी आधारित राजमार्ग प्रबंधन के एक नए युग में प्रवेश किया है। नई दिल्ली में इस उन्नत टोल प्रणाली का उद्घाटन करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस पहल से टोल प्लाजा पर लगने वाला अधिक समय कम हो जाएगा और ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण और यात्रा में होने वाली देरी में उल्लेखनीय कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से 285 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी और प्रतिवर्ष 81,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य विश्वविद्यालयों के साथ ही प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को भी NAC और अन्य राष्ट्रीय रैंकिंग दिलाना है। इसके लिए कॉलेजों के प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें उन्हें बताया जा रहा है कि संस्थानों में गुणवत्ता, रिसर्च कल्चर, डिजिटल एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र सुविधाओं को बेहतर बनाकर किस प्रकार रैंकिंग हासिल की जा सकती है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि कॉलेजों में छात्र संख्या बढ़ाने, नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने और रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। अयोध्या में 2 दिवसीय श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्र ने बताया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभा कार्य 30 मई तक पूरा कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा में निर्णय लिया गया है कि मंदिर परिसर स्थित संग्रहालय दिसंबर के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। श्री मिश्र ने

0: कहा कि मंदिर परिसर में विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है।
1: कोई टेक्सटाइल पे पेंटिंग हो, कोई अन्य प्रकार की कलाकृति हो जो खुदाई में पत्थर मिले, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की लैब जो बनाई गई है यह IGNCA दिल्ली में है, उनके साथ समझौता करके यह लैब बनाई गई है। उन्होंने दो अनुभवी कर्मचारी अपनी संस्था से दिए हैं, लगभग 3 साल में वह हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे।
0: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान सीमैप और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NVRI में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर अश्विन कशकर ने AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, प्रिसीजन ब्रीडिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से जलवायु अनुकूल और उच्च उत्पादकता वाली फसल किस्मों के विकास पर प्रकाश डाला। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में कहा, देश भर के तीर्थस्थल तय कर रहे हैं विकास की नई यात्रा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में हुए शामिल, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना, मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का किया गया प्रावधान। और प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के साथ ही डिग्री कॉलेजों को भी रैंकिंग दिलाने का रखा लक्ष्य, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, विशेष कार्यशालाओं के जरिए संस्थानों में गुणवत्ता सुधार की होगी ट्रेनिंग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बुलबुल के थक गए, क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
3: ले आ गया ना गिड़ बैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी।

रूहानी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपके दोस्त मयूर कौशिक का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और सबसे पहले आप सबकी पसंद का ये फिल्मी गीत सुनवाते हैं।

मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म ताजमहल में। इस गीत को सुनना चाहा था हमारे श्रोता सीजी गार्डन टू मथुरा से डॉक्टर मुकेश चंद शर्मा, साथ ही हमारे श्रोता यज्ञेश शर्मा, सावित्री शर्मा और उनके सभी मित्रगण, साथ ही हमारे अगले श्रोता हैं गांव उगाला जिला अम्बाला से हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्यगण। साथ ही हमारे ये श्रोता हैं चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु, रिधान, तुलसी मस्कीन और उनके सभी मित्रगण। ये हमारे श्रोता हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर, आरती और उनके सभी मित्रगण। ये हमारे श्रोता वेस्ट जनाद्वार से सुरेश, गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित। साथ ही नगला भीमा राया जिला मथुरा से कैलाश शर्मा, शिल्पी शर्मा, शिवानी शर्मा, ममता शर्मा और उनके सभी मित्रगण। साथ ही गांव प्रसुआ से यादराम भारद्वाज, राधेश्याम भारद्वाज, जयपाल भारद्वाज और उनके सभी मित्रगण। ये हमारे श्रोता हैं ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया और उनके मित्रगण। साथ ही हमारे मित्र अनंता भगत, अरुणा, चेतन, सुलोचना, पूर्णा जंक्शन मस्तापुरा से। ये हमारे श्रोता हैं मोताला से विजय, रतन, आरती, ओमकार और उनके सभी मित्रगण। प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार गांव फांसी हिसार से। ये हमारे श्रोता भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार, गोमती नगर दसवेसा गोवर्धन से, अजय लवानिया।

अरुण लवानिया और उनके सभी मित्रगण। ये अगले श्रोता हैं अंबागढ़ चौकी से रिजवान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। साथी जी हमारे श्रोता हैं कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश, डॉक्टर तबीरुल हसन, बेगम शबनम, नजमा, सरिता गौतम और उनके सभी मित्रगण। ये श्रोता मोताला से विजय रतन, ओम कुमार और उनके सभी परिवारजन। साथी महाराष्ट्र से विट्ठल, सुषमा, फरीदी, मायरा और उनके मित्रगण। साथी बागपत से ममता ढिंगिया, कुणाल ढिंगिया और उनके सभी मित्रगण। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत आप सभी श्रोताओं की पसंद का।

अभी आपने सुना किशोर कुमार को फिल्म याराना में। इस गीत को सुनना चाहा था हमारे श्रोता कैलाश नगर मथुरा से नितिन रावत, चेतन शर्मा, राहुल चौधरी और उनके सभी मित्रगण। साथ ही बिलासपुर से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी, शिवन्या और अनु गोस्वामी। साथ ही हमारे ये श्रोता हैं मलकापुर से नारायण राजकुमार, आशीष और उनके

परवारीजन। अगले श्रोता नारायण दयानंद ओमकार साई गायकवाड़, ये नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं। हमारे श्रोता उत्तम कुमार भगत, श्वेता किशु, अर्णम सत्यम आनंद पश्चिम बंगाल बोहड़ा गाछी से, साथ ही गांव व डाकघर नमनाबाद जलाजींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर और उनके सभी परिवारीजन, ये हमारे श्रोता है। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, निगत परवीन, शाहनवाज, फरदीन सुहान, अरजान और रवान अब्बासी। और ये अगले श्रोता हमारे कुंभेर राजस्थान से हैं। रजनलाल शर्मा, रमाकांत, वीरेंद्र शर्मा और उनके सभी मित्रगण, साथ ही हमारे ये अगले श्रोता है ताज मोहम्मद गुलाम साबिर महराज, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, साथ ही ये श्रोता प्रभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा, चाखोद राजस्थान से। हमारे श्रोता स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह, गांव लोहगढ़ से। साथ ही हमारे श्रोता सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। हमारे श्रोता पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता और उनके सभी परिवारीजन, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन वर्मा और उनके सभी मित्रगण, साथ ही नागपुर से कमल, पिंकी, अफजल, संदीप और इफजल। शाहदरा दिल्ली से तुलसी, वीना, आशीष, चैतन्य, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रधान खुराना और उनके सभी मित्रगण। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत आप सभी श्रोताओं की पसंद का।

आपने सुना सुधा मल्होत्रा और अनवर को फिल्म प्रेम रोग में। इस गीत को सुनना चाहता हमारे श्रोता रायगढ़ से सुकुमार चौहान, संक्रांति रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान और उनके सभी मित्रगण, साथ ही भाटापारा से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी और उनके सभी मित्रगण, साथ ही जी हमारे श्रोता हैं रश्मि झरना, भरत कुमार राजकोट गुजरात से। ये हमारे श्रोता

अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयंती केवट, खंडवा मध्य प्रदेश अब्दुल गफ्फार डावर और उनके सभी मित्रगण, हमारे श्रोता छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल राधिका बेबी तन्मय और उनके सभी मित्रगण, पंजाब से हरजिंदर चिद्दा, जसवीर सीता और गीता, साथ ही परासौली गोवर्धन से चंद्र खिलौना कौशिक, तरुण कौशिक और उनके सभी मित्रगण, हमारे श्रोता मुकेश शर्मा, गौरव गर्मा, हर्ष शर्मा छत्तीसगढ़ से, साथ ही अंजनी ज्योति प्रहलाद उमेश प्रमिला और उनके परिवारीजन, हमारे श्रोता मुकेश शर्मा और उनके मित्रगण, श्रोता हमारे हैं छत्तीसगढ़ से माखन चांदनी भूपेश दीपेश वर्मा और उनके सभी मित्रगण, साधुल सह राजस्थान से राम कुमार चंद्रकला और उनके सभी मित्रगण, साथ ही हमारे मित्र बुलढाणा से नारायण कमल दिव्या जय और उनके मित्रगण, हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्र नौखेलाल, डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू, साथ ही हमारे श्रोता परवीन सोनी, पूजा पायल, कंचन कुसुम, चूली और जगदीश जौहरी, हमारे ये श्रोता हैं पप्पू राजा, संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता, आरजू, हसमुख लाल, बुलबुल, संजीव बंटी और उनके मित्रगण, साथ ही कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव और उनके मित्रगण, साथ ही मीना शर्मा, नवीन शर्मा, सौरभ शर्मा, मैंडी शर्मा और उनके मित्रगण। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत आप सभी श्रोताओं की पसंद का।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म हीर राजा के इस गीत के साथ ही संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत कार्यक्रम शाम सुहानी अब संपन्न होता है। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: और आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का ये पहला नगमा।

आपने सुना 52 सुप्रियो प्रिया को फिल्म सात रंग के सपने में, और आइए सुनते हैं किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है कटी पतंग।

की गाय फिल्म मेरा नाम जोकर के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं संवेश स्वर में देशगान।

0: समय आप सुन रहे हैं संवेश्वर में देश गान आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वर में तेज कान, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, फिल्म का नाम है दिल तो पागल है। सुनते हैं इस फिल्म का ये पहला नगमा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण की।

दिल तो पागल है 1997 में बनी भारतीय संगीत में रूमानी हिंदी फिल्म है। इसका निर्देशन यश चोपड़ा ने किया है। इसमें मुख्य किरदार में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित तथा करिश्मा कपूर हैं। शाहरुख खान और यश चोपड़ा की यह एक साथ तीसरी फिल्म है। इससे पहले वह डर और दिलवाए दुल्हनिया ले जाएंगे में एक साथ काम कर चुके थे। चारी होने पर दिल तो पागल है को प्रमुख वाणिज्यिक सफलता थी और ये दुनिया भर में साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी थी। फिल्म ने अपनी कहानी और संगीत के लिए प्रशंसा प्राप्त की। इसके अतिरिक्त फिल्म ने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे।

उदित नारायण के गाए फिल्म दिल तो पागल है के गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को

0: ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष

0: पहली जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
2: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
2: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
3: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता N. रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15

0: और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Center notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: Sardar Dham Hostel in Vadodara includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls.

अनुराधा पौडवाल कुमार सानू के गाए फिल्म आशिकी के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतर्कता, सुरक्षा और बचाव। अग्नि एक ऐसा प्रतीक जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां इसने हमारे जीवन में क्रांति लाकर हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं इसका दूसरा रूप बहुत भयावह है, जो पल भर में सब कुछ जलाकर खाक कर देता है, अंधकारमय कर देता है। अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बचाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग के पूर्व निदेशक अतुल गर्ग। नमस्कार, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार मैम।
0: श्रोताओं, आपके मन में इससे संबंधित सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी ये दिल्ली का कोड है 2331 7171 7117 1 7 2 3 7 1 7 1 0 6 और 2 3 3 1 4 4 4 4 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 9289094044 और हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल आप हमें पोस्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले अतुल जी, आपसे सवाल। आज का विषय है जो हमारा अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सतर्कता, और जागरूकता सतर्कता होगी तभी सुरक्षा और बचाव होगा। तो अग्नि सुरक्षा का क्या अर्थ है, अमूमन आग कैसे लगती है और सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए?
2: देखिए, अगर आप पूरे डेटा को कलेक्ट किया गया है और उसमें देखा गया है, करीब करीब जो फायर होती है वो 70% फायर ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। इट मे बी इलेक्ट्रिक ब्लास्ट, इट मे बी शॉर्ट सर्किट, इट मे बी एसी ब्लास्ट, समथिंग लाइक दैट। सो हमें जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, और स्पेशली रेजिडेंशियल जो फायर होती है घरों में जो होती है, वो दो तरह से लगती है मेनली। वन इज इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इज किचन। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है उसकी हेल्थ पे, उसकी वायरिंग पे, उसके लोड पे, हम जो इक्विपमेंट चला रहे हैं उन पे ध्यान देंगे, तो मुझे ये लगता है कि फायर जो है काफ़ी कम हो जाएगी। मतलब उसमें करीब करीब 60-70% का लोअर आ जाएगा। आप कोई भी इक्विपमेंट को, आप ये समझिए, अगर आप कंटिन्यूस चलाएंगे तो कोई भी इक्विपमेंट जब चलता है उसमें हीट जनरेट होती है, चाहे आप मिक्सी चलाएं, चाहे आप एसी चलाएं, चाहे वॉशिंग मशीन, कोई भी चीज़ चलाएं। तो अगर आप उसको कंटिन्यूस चला रहे हैं तो उसमें हीट जनरेट हो रही है, और आप उसको अगर रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आग लगने ही वाली है, आप आज या नहीं तो कल जरूर लगेगी। स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपने देखा होगा दिल्ली में भी इस गर्मियों में बहुत, जैसे गर्मी शुरू
0: हुई
2: आग लगी और बहुत सारी आग भी एसी के ब्लास्ट होने के से लगी।

0: उसका मेन रीजन सिर्फ यही है कि आप एसी की सर्विसिंग ठीक से नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस ठीक से नहीं करते। गर्मी हुई, बिना मेंटेनेंस के आपने एसी को ऑन कर दिया और एसी कंटिन्यूस चल रहा है, तो उसकी क्योंकि एफिशिएंसी डाउन हो गई है, आपने 17 टेम्परेचर किया हुआ, वो कभी टेम्परेचर रीच नहीं होगा तो एसी कभी बंद नहीं होगा, तो उसमें आग लगने वाली है।
1: जी, शिमला से राकेश जुड़े हैं, उनका सवाल जानते हैं। जी राकेश जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई, शिमला, हिमाचल प्रदेश।
1: जी,
2: और मैं प्रश्न ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर जंगल में आग लगती है, किस तरह से आग को पाया जा सकता है, क्योंकि हमारे जो कई गांव ऐसे जहाँ सड़क सुविधा नहीं, लेकिन फायर ब्रिगेड पहुंचती नहीं है, तो अग्नि को कैसे किस तरह से जो है काबू किया जा सकता है, काबू किया जा सकता है
1: प्रशांत जी, जंगल में आग।

0: जाता था, काबू किया जा सकता है।
1: जंगल में आगे गंभीर समस्या है।
2: नमस्कार राकेश जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जंगलों में आग को कैसे काबू पाया जाए। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि जंगलों की आग जो है अमूमन जो है उसका जो स्प्रेड है वो बहुत वास्ट होता है, उसका एरिया जो है कवरेज बहुत ज़्यादा होता है। और साधारणतः जो हम जंगलों की आग जैसे शहरों में आग बुझाते हैं या और भी जगह पर आग बुझाते हैं, तो उसके मात्रा में आपको जंगलों में आग बुझाने के लिए कई प्रकार के साधन और जो है पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आग बहुत दूर तक फैलती है और लकड़ी है जो जलने का सामान है। तो इसमें एक हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों में, ऐसे जंगलों में जो आग को काबू पाना है तो उसको एक फायर लेन बनाते हैं हम। फायर लेन का मतलब ये है कि जहाँ पर आप आग लगी है उससे कुछ दूरी पर आप उस एक ऐसा लेन बनाते हैं जहां पे कंबस्टिबल मटेरियल ना हो, उसको साफ कर देते हैं, सो दैट आग उस पर्टिकुलर उतने ही एरिया में कन्फाइंड हो। क्योंकि आग को बुझाना तो बड़ा मुश्किल काम है, अगर बड़ी आग है तो बुझाना मुश्किल है, तो फायर लेन बना के उसको कन्फाइंड करते हैं तो आग वहीं पे जले और वहीं पे बुझाए। बाकी आज के डेट में कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी आते हैं, जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में जो जंगलों की फायर होती है तो उसमें एयर लिफ्टर बुलाते हैं, उसमें पानी से आग बुझाते हैं, कई सारे केमिकल्स भी उसमें स्प्रेड करते हैं, तो वो फायर सर्विस का एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है। बट मेरा हमारा ये है कि आप उसको कन्फाइन कर सकते हैं, उसको उस एरिया को कन्फाइन करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति यही कर सकता है।
1: जी राजेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम से, हरियाणा से हैं ये, इनका सवाल जानते हैं। जी राजेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है।
3: नमस्कार जी, निगम जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। जन मैं ये जानना चाहता हूँ जी अधिकारीगण से, जो एक एक बिल्डिंग में 20-25 हर कमरे में एसी लगे होते हैं, तो उनकी ज्यादा से हीट ज्यादा होने, गर्मी ज्यादा होने से भी क्या आग लगने की ज्यादा संभावना होती है? मैंने देखा है कि वहां पे 60-70 तापमान भी ऐसा हो जाता है, तो उनकी वजह से भी आग लगने की ज्यादा संभावना होती है। और ऐसी बिल्डिंग भी अधिकारीगण जो निर्धारित कर दे, जैसे MCED है, नगर पालिका है, ये बिल्डिंग जर्जर है, गिरने को है, या भी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें आग लगने की ज्यादा संभावना हो, खतरा ज्यादा हो, क्या क्या उनको सचेत करते हैं? और दूसरा, घबराहट में लोग अपनी ज्यादा जान दे देते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी राकेश जी।
4: राजेंद्र जी आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए एसी हर घर में हर ऑफिस में लगा होता है, एसी के चलने से आग नहीं लगती है। आप अगर एसी की ठीक से मेंटेनेंस नहीं करते, अगर कंटिन्यूस एसी चलाते हैं तो आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। जो भी अभी भी घटनाएं हुई हैं वो इस वजह से हुई कि एसी की सर्विस ठीक नहीं थी, उस पर डस्ट जम गई थी और आप कंटिन्यूस एसी चला रहे हैं। गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है और कोई भी अगर चीज़ आपके पास है जो जलने वाली और स्पार्क होता है तो आग लग जाती है। तो ये कहना कि आपका कि आग एसी चलने की वजह से लगती है ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आग लगती है एसी की ठीक से मेंटेनेंस ना करने पे, एसी को रेस्ट ना देने पे, एसी की वायरिंग को ठीक से चेक ना करने पे, अपने घर का लोड ना चेक करने पे। मैं एक बहुत जल्दी से आपको छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ। हम लोग दो घर का एक छोटा सा कमरा लेते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक कमरे में सब सोते हैं, बच्चे भी उसी सोते हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है। फिर हम क्या होते हैं, दूसरे रूम में टीवी भी लगाते हैं, एसी भी लगाते हैं, बर्तन धोने वाला इक्विपमेंट भी, तो हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं अपने घर में। दो एसी हो गए, दो टीवी हो गए, वॉशिंग मशीन आ गई, बट हमने अपनी वायरिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो वायरिंग 20 साल पहले लगी थी वो इस लोड को लेने के काबिल है या नहीं है? अगर हमारा ट्रिप होता है तो हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये बार बार कुछ गड़बड़ है। ये जो ट्रिप होता है या एसी आवाज कर रहा है या बार बार कोई चिंगारी निकल रही, ये संकेत है कि आपकी वायरिंग खराब हो चुकी है, आपका लोड ज्यादा है, आप कम जो लोड वाली वायरिंग यूज कर रहे हो आग लगेगी। तो आपको ध्यान इन चीजों पे देना है, ना कि सबके 60 एसी चल रहे हैं उसका ध्यान देना है, क्योंकि एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है, वो हवा में जा रहा है तो वो हीट होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, पर उस वजह से आग लगने के चांस बहुत कम है।
1: अतुल जी, ये जो इन्होंने सवाल पूछा है कि एसी अगर हम 2400 घंटे चला रहे हैं तो अमूमन कितने घंटे चला के उसको रेस्ट दें या दूसरे रूम में जाके चला लें, कुछ इस तरीके की?
4: देखिए ये करें? मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत जगह मैंने कहा है कि आप एसी को 2 घंटे चलाइए और आप 10 मिनट के लिए भी बंद करते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो

0: पड़ता है उससे, उससे ये हो जाता है कि वो उतनी कूलिंग हो जाएगी, हीट डिसिपेट हो जाएगी। हमारे यहाँ वो क्या रहा है कि हमने एसी सुबह चला दिया, बच्चे उठे चला दिया, 90 डिग्री कर दिया और उसको जो है कंटिन्यूस चल रहा है। बिकॉज आपका एसी ठीक से सर्विस नहीं हुआ, काम उसमें नहीं हुआ है, दरवाजा खुल बनना, तो 90 डिग्री का भी टेम्परेचर अचीव नहीं होता और एसी का भी कट ऑफ होगा नहीं, तो आग लगने के चांस ज्यादा है। तो मेरा ये कहना है कि आप 2 घंटे चलाएं, थोड़ा सा उसको रहते हैं, इवन 5 मिनट देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि आपका कूलिंग उतनी देर में हो जाएगा, रीस्टार्ट एसी होगा, तो आपको जो है आग लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी।
1: रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी का एक सवाल है। जी रमाशंकर जी, सवाल पूछिए, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते, मैं ये पूछना चाहता था कि बहुमंजिली इमारतों में आजकल बहुत सुना जाता है कि फलानी मंजिल में आग लग गई, तो बहुमंजिली इमारतों में अग्नि की सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और वो क्रियान्वयन कैसे की जाती है, पहला प्रश्न।
3: हाँ नमस्कार रमाशंकर वाजपेयी जी, नमस्कार। आपका सवाल जो है बहुमंजिला इमारत में आगों की कैसे सुविधा या रखरखाव कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बहुमंजिल इमारत में जो आग लग प्रिवेंशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी हमारा जो अभी बात चल रही थी, तो कभी भी आग का रखरखाव, आग के लिए बचाव का रखरखाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बहुमंजिल इमारती में जो स्टेट्स के जो बायलॉज है या उनके जो कोड्स है, स्टैंडर्ड्स है, उसमें मापक दिए हुए हैं कि आपको बहुमंजिल इमारत में क्या क्या चीज़ों का रखरखाव रखना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। कि जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड के निर्धारण के हिसाब से इलेक्ट्रिकल वायरिंग होनी चाहिए, जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उस बिल्डिंग में है और जो वायरिंग का रेटिंग है उसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी बात कर रहे थे, गर्ग साहब बोल रहे थे कि जो आपका लोड बढ़ रहा है पर उसके बाद आपने वायरिंग का चेक नहीं किया, तो आपको हमेशा ये चेक करना है। उसके बाद स्टेबलाइजर्स आते हैं, एमसीबीज आते हैं, आरसीबीज आते हैं, तो इसका भी आपने घरों में उपयोग करना है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिक पावर को कट कर देता है। और उसके बाद जो है आपका जो अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है एसी में या उसी और भी कोई इक्विपमेंट में ऐसी हानि उसका चेंज होता है या ऐसा फॉल्ट निर्माण होता है तो ट्रिप कर देता है, तो ये इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। फिर उसके बाद में हाई राइज बिल्डिंग में हाइड्रेंट सिस्टम होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम होती है, डिटेक्शन सिस्टम होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि ये सारी चीज़ें हम तो शुरुआत में हाई राइज बिल्डिंग में होती है बट उसका रखरखाव ठीक से नहीं होता है। आज के डेट में बहुत सारी जो मेंटेनेंस जो है उसका बहुत जरूरी है, और जो ऑक्युपायर है, जो हम लोग वहां रहते हैं, उनको ये चीजों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारे यहां पे क्या सिस्टम है, उसको कैसे चलाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, पर आप कहीं भी वहां पे जो इक्विपमेंट है, एक्सटिंग्विशर है, उस पर लिखा रहता है कि आपको कैसे चलाना है। आपको 5-7 मिनट 10 मिनट का एक अगर आपने समय दिया और वहां जाके पढ़ा आपने, तो भी आपका ज्ञानवर्धन हो सकता है और आप ऐसे समय में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद में बाहर निकलने के रास्ते पता होना बहुत जरूरी है। हाई राइज बिल्डिंग में जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो घटनाएं होती है वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण होती है। तो बहुमंजिला इमारत में कम से कम 2 एग्जिट हर जगह से आपको मिलने चाहिए, और ये है कि कहीं एग्जिट ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि आप जो है निकलने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, वहां पर सामान रख दिया है या कोई लॉक कर दिया है या सिक्योरिटी रीजन से है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि निकास का रास्ता आपका साफ हो, क्लियर हो, इक्विपमेंट आपके रेटिंग हो या फायर फाइटिंग सिस्टम सही काम कर रही हो और लोगों के बारे में अवेयरनेस हो। जैसे कि हम मॉक ड्रिल की बात करते हैं, डीएफएस, दिल्ली फायर सर्विस, कोई भी फायर सर्विस हमेशा मॉक ड्रिल कंडक्ट करता है, तो मॉक ड्रिल कंडक्ट करने का एक फायदा यह है कि आपको पता चलता है कि बाहर निकलना कैसा है, आग को रिस्पॉन्ड करना कैसे है, आग में ऐसी घटना होने के बाद आपको क्या रिस्पॉन्स करना है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि मॉक ड्रिल करना है, प्रिवेंशन मेंटेनेंस करना है और आपको अपने एरिया के बारे में अवेयर हो रहा है,
1: क्योंकि आप लिफ्ट से नहीं जाएंगे, सीढ़ियों से जाएंगे। हाँ। तो रास्ता साफ होना चाहिए और पैनिक नहीं, सबसे बड़ी।
3: हाँ, लिफ्ट से आपको ट्रैवल, जैसे मैम ने कहा कि आपको फायर के घटना में लिफ्ट से नहीं ट्रैवल करना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि लिफ्ट में स्मोक जम जाता है और उसमें हानि होती है, दम घुटता है, तो कभी भी आग के समय में लिफ्ट का यूज नहीं करना है, आपको सीढ़ियों का ही यूज करना है।
1: दिल्ली से धर्मवीर जुड़े हैं, जल्दी से उनका सवाल जानते हैं। जी धर्मवीर जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
4: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार,
4: मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, जैसे कि मैं दिल्ली गांधीनगर क्षेत्र में रहता हूँ, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की यहाँ फैक्ट्रियां भी हैं, दुकानें भी हैं, तो मैं आपका ध्यान 2-3 बातों की तरफ ध्यान

0: जलाना चाहूंगा। जैसे यहाँ जो मार्केट में जो कपड़े की दुकान है, आए दिन हम देखते हैं यहाँ पे आग लगती ही रहती है, कहीं एसी में लीकेज हो गई, कहीं कुछ और बात हो गई कहीं। तो यहाँ ज्वलनशील जो उनके काम होते हैं, जैसे पन्नियाँ होती हैं, प्लास्टिक होती है, लकड़ी होती है, डमियाँ होती हैं, तो इसमें आग लगती है तो वो फिर बुझती नहीं है, वो पूरी ही डैमेज कर देती है बिल्डिंग को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से इन दुकानों पे या इन फैक्ट्रियों में ऐसा कोई कानून नियम है एमसीडी की तरफ से या कोई आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से कि हर डिपार्टमेंट में ये आग बुझाने के लिए कोई साधन होना चाहिए, गैस सिलेंडर होने चाहिए, हर साल उनको चेकिंग होनी चाहिए, हर साल उसकी देखरेख होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि ऑटोमेटिक जो लॉक होते हैं बिल्डिंगों में, फ्लैटों में, तो कभी कभी आग लग जाती है तो ऑटोमेटिक लॉक डैमेज हो जाते हैं, वो लॉक लगे रह जाते हैं, जो अंदर फंसा हुआ आदमी अंदर ही रह जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसके अंदर आग लगी थी।
1: धर्मवीर जी, सवाल हम समझ गए हैं।
0: सवाल यही कहना चाहूंगा,
1: हम समझ गए हैं प्रशांत
0: जी। लवलीन जी, आप बात पूरी होने दीजिए।
1: नहीं, आप तीन सवाल पूछे जी।
0: नहीं, अगर आपके, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैक्ट्रियों में इतना साधन होना चाहिए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही पूरी आग वो खुद बुझा पाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इतना साधन होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में नहीं होता, फैक्ट्रियों में नहीं होता। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद।
2: धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं ये बताना चाहूँगा, पहले तो जो अभी गवर्नमेंट ने रूल रिलैक्स कर दिए हैं और सारी जिम्मेदारी जो दी है वो पब्लिक को दी है कि पब्लिक जो है जागरूक होनी चाहिए, उसको करना चाहिए। तो इंस्पेक्शन जो है 5 साल में होता है, पहले ये शुरू में एक हर साल होता था, फिर 3 साल किया गया, 5 साल हो गया। तो गवर्नमेंट की तरफ से या फायर ब्रिगेड की तरफ से इंस्पेक्शन 5 साल बाद होगा। तो आप जो ये कह रहे थे कि हर साल होता है, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि अभी ये नहीं होता, 5 साल बाद होता है। रही बात इक्विपमेंट प्रोवाइड करने की, तो देखिए ये मैं बहुत, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे करेंगे, मैंने हजारों चैनल कहा है कि आपको जागरूक होना है, क्योंकि फायर ब्रिगेड मैं गांधीनगर कई बार गया हूँ, गांधीनगर में हमें पहुँचने में हम कितनी भी कोशिश कर लें, रात कर लें, 15-16 मिनट लगते हैं कि तंग गलियाँ हैं, गाड़ियाँ पार्क होती रात में, दिन में तो जा ही नहीं सकते। मैं कई बार गया, गाड़ी कहीं दूर खड़ी की, वॉक करके गया
1: जी।
2: तो अनलेस हम सभी दुकानदार भाई, हम सभी पब्लिक लोग मिल के अगर अपना अरेंजमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे ये कहते हुए दुख है कि नुकसान अगर होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। इसमें फिर मैं ये बात कहूँगा, ज़्यादातर जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है, और मार्केट में पब्लिक की नेग्लिजेंस की लग सकती है, किसी ने सिगरेट फेंक दी, किसी ने कुछ खाना बना रहे थे वहाँ हो गया, तेल जल गया, क्योंकि वहाँ बहुत छोटे छोटे ठेले भी लगे हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी दुकान है उनको इलेक्ट्रिक सेफ्टी अगर नहीं वो कर रहे हैं वो करनी है, और सभी भाइयों को जो है छोटा छोटा जो है एक फायर एक्सटिंग्विशर रखना है अपनी दुकान में, और दुकान में रखना ही नहीं, उसको चलाना भी आना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुए, फायर एक्सटिंग्विशर था, आग लगी, लोगों को चलाना नहीं आता, तो उन्होंने उस फायर एक्सटिंग्विशर को आग में फेंक दिया और वो फट गया और उससे ज़्यादा नुकसान हो गया
1: जी।
2: तो पहले आपको फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो छोटे वाले होते हैं जो आप लोगों के लिए बने, उनको रखना है, उनको चलाना आना है। और इलेक्ट्रिसिटी की जो बात है, मैं कह रहा हूँ जहाँ बिजली के प्लग होते हैं वहाँ हम देखते हैं साड़ियाँ भी लगा दिए, कपड़े भी लगा दिए, वो प्लग ही नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर भी कपड़े लगा दिए। अगर मान लीजिए तापमान ज़्यादा हो गया है और कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ, स्पार्क निकला, तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, कपड़े में आग लग जाएगी, और आग फिर कपड़े में आग लगती है और बुझती नहीं है, गांठ होती है, आप पानी डालें, ये बहुत 24-24 घंटे लेती है, 2-2 दिन लेती है
1: जी।
2: तो मुझे ये लगता है कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है, आप इसके माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, कि सबको अपनी अपनी सुरक्षा बेसिक जो प्रिकॉशन है वो लेने हैं। अगर हम वो ले लेंगे तो मुझे लगता है आग की घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जैसे आपने कहा गांधीनगर में आग लगती है, पर मैं अभी हुआ, मैंने देखा कि लगती है, पर बहुत सारी आग को आप लोग खुद बुझा लेते हैं, तो क्योंकि वो दिन में लगी, आप लोग जागरूक थे, आप सचेत थे, आपने तुरंत बुझा ली। पर कई बार क्या होता है, कोई ब्लास्ट हो गया, मीटर फट गया, आग बड़ी हो गई, तो आप नहीं बुझा पाते। तो अनलेस हम अपना जो प्रिकॉशन लें, हम लोग को, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल रिलैक्स कर दिया, 5 साल बाद दिल्ली फायर सर्विस जो इंस्पेक्शन करेगी,
1: जितनी देर फायर ब्रिगेड पहुंचे उतनी देर में अपना। विजय कुमार साहनी है महाराष्ट्र से।
3: स्वामी
1: जी, विजय जी नमस्कार। हाँ, स्वागत है।
3: दीदी नमस्ते।
1: नमस्कार, सवाल।
3: हाँ, सर नमस्कार जी।
4: नमस्कार
3: जी। भाई विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गाँव बस्तवा तहसील सीहोर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से
1: जी।
4: नमस्कार विजय।
3: हाँ सर जी, मेरा सवाल यह है कि अचानक इमारत को आग लग गई तो हमें शुरुआत तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या टोल फ्री नंबर वगैरह क्या?
4: हाँ, विजय कुमार जी नमस्कार, कोल्हापुर से है आप, तो मैं आपको एक, आपका सवाल है कि अचानक अगर आग लगी तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आपको आग से दूर होना है, खुद को बचाव करना है, जो लोग आसपास है उनको वहां से बाहर निकलना है।

0: पहले अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा, पहले अपनी फिर उसके अपने बाद अपने साथियों की सुरक्षा करनी है, उसके बाद आपको अगर आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके बाद जो वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं अगर आप उसको ऑपरेशन जानते हैं तो उसको ऑपरेट करना चाहिए। और जो अभी आजकल 112 जो कॉल लाइन नंबर है, कई जगह पे 101 भी चलता है, तो यहाँ पे आप इमीडिएटली फ़ोन कर दीजिए और जो साधन है आपके पास में, एक्सटिंग्विशर है या पानी है, तो ऐसे जगहों पे आप कर सकते हैं। बट पहले अपने आप को सुरक्षित करना है, उसके बाद जितना हो सकते है पब्लिक जो लोगों को बुलाना है मदद के लिए, और जितना आप कर सकते हैं वो करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को 112 या 101 पे बुलाना चाहिए।
1: और इसके अलावा प्रशांत जी, जैसे जब आग लगती है तो कुछ लोग तमाशबीन बन के खड़े हो जाते हैं, खूब सारी गाड़ियां आ जाती हैं, सलाहें बहुत देती, तो वो भी लोगों का है कि पर्याप्त जगह दें ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सके।
0: हाँ, ये निवेदन हम मतलब सबसे इस माध्यम से करना चाहते हैं कि ऐसे आगजनी की घटनाएं होती है तो वहां पे आपकी सलाह उस वक्त काम नहीं आएगी, आपका एक्शन वहां पे काम आएगा। तो उससे अच्छा है कि जो लोग वहां काम कर ले उनकी सुविधा दें, लोगों को जाने आने का रास्ता दें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जैसे अभी गांधीनगर के सवाल में भी सर ने कहा कि आपको अपने आप को अवेयर करना है, जैसे कहा कि आपके जो ऑटोमेटिक लॉक लगे, अब ऑटोमेटिक लॉक लगाना ही नहीं चाहिए। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का नॉर्म है कि कभी भी हम बिल्डिंग को लॉक लगाने को कभी भी सुझाव नहीं देते, वो हमेशा ओपन रहने चाहिए, क्योंकि आपके लॉक बंद है तो आप बाहर कैसे निकलेंगे, ऑटोमेटिक लॉक बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ऐसे वक्त में ये चीजें, ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेट और एग्जिट रूट हमेशा क्लियर और ओपन होने चाहिए, उसकी मार्किंग होनी चाहिए, आपको कहाँ जाना है उसका जो है एरो होने चाहिए, उसका दिशा आपको दिखना चाहिए कि इस वे एग्जिट निकला है, या रेडियम मार्किंग लगते हैं, या फोर फ्लोर फुटवेयर के प्रिंट लगे रहते हैं, इस तरह से आपको पता होना चाहिए।
1: श्रीकांत जुड़े हैं महाराष्ट्र से। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
2: नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी, मैं श्रीपाद जाखड़ बोल रहा हूँ, मैं पुणे महाराष्ट्र से
1: जी।
2: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मियों के दिनों में आग लगने की घटना तो बहुत होती है, तो समझे पानी की कमी है आजू बाजू में कोई कोई एरिया में कमी रहती है, तो इससे तो आग बुझाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है क्या, मतलब इसमें कोई व्यवस्था रहती है क्या, समझो पानी की कमी है, पानी उपलब्ध नहीं हो पाए तो, मतलब
1: जी जी श्रीकांत जी, इन्होंने पानी पूछा, उसी को अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से भी जोड़ लें जहां दूर है फायर स्टेशन, तो इन दोनों में उस वक्त तक क्या करें?
0: उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे एक साल्वेज का कॉन्सेप्ट है। साल्वेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पानी से आग बुझाने का कोई मतलब पानी नहीं है, ऐसे वक्त में आप एक काम कर सकते हैं कि वहाँ पे जो जलने वाली चीज़ है उसके आस पास में जो जलने वाली चीज़ है उसको वहाँ से हटा दीजिए। जैसे जंगलों में हम फायर लाइन बनाते हैं तो एक तरह से वो साल्वेज का ही तरीका है। तो वहां पे जो जलने की चीजें जितनी ज्यादा आप हो सकते उसको कम कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि फायर कन्फाइंड हो जाएगी, उतने ही एरिया में होगी, मतलब जहां से आप बिल्कुल सामान हटा नहीं सकते हैं वहां, फिर वो कन्फाइंड करके वो वहीं पे किल हो जाएगी, मतलब उतना जल के किल हो जाएगी। वो तो लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये कभी परिस्थिति किसी पे ना आए, बट ऐसे वक्त में जलने की चीजें आपको दूर करनी चाहिए और उसको फिर कन्फाइंड कर देना, उसको कन्फाइनमेंट ऑफ फायर करते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश से हैं चौधरी महेंद्र सिंह, इनका सवाल जानते हैं जी। महेंद्र सिंह जी स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए।
3: लवली जी नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछिए।
3: आकाशवाणी स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
0: नमस्कार। नमस्कार
3: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गांव में महिलाएं अक्सर गैस सिलेंडर पर रसोई में काम किया करती हैं, और उनकी भूल से या कैसे भी उनकी लापरवाही से, गलती से, और कोई गैस सिलेंडर से अग्निकांड हो जाता है, तो आपने जो फायर ब्रिगेड सर्विस सेंटर जो बनाए हैं और उनका हेल्प नंबर क्या है, किस नंबर पर सूचना दी जाए?
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए। देखिए सभी पूरे भारत में 101 और अब एक 112 नंबर प्रधानमंत्री जी ने की स्टार्ट किए, दो नंबर है, आप इनको याद रखें, 101 और 112। आप 101 पे करेंगे तो भी फायर ब्रिगेड को जाएगा
1: जी।
4: और 112 पे भी जाएगा अगर करेंगे तो भी वो फायर ब्रिगेड के पास आएगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब जो सिलेंडर है, अगर मान लीजिए सिलेंडर में आग लग भी गई है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब सिलेंडर में अगर आग लग रही है, लीकेज नहीं है,

0: तो आप सिलेंडर को बाहर ले जा सकते हैं आराम से, ओपन में ले जाके उसके ऊपर कोई कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई और चीज। हम लोग कहीं कहते हैं, ऑल दो वो क्रूड मेथड है कि अगर आप सिलेंडर का वॉल लीक हो रहा है तो आप उस पर आटे का गोला, कोई गीला कपड़ा, तौलिया रख देंगे तो भी आग बुझ जाएगी, और उसके बाद आप उसकी नॉब को बंद कर दीजिए। आप उसके ऊपर उल्टा भिगोना भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। लीकेज है तब थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कितनी देर से लीक हो गया आपको नहीं पता चला, तो उस केस में आपने सिलेंडर को घर से बाहर ले जाना है, और कोई बिजली का सामान, कोई स्पार्क नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे वो डिसिपेट हो जाएगी
1: जी।
0: तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि और अभी जो नए गवर्नमेंट दे रही है आपके पास भी पहुंचेगा। अब जो सिलेंडर आ गए हैं उस सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होता है, वो प्लास्टिक के, हाई क्वालिटी प्लास्टिक के सिलेंडर हैं, वो आग लगने में मेल्ट हो जाते हैं। तो ब्लास्ट का चांस जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो फिर जो ये ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि कई केस ऐसे हुए हैं एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, उस वजह से लोगों की जान चलेगी, तो ब्लास्ट की संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी अब। और बाकी अगर लीक होता है तो आप उसको बहुत आराम से छोटी सी ट्रेनिंग से हैंडल कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपने जो जहाँ भी फायर ब्रिगेड है, मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर भी है, आप वहाँ चिट्ठी लिखें, वहाँ से कोई ना कोई जरूर आएगा और आपको इस बारे में ट्रेनिंग भी देगा। तो आप अपने गांव में एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे सारी महिलाओं को, एनजीओ को भी यूज़ कर सकते हैं, सब महिलाएं इसमें सक्षम हो जाएंगी और आग लगने की एलपीजी से करीब घटना नहीं होगी।
1: इसका कोई नंबर होगा जो आप बता रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ट्रेनिंग के लिए बोल दिया?
0: नहीं, नंबर जो सबका एक ही है, 101 ही होता है। आप अपने उसके जो भी नियरेस्ट फायर स्टेशन है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं।
2: मैं एक और चीज, सरकार ने जो बहुत सारी उपाय योजना जो कही है, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देना चाहता हूँ कि पहली बार जो भारत सरकार ने फायर सर्विस के अपग्रेडेशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सभी राज्यों को दिया गया है, तो उससे भी आपका जो आग के लिए एफिशिएंसी बढ़े, लोगों का डिजिटलाइजेशन हो, ताकि मतलब जो लोगों का रीच बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों के प्रति जागरूकता हो, और सरकार अभियान चला रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अवेयरनेस कैंपेन हम चलाए उसके लिए सभी को निर्देश भी दिए गए सरकार की तरफ से। तो अगर आप इसमें इच्छुक है ट्रेनिंग में, तो आप अपनी लोकल फायर सर्विस को बिल्कुल बुलाइए, आपके यहाँ पे आएंगे और जैसे सर ने कहा कि वो ट्रेनिंग आपको देंगे और अवेयरनेस आपका बढ़ेगा।
1: RWJ हो या कुछ भी,
2: हाँ, कोई भी सोसाइटी हो या ग्राम पंचायत सेवा पे या कोई भी शहर विकास या पंचायत लेवल पे भी ये ट्रेनिंग अवश्य मैंडेटरी है, उनको आना ही पड़ेगा अगर आपने उनको बुलाया तो।
1: एक सवाल है, पानीपत से हैं ये, शैलेंद्र शेंदुर कर रहे हैं शायद, ये बोल रहे हैं, मैं इंडियन ऑयल में काम करता हूँ, हमारे यहाँ बहुत उम्दा फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का प्रचलन है, उसमें आग लग जाना बहुत बार दिख रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, ऐसे स्थिति में क्या कर सके? CNG की भी हम बात करें तो CNG वाहनों में बहुत आग लग रही है।
2: इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने का प्रचलन अभी मतलब काफ़ी जगह पे ऐसे इंसिडेंट्स मिले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरीज होती हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो अभी हमारे पास जो व्हीकल्स में है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उस आग को बुझाने के लिए आपको बहुत सारा पानी डालना होता है। जितना पानी हो सकता है उस पर आप डालिए, और उससे ये आप आग पानी से ही कंट्रोल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे अगर ऐसी गाड़ी में आग लगती तो आपको तो बिल्कुल वहाँ से निकल जाना है, और उसके बाद फायर ब्रिगेड को ही बुलाना है, क्योंकि बैटरी फायर में आपको पानी बहुत चाहिए, तो वो आपके जो लोकल रिसोर्सेस है उससे नहीं होगा। जितना हो सकता है आपको दूर अपने आप को करना है, और फायर ब्रिगेड को बुला के ही वो फायर फाइटिंग हो पाएगी। और उसके उसमें ये है कि जब भी आप ऐसे व्हीकल्स लेते हैं, ई व्हीकल्स लेते हैं, तो उसमें जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लिए एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जहाँ जिस भी मैन्युफैक्चरर से आपने लिया है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, और उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर जो है कंपनीज अपनी अपनी देती है, उसको भी एक बार आपको समझना जरूरी है।
1: प्रमोद है जयपुर से, उनका सवाल जानते हैं जी। प्रमोद नमस्कार, स्वागत।
3: हाँ जी नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा निवेदन ये है कि ज्यादातर जो है ना रात में और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, तो कोई सेंसर वगैरह भी ऐसा है आधुनिक युग में कि जो ऑटो कट हो जाए, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफिस वगैरह हैं, या मतलब शट डाउन करके वो वहां से निकले, आप प्लीज इसमें बताएं। और टेम्परेचर जो है एसी का जो है वो 18 के आसपास रखते हैं, अगर आगे आप टेम्परेचर बताएं।
1: जी जी, हम जल्दी से सवाल का जवाब देंगे क्योंकि समय दौड़ रहा है।
0: जी आपका सवाल बहुत वाजिब है, रात में आग लगती है और सबसे ज्यादा डेथ भी रात में ही होती है। देखिए इसीलिए MCB, LCB, ELCB का जो कंसेप्ट है, इसीलिए अगर यह आपने लगाया है शॉर्ट सर्किट

0: होगा, अगर ये आपका ठीक से लगा मिनीचर सर्किट तो ट्रिप हो जाएगा और आग नहीं लगेगी, नंबर वन। नंबर दो, आपने एसी की बात की, एसी का मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि एसी को जो है आप अगर टेम्परेचर कम भी रख रहे हैं तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है एक दो घंटे बाद उसको बंद करना है।
1: तभी जी प्रशांत जी रुकूंगी क्योंकि समय बहुत दौड़ रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। और पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। फिलहाल नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं ढोला गायन। कलाकार हैं चरण सिंह और साथी। प्रसंग है दमयंती का ब्याह।

इस समय आप सुन रहे हैं ढोला गायन, कलाकार हैं चरण सिंह और साथी, प्रसंग है देवंती को ब्याह।

अभी आप सुन रहे थे चरण सिंह और साथियों से ढोला गायन। प्रसंग था तेजवंती का ब्याह। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं पंडित रामनारायण का राग यमन में सारंगी वादन।

अभी आपने सुना पंडित राम नारायण से राग यमन में सारंगी वादन, और सुनते हैं राग सरस्वती में सारंगी वादन। कलाकार हैं पंडित राम नारायण।

पंडित राम नारायण के राग सरस्वती में सारंगी वादन के साथ ही आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज